0: Rerouting, rerouting.
1: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है।
0: लोकेशन अपग्रेडेड, नाउ हेडिंग टू इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ।
1: क्यों?
0: क्योंकि फोर्ट वर्थ केलर, हैसलेट और हर्स्ट के स्मार्ट लोग जानते हैं। डेली ग्रोसरीज हो या पूजा एसेंशियल्स, ऑथेंटिक इंडियन प्रोडक्ट्स और घर की हर जरूरत, फाइंड एवरीथिंग देसी एट इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ।
1: अच्छा तो सीधा वही ले चलो,
2: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे फोर्ट वर्थ। स्विच द रूट,
0: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड।
3: अटेंशन स्टोर ओनर्स, रवीज समर किक ऑफ इज बैक June 3rd एंड June 4th 9 AM to 5 PM एंड दिस ईयर इट्स डिफरेंट। वी आर टर्निंग द वेयरहाउस इनटू अ फुल ट्रॉपिकल एक्सपीरियंस विद क्रेजी डील्स यू वोंट फाइंड एनीवेयर। न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस एंड फ्री गिफ्ट्स ऑल डे।

जी यारो, किसी के हाथ नहीं आएगी ये लड़की। दैट इज करेक्ट। मैं तो आ गई पर आप लोगों के हाथों। मैं कौन हूँ? ये कौन बोला? ये बोली मैं। और मैं कौन हूँ? आपकी सबसे फेवरेट अपन एशियाज न्यूएस्ट बैरी, द होस्ट, वन ऑफ द न्यू आरजेस हियर ऑन फन एशिया 104.9 FM। और मेरा नाम है एपी द हिपी। थैंक यू एवरीवन वापस से मेरा शो सुनने के लिए, जो मेरे रेगुलर लिसनर्स बन चुके हैं एक हफ्ते के अंदर अंदर। भाइयों थैंक यू, भाइयों बहनों सखियों साथियों, मतलब थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतना प्यार दिखाया, मुझे इतनी सारी भरपूर भरपूर कॉल्स आई उसके बारे में, ऑन ऑल ऑफ दैट आई एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली लव इट। क्योंकि भाई मेरे को पता है किस लिए लाया गया था फनेशिया में, मेरे को फनेशिया में लाया गया था कुछ नया चीज़ करने के लिए। मुझे ना आने से पहले मेरी जो मैनेजर है उसने मुझे पूरा एक बड़ा सा एक रिच टेक्स्ट फॉर्मेट का, एक उसने मेरे को ऐसी PDF बना के दिया कि

0: मंडे को आपको ऐसे बोलना है, ट्यूसडे को आपको ऐसे बोलना है, वेंसडे को आप ये टॉपिक्स करेंगे, थर्सडे को ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करके आपको हर घंटे को अपने उसके में डिवाइड करना है। तो मैं तो बड़ा प्लान वैन पिछले हफ्ते तो बड़ा करके आई थी कि यार बिल्कुल एब्सोल्युटली, एंड दे टोल्ड मी कि भाई फनीशा की ऑडियंस थोड़ी सी डेटेड हो चुकी है एंड वी वॉन्ट द न्यू पीपल टू ऑल्सो रिलेट टू फनीशा, सो यू वी रियली वॉन्ट कि देर आर दीज न्यू लिसनर्स एंड स्टफ लाइक दैट, कि आप उनके लिए भी कुछ करें भाई, हमारे जो मिलेनियल्स हैं जेंजीज हैं, नहीं तो दे काइंड ऑफ फील लेफ्ट आउट। आई मीन ज्यादातर लगता है कोई ट्रिविया का कॉम्पिटिशन चल रहा है यहाँ पे, ये गिव अवे तो खैर एवरी वन लव्स फ्री फूड एंड स्टफ, वो तो मतलब सवाल ही नहीं है, लेकिन सबको थोड़ा सा मॉडर्न टॉपिक्स पे भी कॉन्वर्सेशन चाहिए। अरे हमारे बात करते करते मेरी कॉल ऑलरेडी आ गई, तो पता नहीं किन की कॉल है, मैं जरा इनकी कॉल लेना तो चाहती हूँ, पर मेरा मैं बोल रही थी तो आप जो भी कॉल करें आप 2 मिनट वेट करिए, पहले मैं अपनी बात खत्म कर दूँ, गाना चला दूँ, फिर आप मुझे कॉल करिए और मुझे बताइए, ठीक है? देन आई वी शैल टेक योर कॉल्स। तो जो मैं कह रही थी, तो हमें को एकदम न्यू न्यू टॉपिक्स दिए गए कि आप मतलब बात करिए डेटिंग लाइफ के बारे में, यू नो टिंडर बम्बो ऑल दिस न्यू सिचुएशनशिप, ऐसे ऐसे करके बात करिए इन सब न्यू न्यू टॉपिक्स पे जिनके बारे में यू नो लोगों को आइडिया नहीं है, या फिर आइडिया है भी तो आई मीन इट्स काइंड ऑफ लाइक यू नो वट एवर इज यू नो मेक इट फन, मेक इट मॉडर्न, मेक इट इंटरेस्टिंग। तो मैंने तो पिछली बार वैसे कुछ किया, लेकिन उसके बाद ना मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग कमेंट्स भी आए, मतलब मेरे ऑडियंस से सजेशंस भी आती हैं। भाई सजेशंस तो सब देते हैं, क्योंकि सजेशन तो फ्री में देना तो इंडियंस का हमारा काम ही है, कोई हमें चाहे किसी चीज़ के बारे में पता हो ना हो हम सजेशन देने ज़रूर पहुंच जाते हैं, वो आपकी पड़ोस वाली आंटी भी आपको सजेशन देने एडवाइस देने पहुंच जाएगी, क्योंकि एडवाइस देने के लिए पैसे कभी नहीं कोई चार्ज करता है, वो एडवाइस वो जिंदगी जिंदगी में एक ही वो चीज़ है फ्री में जो लोग दिल खुशी खुशी करके बांट देते हैं, चाहे और कुछ भी हो, मतलब हमेशा थोड़ा लगता है कि हाय ये कैसे दे रही है मैंने अपनी चीज़। एडवाइस आप सबको कहीं से भी मिलेगी, चाहे उनको किसी चीज़ के बारे में पता हो ना हो तो भी मिलेगी। एनीवेज दैट बींग सेड, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा चेंज कर दे, फिर कुछ कुछ लोगों ने थोड़ा बोल दिया, तो मैंने कहा चलो ठीक है अब थोड़ा फॉर्मेट उसका चेंज करते हैं। तो इसीलिए आज मैं सोच समझ के मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ लेकर आई आप सबके लिए। आई थॉट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सम रियली कूल थिंग्स दैट्स हैपनिंग अराउंड अमेरिका एंड अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है? दूसरी चीज़ मैं जो सोच रही थी पिछली बार, जो इस तरह से जो मुझे सजेशंस वगैरह आ रही थी उनके बारे में भी मैं जो सोच रही थी, मैंने सोचा मैं पहले यू नो दैट फोर्स मी इन टू थिंकिंग अबाउट समथिंग इन लाइफ, मैंने कहा चलो लेट मी थिंक अबाउट दीज थिंग्स एंड लेट मी जस्ट शेयर माई ओपिनियंस ऑल्सो, बिकॉज यू नो दिस इज अ शेयरिंग फोरम, दिस इज अ प्लेटफॉर्म, यू गाइज वी टॉक वी हैव कॉन्वर्सेशंस यू नो वी डिस्कस। तो एनीवेज अभी आप ये मज़ेदार सा गाना सुनिए, उसके बाद हम आके हम थोड़ी और बातें करेंगे, बट अभी के लिए आप ये गाना सुनिए।
1: यक चतुर

ये सूर की तरह जी ये सूर इन्ना आया है तो।

अरे एक चतुर नार, अरे गड़बड़ हो गया भाई, बिल्कुल गड़बड़ हो गया, ये क्या हो रहा है। मुझे तो बड़ा आई लव दैट सॉन्ग, वो बहुत पुराना गाना है, वैसे थोड़ा मॉडर्न नहीं है, लेकिन भाई आज का मेरा जो सिचुएशन है वो हम इसी काइंड ऑफ कॉमेडी, काइंड ऑफ सोच, काइंड ऑफ प्रोग्रेसिव थिंकिंग के बारे में है। थोड़ा हम लोग थोड़ी बातें करेंगे, थोड़ा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि मैं बहुत सोचती हूँ यार। मेरा ना सनसाइन जो है ना वो है वर्गो, और वर्गो की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है जिंदगी में? वी आर ओवर थिंकर्स। हम सोचते रहते हैं, सारे दिन सोच रहे थे, इतनी सोच रहे थे कि हमारी नींद खराब हो जाती है। मैं तो पता नहीं कितने दिनों से सो ही नहीं हूँ ढंग से, ये सोचने में कि अच्छा अब मैं रेडियो पे जाऊंगी तो मैं क्या बोलूंगी, मैं क्या बोलूंगी। मैं दिमाग में ना मैं अपने आप से ही बातें करती रहती हूँ इस तरह से। बट एनीवेज, वो सोचने की बात अभी खत्म करते हैं, क्योंकि अभी हम बोलने की बात कर रहे हैं। मेरे को बड़ी अच्छी अच्छी कॉल्स आ रही हैं अभी, जैसे गाना वाना चल रहा था उसके बैकग्राउंड में बहुत मज़ेदार मज़ेदार सी कॉल्स आ रही हैं। लेकिन बिफोर वी गेट ऑन टू दिस कॉल, जो चीज़ मैं सोच रही थी, मेरे जो लोग जो सजेशंस दे रहे हैं, जो कमेंट्स आ रही हैं, उससे ना मुझे एक बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट सा एक स्पीच याद आ गया। नहीं, ये गांधी की स्पीच नहीं है, नहीं ये सुभाष चंद्र बोस की भी स्पीच नहीं है। तो मैं स्पीच क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि दिस स्पीच बिकेम सो पॉपुलर। मैं स्पीच नहीं प्ले करी क्योंकि देर आर अ लॉट ऑफ कस वर्ड्स इन दैट, एंड रेडियो पे हम वो कस वर्ड्स नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज यू नो वी फॉलो FDIC रेगुलेशंस एंड थिंग्स लाइक दैट। नहीं तो हमारे ऊपर बड़ा ठप्पा, एक फाइन शाइन लग जाएगा, हम वो नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत लाइंस इस स्पीच की पसंद आई तो आप जरूर यूट्यूब पे जाइए और यूट्यूब पे देखिए। दिस इज बाय वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट मॉडर्न डे कॉमेडियंस, हिज नेम इज वीर दास। वीर दास की जो कॉमेडी है ना, वैसे तो वो इंग्लिश में बोलते हैं सारे, एंड आई एक्चुअली क्वाइट रिलेट टू हिम बिकॉज ही इज ऑल्सो अ डेली बॉय, मतलब नोएडा बॉय टेक्निकली, बट ठीक है, अब डेली नोएडा गाजियाबाद सेम ही होते हैं, मतलब वट एवर, इट्स दी NCR रीजन, जस्ट लाइक वी हैव DFW, दैट इज द सेम थिंग, दैट देर इज NCR। एनी वेज, एंड ही वेंट टू द सेम काइंड ऑफ स्कूल, डिफरेंट ब्रांच, DPS, DPS किड, आई एम ऑल्सो DPS किड। भाई हम लोग की माइंड सेट ही थोड़ी सी अलग होती है, मतलब ज़्यादा ही फॉरवर्ड थिंकर हो जाते हैं हम। एनी वेज, दैट बींग सेड, देर इज अ स्पीच दैट ही हैड मेड ऑन वन ऑफ हिज कॉमेडी शोज, इट बिकेम सो इनसेनली पॉपुलर, इतना पॉपुलर हुआ कि भाई इंडियन पार्लियामेंट में भी पॉलिटिशियंस ने कोट किया। तो मैंने जब वीरदास का शो देखा ना, अभी वीरदास आए हुए थे कुछ 2-3 महीने पहले, आई थिंक अप्रैल में या मार्च में आए हुए थे, ये डैलस में मजेस्टिक थिएटर में उनका कॉन्सर्ट था, मतलब जो भी कॉमेडी शो था, इट वॉज सोल्ड आउट, इट वॉज कम्प्लीटली पैक्ड। और मजेस्टिक थिएटर अगर आप गए हैं तो इट्स अ ह्यूज हॉल, तो पूरा सोल्ड आउट था एक कॉमेडी शो के लिए, एंड आई वॉज लाइक अमेज। मैंने कहा इस, फिर उन्होंने अपने यू नो टू इंडिया वाले स्पीच से शो शुरू किया, एंड ही इज़ लाइक, लोगों ने इसका मीनिंग अलग अलग कुछ भी निकाल दिया है, बट एनी वेज आप ज़रूर सुनिए बिकॉज इट्स गोइंग टू मेक यू थिंक। मैं वो पूरी स्पीच तो नहीं बोलूंगी, बट आई विल कोट सम लाइन्स एंड देन आई विल प्ले यू अ रियली फन सॉन्ग आफ्टर दैट, ठीक है? तो लाइन्स है, दीज आर सम ऑफ माई फेवरेट लाइन्स दैट आई पिक्ड अप फ्रॉम द स्पीच, बाय द वे आई एम ऑल्सो पैराफ्रेजिंग इट अ लिटल बिट। ही सेज, आई कम फ्रॉम टू इंडियाज, I come from an India where the AQI is 9,000, yet we still sleep on the roof looking at the stars. I come from an India where we worship women during the day, but we abuse them and exploit them at night. That's the irony. I come from an India, and this is again his words, but I'm paraphrasing. I come from an India where we scoff at sexuality, but we procreate till we reach a billion people. That's the irony. I come from an India, and this is my line, by the way. Ye Veerdas ki line nahi hai. I come from an India where we have powerful female leaders like Jhansi ki Rani and Indira Gandhi. But I also come from an India that the moment a woman expresses her liberalism, the moment a woman expresses her choices, whether to stay in a situation or not, she is categorized as a bad person and as a bad influence. That's the irony of it, okay? I come from an India with double standards. And that is the thing that I have been observing. Bahut saalon tak maine observe kiya hai. What gives me the right to say it? I mean, this is something to think about. Main ye nahi keh rahi ki aapko ye manna padega aisi baat hai. It's like, it's my opinion. It's something that I observe as a
एज ए जिनको मेरे बारे में नहीं पता, एज अ स्टूडेंट मेरा नाम है एपी द हिपी. मैं दोबारा बोल देती हूँ. हाँ, आई एम ए वन आई वॉज ग्रोइंग अप इन इंडिया, वन आई वॉज एट यूनिवर्सिटी, आई वेंट टू दिल्ली यूनिवर्सिटी. दिल्ली यूनिवर्सिटी में वैसे ही सब ऐसे ही संकी होते हैं, मतलब हम ऐसे ही लड़ाई करने उतर जाते हैं कि अरे हम लोग नारा लेके उतर जाएंगे. हमने बहुत ऐसे प्रोटेस्ट वगैरह निकाले हुए हैं. इट्स जस्ट द पार्ट ऑफ द DU कल्चर. तो वहाँ पे आई ग्रू अप डूइंग माई बैचलर्स एंड माई मास्टर्स इन सोशियोलॉजी. और सोशियोलॉजी में पता है सबसे पहली चीज़ आपको क्या सिखाते हैं? सबसे पहली चीज़ आपको सिखाते हैं देर इज़ नो गुड और बैड, इट्स जस्ट डिफरेंट. एंड वेन यू वॉन्ट टू प्रोग्रेस एज ए ह्यूमन बींग, जब आप अपने आप को ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं, देन यू हैव टू रियलाइज कि आपके जैसे हर कोई नहीं होंगे. कुछ लोग अलग होंगे, कुछ लोग आपके जैसे मिलते होंगे, लेकिन वी कैन क्रिएट अ बेटर वर्ल्ड. वी कैन क्रिएट एन इनक्रेडिबल इन्वायरमेंट, इनक्रेडिबल एटमोसफेयर, इनक्रेडिबल वातावरण टू लिव इन बाय एक्सेप्टिंग हु एवरी वन इज. सबकी चॉइस है, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, सबको अपनी तरह से जीने का हक है. एंड दैट इज द रीजन द वर्ल्ड इज सो ब्यूटिफुल, दैट मेक्स एवरी वन सो अमेजिंग. आप सोचो, अगर आप ग्रोसरी स्टोर में जाते हो और ग्रोसरी स्टोर में आपको सब आलू ही मिलेगा और कोई कुछ भी नहीं होगा, सब आलू होगा. सोचो, सब एक जैसे होंगे आलू. ठीक है, आलू के कुछ अलग अलग वैरायटी शायद हो, नहीं हो, वो मुझे नहीं पता, लेकिन कभी टमाटर नहीं मिलेगा आपको, कभी कैप्सिकम नहीं मिलेगा, प्याज नहीं मिलेगा, सिर्फ आलू ही खाना है फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. तो कितनी बोरिंग हो जाती है ना लाइफ, कभी सोचिए इस बारे में. तो इसीलिए इससे एक गाना सुनते हैं, टोटली अनरिलेटेड, बिकॉज वाई नॉट, एंड देन वील कम बैक एंड टॉक सम मोर.

भाई शाम का वक्त है तो हम ये वाले गाने क्यों बजा रहे हैं? हमें तो कुछ तड़कता भड़कता बजाना चाहिए. शाम का वक्त है, मंडे इवनिंग है यार. वी शुड पुट सम लाइफ बैक इनटू सम थिंग्स. हाउएवर क्या है ना, देर इज अ स्पेशल रीजन फॉर ऑल दिस. तो ये अगला गाना, ये रिक्वेस्ट है. ये मैं सुमन कल्याण जी की आज डेथ हो गई है अपेरेंटली. तो मुझे किसी ने किन उन्होंने कॉल किया, उन्हें बोला कि आप मेरे लिए गाना बजाइए. तो ब्रेक में जाने से पहले आप थोड़ी देर ये गाना सुनिए, फिर आके हम दूसरे गाने सुनेंगे.

0: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
1: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
2: चिकन बनाना
3: ब्रो, बनाना नहीं, बनाना मतलब मेक द चिकन राइट।
4: That's exactly what happens at Sal's Nashville Hot Chicken. They don't just make it, they make it unforgettable. Fresh ingredients, bold flavors, jumbo chicken tenders, Nashville sandwiches that actually hit. Located in Plano and Richardson, Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry.
5: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी, सच बता लॉटरी लगी है क्या?
6: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी। जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे K2 ड्राइव पे लिस्ट कर दी।
5: K2 ड्राइव मतलब
6: गाड़ी खुद पैसे कमा रही है, लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लवफील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस सब K2 ड्राइव हैंडल करता है।
5: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
6: 100%
7: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट K2 ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी। विजिट K2Drive.com और कॉल 214-814-0402। Kato Drive, Dallas's smartest fleet partner.
8: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया। ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस।
9: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
8: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
9: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
8: ये क्या होता?
9: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
4: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
10: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
11: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
12: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
13: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
12: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
14: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame, and clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens, and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings, and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jitu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe.
15: Dude, life में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
16: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
15: कैसे?
16: पेज 3 ईटरी?
15: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
16: Dude, it's page 3. Start with the bar, signature cocktails, classic pours, and the food crafted to suit every craving, every appetite.
15: मतलब great food, great drinks, and great company. यानी कि मैं।
17: Page 3 Eatery. Eat, sip, gossip, repeat.
18: If you're ever involved in a car accident, remember these important 3 tips. First, stay calm. Second, check for injuries and move to a safe place if possible. Third, gather information by taking pictures, exchanging contact information, and insurance details. Always, always file a police report. Remember, never ever admit fault at the scene. Even minor injuries can turn serious, so seek medical attention right away. The law offices of Omar Khwaja specializes in personal injury law, and we are here to help you navigate through the legal process. Call us for a free consultation at 1-833-GET-OMAR or visit our website at attorneyomar.com for your free consultation. We can't wait to hear from you.
19: All right, guys, this part of the show is brought to you by Shri Krishna Jewelers. Jewelry is one of the most important things in any woman's life. I mean, yes, especially jab Indian woman ki baat aati hai, shaadi mein to hum jewelry dete hi hai na. It's more than an accessory. It's a reflection of tradition, elegance and timeless beauty. That's right. From classic gold designs to sparkling diamonds. Ooh. And from intricate kundan to stunning polki collections, every piece is crafted to celebrate life's special moments. So now we welcome you at Shri Krishna Jewelers' new location, by the way, 13145 Suite 220 Main Street, Frisco, Texas. Shri Krishna Jewelry Jewelers, crafting fine jewelry and cherished moments since 1967. Guys, that's a long time, okay? So they really know what they're doing when it comes to jewelry. Main bhi jaane wali hu, mujhe bhi bade time se main soch rahi hu, I should probably invest in some tiny little gold studs ki mere kaan mein na teen char ek nahi teen char piercings hai. Main thodi I was a little bit of that wild spirit in my young days. So abhi wo kaan mere khali rehte hain, abhi maine usme kuch dala nahi hai, lekin main soch rahi hu I'll probably go to Shri Krishna Jewelers and get some small studs. Anyways, That being said, आपको मेरा paraphrasing of this speech कैसे लगा मुझे बताइए कॉल करके. Did you think it opened your eyes a little bit? I think ये सारी चीज़ें हमें सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हम लोग ना अपनी लाइफ की mundane activities में जो नॉर्मल होती है, भाई पैसे कमाओ, घर आओ, खाना पकाओ, सो जाओ, फिर उठो, वही रूटीन में हम ये सारी चीज़ें सोचते नहीं है. The only time you may or may not think about it is when you are in college. हम लोग जब college में थे ना, when I was in university, जब मैं मास्टर्स करी थी especially, तो मेरे एक बहुत ही सही प्रोफेसर हुआ करते थे. His name was Dr. Savyasachi. No, he is not the designer Savyasachi. Savyasachi वाला लहंगा नहीं है, वो वाले Savyasachi नहीं. He was the OG Savyasachi, because he was like this older guy. I was barely like 21 or something, and he must be in his like late 50s. But he was by far the coolest human beings I have ever met. Like अभी तक आई एम स्टिल इन टच विद हिम. उन्होंने पता है रिटायरमेंट के बाद करी क्या, उन्होंने मुझे पूछा एपी, मैंने कहा यस. एक्चुअली वो मुझे एपी नहीं बोलते थे, मुझे कहते थे इप्सिता. मेरा वैसे तो नाम इप्सिता है, पर मुझे इप्सिता बोलते थे, क्योंकि somehow apparently that's the correct pronunciation. Anyways, तो कहते थे इप्सिता, what are you going to do? नहीं, मैंने पूछा, कहते इप्सिता आफ्टर रिटायरमेंट आई वॉन्ट टू डू समथिंग डिफरेंट. मैंने कहा ओके Dr. Sachi, what do you want to do with your life, you know, after retiring from Jamia, you know, he was like the head of the department. Like, what do you want to do? So he said ki main, I want to learn how to play the saxophone. So I was like amazed. I was like, that is beautiful. At like 65, 70, whatever age you retire, you're going to start a new life. And you know why I loved him so much? क्योंकि उनके जो कपड़े भी पहनते थे ना, वो सिर्फ खादी के कपड़े पहनते थे. दैट वॉज हिज स्टाइल. वन खादी की वाइट शर्ट, छोटी वो शर्ट जैसी, कुर्ते जैसी, मतलब शर्ट, आई डोंट नो व्हाट यू कॉल इट, शर्ट ही थी. एंड देन उसके नीचे वाइट कलर का एक पजामा पैंट टाइप का होता था. सर उनके ऊपर जो था, सर के ऊपर देयर वाज नो हेयर, ही वाज बेसिकली हाफ बॉल्ड, लेकिन जो नीचे नीचे से वो आधा चांद वाले बाल नहीं होते लाइक आवर मिडिल एज मैन, वो बड़े लंबे बाल थे उनके ऑल द वे टिल हिज वेस्ट, और उसमें वो ना एक छोटा सा जूड़ा बांध के रखते थे. मैंने कहा यार, और गले में गमछा होता था, क्योंकि भाई दिल्ली में मानसून का सीजन है, गर्मी का सीजन है, पसीने बड़े आते हैं, तो वो गमछे से पोंछते. मैं पूछ रही अच्छा डॉक्टर साची, यू हाउ डू यू स्टे सो फिट, यू नो यू आर प्रीटी एक्टिव एट योर एज, हाउ डू यू स्टे सो फिट. एंड हम लोगों का यूनिवर्सिटी था, आई डिड माई मास्टर्स इन जामिया मिलिया इस्लामिया, तो वो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में था, और वो रहते थे साकेत में. तो साकेत से वो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इज क्वाइट अ बिट ऑफ अ डिस्टेंस यू गाइज. आई एम टॉकिंग लाइक, इफ आई कैन से इन किलोमीटर्स, इट वॉज लाइक अराउंड 10-12 किलोमीटर कम से कम तो होगा, ठीक है. वो रोज वॉक करते थे, वो सुबह 5 बजे उठते थे, तैयार होके, क्लास होती थी 10 बजे, वो तैयार वैयार होके कभी भी, मतलब 8 बजे कभी निकलते थे. ही यूज टू वॉक एवरी सिंगल डे 10 किलोमीटर गोइंग टू हिज वर्क, और वापसी भी वो 10 किलोमीटर चल के जाते थे. कहते हैं आई लाइक वॉकिंग, सो आई जस्ट वॉक टू माई वर्क एवरी डे. एंड दिस इज डेली यू गाइज, दिस इज नॉट न्यूयॉर्क, देर इज नो वॉकिंग कल्चर. इतना पोल्यूशन है, वहां से स्कूटर आ रही है, पै पै पी पी पू पू हॉर्न बज रहे हैं, सब हो रहा है, लेकिन दिस डूड इज सो चिल इन लाइफ, ही इज लाइक अमेजिंग. उनके साथ जब हम बैठते थे ना ऐसे, द वाई एम आई टॉकिंग अबाउट ऑल दिस, तो मैंने ये जो अभी टू इंडियाज वाला जो चीज मैंने बोला ना, दिस इज, दीज आर काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन दैट आई यूज टू हैव विद माई प्रोफेसर. एंड यू नो वी वुड गो एंड आस्क हिम क्वेश्चन लाइक, सर सो वट डू यू थिंक, लाइक वट डू थिंक वी शुड डू अबाउट दिस, वॉट्स हैपनिंग एंड ब्ला ब्ला. सो ही सेड ही वुड आस्क दीज लाइक रैंडम क्वेश्चन लाइक, इपी और इप्सिता, वट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, यू टेल मी वट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ. आई लाइक आई डोंट नो, आई एम जस्ट अ 22 ईयर ओल्ड चाइल्ड हु हैज बेसिकली नॉट इवन सीन लाइफ एट दिस पॉइंट. what is, and he's like, what do you think truth is? I'm like, I don't know what truth is. The truth is different from everyone's perspective. There is no one truth in this world. What may be true for you may not be true for someone else, because everyone has their own interpretation of it. I don't know. I still like to think that truth is, when it comes to at least law and all of that, there is objective facts and there is other stuff. But anyways, वो सब हम बातें बाद में करेंगे. पहले आप ये वाला गाना सुनिए, then I'll tell you why.

Welcome back, you guys. This part of the show is brought to you by Umar Khwaja. अगर आप किसी गाड़ी या ट्रक एक्सीडेंट में फंस गए हैं या फिर अगर आप गिर गए हैं, कुछ भी हो सकता है भाई. जिंदगी अब बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, अब कुछ हमें नहीं पता क्या होता है. लेकिन अगर आप ऐसे किसी सिचुएशन में आ गए हैं, देन यू नीड टू कॉल उमर ख्वाजा. ही विल कम एंड फाइट योर केस एंड ही विल हेल्प यू गेट द कॉम्पेंसेशन दैट यू डिजर्व. क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज के साथ डील करना इज वेरी स्ट्रेसफुल. कभी करके ट्राई करके देखा है? मैं तो पागल हो ही थी. एक बार मेरे साथ हुआ था एंड आई वाज लाइक आई डिड नॉट गेट अ सिंगल पेनी बाय द वे. FYI, एक नया पैसा नहीं मिला. खैर, अमेरिका में एक नया पेनी नहीं मिला मुझे. बट अपेरेंटली यू नीड एन अटर्नी हु कैन मेक श्योर दैट यू गाइज गेट कॉम्पेंसेटेड एंड यू डोंट पे अंटिल यू विन. सो इट्स अ विन विन सिचुएशन. विनर विनर चिकन डिनर. फॉर अ फ्री कंसल्टेशन कॉल 4693005046 और विजिट attorney.com. गाइज, मैं इसीलिए आज थोड़ा सा ना, मैंने ज्यादा जोर से टेबल में आड़ दिया भड़ाम से ऐसे करके. कोई बात नहीं, वो भी चलता है. जो लोग मेरा शो लास्ट वीक से देख रहे हैं या उसके पहले से भी जो सुन रहे हैं मेरा शो, देख नहीं रहे, पता नहीं, अगर आपको मेरी आवाज दिखाई दे रही है, अपेरेंटली देयर इज अ कैमरा ऑल्सो यहाँ पे. जो लोग वीडियो देख पाते हैं तो उनके लिए मैं हेलो बोल रही हूँ. और अगर आप नहीं देख पा रहे हैं, सिर्फ आवाज़ सुन रहे हैं, तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि भाई, मैं हूँ एपी द हिपी, यहाँ की वन ऑफ द न्यूएस्ट बैडी आरजेज, एंड आई टॉक अबाउट कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक्स विच यू मे और मे नॉट हैव हर्ड ऑफ. तो उसी से रिलेटेड ना, पिछले हफ्ते मैं मेरा, अगर जो लोग मेरा शो रेगुलरली सुन रहे हैं उनको तो पता ही चल गया होगा कि मैं अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस बहुत शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है. आई लव टू शेयर अ लॉट ऑफ द फनी स्टोरीज दैट आई हैव हैड, बिकॉज आई फील लाइक भाई, जिंदगी में एक आरजे का पर्पस क्या होता है? लोगों को हंसाना, लोगों को एंटरटेन करना. और अगर मेरी बेवकूफ़ी उसे आपको दो थोड़ी सी हंसी मिल जाती है और आपकी मंडेन लाइफ में थोड़ा सा चेंज आता है, तो वाई नॉट, यू नो, ऐसे होना भी चाहिए. क्योंकि मतलब दैट इज द होल पर्पज ऑफ आर शो. हम आपको हंसाते हैं, रुलाने का हमारा कोई पर्पज नहीं है. कभी सोचने पर भी मजबूर कर देते हैं, लेकिन द होल पॉइंट इज टू लाइक इंजॉय, बी पीसफुल, है ना. तो इसीलिए पिछले हफ्ते मेरे जब पहला वीक था, ऑफिशियल पहला वीक था, तो मैंने ऐसे ही, हम लोग कुछ ऐसी बात कर रहे थे, प्यार, मोहब्बत, डेटिंग कल्चर, ऐसे वैसे को लेके. और उसमें से हमारी, मैंने एक स्टोरी शायद बोली जिसमें मैंने बोला भाई, व्हेन आई वाज यंगर आई वाज हैविंग यू नो अ फ्यू ड्रिंक्स विथ माय फ्रेंड्स, और पार्टी शार्टी कर रहे थे, उसमें एक बंदे का मेरे को कॉल आ गया और उसमें मैंने बोल दिया, ऐसे कुछ कुछ मैं शेयर करी थी. तो एक अंकल बड़ा बुरा मान गए, वो अंकल इतना ज़्यादा बुरा मान गए कि कहते हैं बेटा, आपके आप जो बोल रहे हो हमारे बच्चों पर बड़ा इन्फ्लुएंस, गलत इन्फ्लुएंस पड़ेगा. तो मैंने सोचा अच्छा, शायद एक्चुअली मेरे को सोचना चाहिए. फिर मैंने सोचा यार, 7:30 बजे रात के 7:30-8 बजे बैठ के कौन से बच्चे पहली बात तो रेडियो सुन रहे हैं. अब वो अंकल थोड़ा ज़्यादा बुरा मान गए, तो उन्होंने शायद फनेशिया को कंप्लेंट भी डाल दी, या पता नहीं किसी और ने डाली, या जो भी है. लेकिन मैं ये कहती हूँ, तो मेरे ना कुछ, कल मैं अपने कुछ दोस्तों से मिली, आई मेड सम रियली न्यू अमेजिंग फ्रेंड्स, तो उनके भी बच्चे हैं. तो मैंने उनको पूछा यार, ये अगर मैंने ज़्यादा ये बोल दिया तो ये मैंने कुछ बुरा किया क्या? लाइक हम लोग तो सारे दिल्ली से हैं, वी आर ऑल गर्ल्स, गर्लफ्रेंड्स एंड ऑल दैट. तो हम लोग मतलब तुम्हारे बच्चे हैं, मैं कुछ गलत सिखा रही हूँ बच्चों को? कहते नहीं भाई, बच्चों को जो सीखना होता है ना, वो या तो अपने घर से सीखते हैं या अपने क्लोज नेटवर्क स्कूल से सीखते हैं. रेडियो से हार्डली बच्चे कुछ सीखते हैं. पहली बात तो रेडियो तो बच्चे वैसे भी सुनते नहीं हैं, अगर सुन भी लिया किसी बच्चे ने तो, आई मीन, वी आर नॉट सेइंग इतनी ऐसी, तो हमने कोई कॉन्ट्रोवर्शियल बात नहीं करी कि बच्चे उसमें से सीखे. मैं आपको बताती हूँ, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने कुछ नहीं सिखाया, ये ऑलरेडी वो सीख के आए हैं. तो एक मेरी फ्रेंड है, उसकी बेटी है छोटी सी, 6 साल की, किंडरगार्टन में पढ़ती है, ठीक है. वो उसने आके अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ क्रशर? तो उसकी मम्मी ने ये सोचा नहीं कि मतलब यू नो इट कैन बी समथिंग इन द रोमांटिक कॉन्स्ट्रक्ट्स, कंसिडरिंग हर डॉटर इज ओनली 6 years old, ठीक है. उसकी मम्मी ने बोला, बेटा क्रशर इज दैट थिंग, कोई भारी सा ऑब्जेक्ट होता है ना, उससे उठा के हम पीटते हैं किसी चीज को तोड़ने के लिए, उसको बोलते हैं क्रशर.
तो वो उसकी बेटी ना कन्विंस नहीं हुई, कहते ऐसे कहते आर यू श्योर, लेकिन फिर उसमें ऐसे हार्ट्स क्यों बनाते, ये जो लिटिल हार्ट्स नहीं बनाते कोरियन वाले, वो दो उंगलियों के साथ चुटकी भर हार्ट्स, वैसे ही चुटकी भर हार्ट्स किसी को चुराना है तो चुरा सकता है, मेरा वो फ्रेज चुटकी भर हार्ट। तो कहती है कि तो फिर वो क्रशर ये ऐसे क्यों दिखाते ये हार्ट्स, ऐसे छोटे वाले हार्ट्स। तो उसकी मम्मी सोच में पड़ गई, फिर कहती है, फिर उसकी बेटी ने दोबारा सवाल पूछा कि मम्मी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्रशिंग। तो मम्मी कहती है जिस एक्ट से हम उस भारी चीज से हम जो क्रश करते हैं उसको बोलते हैं क्रशिंग। तो कन्विंस नहीं हुई, देन शी रियलाइज लेटर कि भैया 6 साल के बच्चे भी क्रश, प्यार मोहब्बत, प्यार का इजहार कर रहे एक दूसरे के साथ अपनी क्लास में। तो भाई ये चीज़ें तो बाहर से कोई नहीं सीख के आता, ये हम स्कूल से ही सीख रहे हैं या फिर जो यू नो जो टीवी देख रहे हैं वगैरह वगैरह उनसे सीख रहे हैं। तो हम मैंने सोचा भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला जिससे कुछ गड़बड़ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चली गई, लेकिन इसी अवसर पर, इसी मौके के अवसर पर मैं आपको एक बड़ा अच्छा गाना सुनाऊंगी। ये सारे लोगों का बहुत फेवरेट गाना है, एवरीबडी लव्स दिस सॉन्ग। लेकिन जब हम एक गाने सुनते हैं तब हम नहीं बोलते कि हमारे बच्चों पे बुरा इन्फ्लुएंस पड़ेगा, तब बच्चे भी गाते हैं ये सारे एकदम। लेकिन जब हम गाने सुनते कहते हैं अरे वाह क्या क्लासिक्स है आर डी बर्मन जी के गाने, वाह वाह वाह। लेकिन जब हम एक्चुअल में बोल देते हैं ना इस सब चीज़ों के बारे में तब लोगों को बड़ा बुरा लग जाता है। एनीवेज आप ये गाना सुनिए।

भाई मुझे बड़ा मजा आता है जब हम गाने गाने में कॉन्वर्सेशंस कर देते हैं। वाह, मुझे मेरे लिसनर्स से मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप मेरी बातों को इतने अच्छे से सुन रहे हैं, अब्जॉर्ब कर रहे हैं, उस पर रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं, लेकिन गाने गाने के थ्रू। वाह, ये चीज़ ना मैं अपनी मम्मी के साथ बड़ा खेलती थी। हम लोग, मैं कुछ भी ऐसे डायलॉग वगैरह मारती थी ना, पीछे से मम्मी वहाँ से गाना गाती थी, फिर मैं उनका जवाब दूसरे गाने में ही देती थी, तो मुझे बड़ा मज़ा आता था। दैट्स हाउ यू मेक लाइफ फन यार। मतलब लाइफ में थोड़ा मस्ती मजाक करना चाहिए, नहीं तो क्या क्या क्या लाइफ का क्या पर्पस क्या है। देखो, सबसे लाइफ की जो सबसे भयंकर जो शब्द होते हैं ना, वो सारे प से शुरू होते हैं। पहला प से होता है प्यार, ठीक है। दूसरा होता है प से पैसा। तो आप अपनी लाइफ में चूज करो, आपको प्यार चाहिए या पैसा, ठीक है। मेरा मेरी फिलॉसफी तो ये है। मैंने ये नोटिस भी किया है, सबको सब कुछ नहीं मिलता है। मैं बहुत टाइम से सिंगल बैठी हूँ, मैं पिछले 8-9 साल से सिंगल बैठी हूँ। ऑफकोर्स मैं थोड़ी हूँ भी वैसी सी, तो इसीलिए शायद मैं प से पागल भी हूँ, इसीलिए लोग शायद मुझे समझ नहीं पाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आई लाइक माई लाइफ, आई लव टॉकिंग एंड आई लव एंटरटेनिंग। तो भाई प से पागलपन भी चलेगा। तो प से सबको प्यार नहीं मिलता, प से सबको पैसा भी नहीं मिलता। अगर आपके पास भरपूर प्यार है तो पैसा शायद थोड़ा कम है, अगर आपके पास भरपूर पैसा है तो ऑनेस्ट प्यार तो मतलब शायद ही मिलता होगा। अगर मिल गया तो देन यू आर वेरी लकी, ठीक है। प से पागलपन भी होता है, प से पीस भी होता है ना। तो आप अपना चूज करिए कि विच प डू यू वॉन्ट टू स्टिक विथ, वॉट इज योर गोल, विच प इज योर गोल इन लाइफ, एंड गो परस्यू दैट प, ओके। क्योंकि प से परेशान मत होइए यार, प से, मेरे पास और प से वर्ड्स नहीं है। अगर आपके पास कोई प से मजेदार पॉजिटिव, प से पॉजिटिव, ओ वाह क्या बात है, स्पॉन्टेनियस इसको बोलते हैं। अभी मेरे पास कॉल आई, जब भी मैं दम मारो दम बजा रही थी ना, मेरे पास कॉल आई राम कुमार जी की। राम कुमार जी ने बोला, भाई मेरे लिए आप वो वाला गाना बजा दिए, राम का नाम बदनाम ना करो। तो भाई राम कुमार जी, आपके लिए स्पेशली राम का नाम बदनाम तो हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, और ये गाना आप ही के लिए है।

भाई कुछ भी हो जाए, हम आपका नाम नहीं बदनाम होने देंगे। राम कुमार जी, आप डिजर्व करते हैं आपका नाम पर से पॉजिटिव एक मैसेज के साथ।

और राम कुमार जी, ये आपके लिए स्पेशल गाना मेरी तरफ से, क्योंकि आपने राम का नाम बदनाम नहीं करने के लिए कहा है, तो ये हम थोड़ा सा और ट्रेंडी बनाते हैं, क्योंकि हम राम का नाम थोड़ा ट्रेंडी तरीके से भी ले सकते हैं, है ना? तो आप इस गाने को एंजॉय करें।

Hi guys, I am back. You're listening to An Evening in Dallas on 104.9 FM Fun Asia Radio. And I am your host, Ippy the Hippie. हाँ जी, just because मेरे नाम में hippie है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं hippie जैसी हरकतें भी करती हूँ. I mean, although I do love Woodstock 69, और अगर आपको उसकी story के बारे में नहीं पता है, तो आपको ज़रूर पता करना चाहिए. It was quite an amazing story. But anyways, उसके बारे में हम छोड़ते हैं. हम वो वहाँ पे, we are not talking about all that. I am getting flooded with so many calls and so many opinions and advices. Guys, I love it. पर मुझे पता है सबसे बड़ी खुशी क्या होगी कि अगर आप सब लोग एयर पे आके ये सारी ओपिनियंस और बातें शेयर करेंगे. क्योंकि पता है उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि हमारी ऑडियंस जो है, दे आर लिट, दे आर एक्टिव, दे आर थिंकिंग एंड दे आर प्रेजेंट. दे आर एक्चुअली, यू नो, दे आर नॉट जस्ट लिसनिंग इन टाइम पास इन द बैकग्राउंड. कहीं रेडियो चल रहा है, गाने बज रहे हैं, यू गाइज आर एक्टिव लिसनर्स. एंड यू नो, फॉर अ रेडियो शो होस्ट, दैट इज द मोस्ट अमेजिंग थिंग. भाई, मैं गाने तो मैं हमेशा बजाती रहती हूँ, खुद के लिए भी बजाती हूँ, लेकिन जब आप अपनी आइडियाज शेयर करते हैं, मतलब दैट इज वॉट क्रिएट्स कॉन्वर्सेशन यारो. तो आप आओ, मेरे को अलग से बता रहे हो, वो बहुत अच्छी बात है. आई लव दैट यू आर शेयरिंग योर आइडियाज. और ऐसा है ना कि मुझे इन सब चीज़ों का, जो मुझे ओपिनियंस भी मिलते हैं, आइडियाज़ भी मिलते हैं, भाई मुझे इन सब से बुरा कभी नहीं लगता, बिकॉज आई लव इट. क्योंकि आप सब अलग अलग आइडियाज़ अपने शेयर करते हैं एंड आई गेट टू हियर सो मेनी डिफरेंट ओपिनियंस. आई लव दैट बिकॉज दैट शोज़ द डिफरेंट काइंड ऑफ थिंकिंग एंड द डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोचेज दैट एग्जिस्ट विद इन ह्यूमैनिटी. एंड दैट इज वॉट मेक्स, यू नो, ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन काइंड अमेजिंग, इजंट इट? दैट्स वॉट मेक्स अस अमेजिंग. तो उसी बात से ये गाना मंसूर जी के लिए, क्योंकि हमने थोड़ा रघुपति राघव, थोड़ा रिलीजियस टाइप के गाने हमने थोड़े बजा दिए थे, तो मंसूर जी ने बोला, भाई हम अमेरिका में रह रहे हैं, हम इतना रिलीजन के बारे में नहीं करते हैं, ये आप इंडिया के लिए ये गाना बजाइए. मैंने कहा, भाई मैं इंडिया के लिए, मैं एक, हमारी एक स्पिरिट, हमारी एक साउथ एशियन स्पिरिट, हमारी एक, यू नो, रूट्स की स्पिरिट के लिए मैं ये गाना बजाती हूँ. मंसूर जी, आपके लिए खास, क्योंकि आपने वो चीज़ मुझे याद दिला दी जो हम कई बार भूल जाते हैं. रिलीजन विलीजन के चक्कर में ना हम भूल जाते हैं कि बाय द एंड ऑफ इट हमारे रूट्स तो वही है ना, चाहे हम कैसे भी रिलीजन से आए, किसी भी इकोनॉमिक डिवीजन से आए, जैसे भी आए, लेकिन हमारा देश तो वही है ना, हमारे रूट्स तो वही हैं.

क्या बात है भाइयों, कितना मजेदार गाना था वो. मैं आई एब्सोल्युटली लव दैट सॉन्ग. भाई जितने लिसनर्स हैं मेरी एक्टिव ऑडियंस, भाई बने रहिए. अभी 1 घंटा 1.5 घंटा और मैं अभी आपके साथ 10 बजे तक होने वाली हूँ. हम ऐसे ही मजेदार मजेदार सी कॉन्वर्सेशंस करेंगे. वी आर गोना टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ रियली फन टॉपिक्स एंड रियली फन थिंग्स अलॉन्ग विद सम सीरियस स्टफ टू. बट इट्स अप टू यू. ओके, वी कैन ओनली स्ट्रेच इट एज लॉन्ग एज यू गाइज वॉन्ट टू स्ट्रेच इट. बट कनेक्टिंग से बात आई तो हम आपको एक ऐड सुनाते हैं, कनेक्टिंग अमेरिका. विद कनेक्टिंग अमेरिका यू कैन टर्न योर बिजनेस एक्सपेंसेस इनटू अ पावरफुल इनकम स्ट्रीम थ्रू अ यूनिक इंश्योरेंस बेस्ड स्ट्रेटजी डिजाइन टू बूस्ट योर बॉटम लाइन. एंड इट डजंट स्टॉप देयर, दे ऑल्सो हेल्प होम ओनर्स पे ऑफ देयर मॉर्गेज इन 10 years और लेस. स्टॉप, इज दैट रियली कूल और वॉट? सो डोंट वेट, कॉल जेम्स टुडे 321-888-7345 or visit connectingamericafinancials.com and start turning your daily expenses into income. Kya baat hai? Connecting America, exactly. Bhai, India se hum religion sab chhod aaye hain. Matlab, theek hai, I am still a believer of Mata Saraswati. Aur usse mujhe yaad aaya ki aapko to maine apne baare mein bataya hi nahi. Jo mera show pehli baar sun rahe hain, guys, main hoon Ippy the Hippy, the newest RJ on 104.9 FM Fun Asia. और एक्चुअली जिनको मेरे बारे में नहीं पता है, जो मेरे रेगुलर लिसनर्स हैं, जिन लोगों ने पिछले हफ्ते ट्यून इन किया था, उसके पहले भी मैं 2-3 बार वैसे आई थी, तो जिनको मेरे बारे में नहीं पता, वैसे मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूँ. बिसाइड्स बींग एन आर जे, आई एम एक्चुअली ए jazz musician and a Bollywood musician and basically a musician of all types. Okay, so full time mera kaam kya hai, main bachchon ke sath bahut kaam karti hu. I love kids and you know what's the best part about working with kids, chahe main yahan pe bachchon ke bare mein baat karu ya na karu, but I can tell you, I can assure you that my students, I work with a lot of kids because main bahut music lessons karati hu. So I am a multi-instrumentalist. I teach piano, guitar, drums, voice, and उसके अलावा मैं group music lessons भी कराती हूँ, जिसमें मैंने musical theater के कुछ shows भी direct करे हुए हैं. जैसे Wicked का एक musical मैंने direct किया हुआ है, Harry Potter direct किया हुआ है, and I basically work in a lot of Dallas private schools. That's my network. On उनके through I have had the privilege of working with lots of different families and lots of different children of all communities, and which includes, by the way, Indian people who have Indian roots, people who have American roots, different races, Hispanic roots, everything. I have worked with kids from every socio-economic background, every race out there, and it's really amazing. And you know what's the best part about it? Bacche itne sahi hote hai na, unke dimag mein ye sari cheezein, ego shigo bolke unke dimag mein ye sab nahi jo samajhta hai. या तो दे लव यू राइट ऑफ द बैट, या तो दे लव यू और दे डिसलाइक यू, एंड दे विल बी सो सैवेज. दे बी लाइक, या यू आर काइंड ऑफ वियर्ड, आई डोंट रियली लाइक यू दैट मच. एंड आई मीन, आई एम नॉट गोना लाई, देर आर सम किड्स हु आर लाइक, व्हाई आर यू सो वियर्ड, एंड आई एम लाइक, गाइज दिस इज हु आई एम. एंड देन देर आर सम किड्स हु एक्चुअली कनेक्ट विद देयर लाइक, ओ माय गॉड, आई लव योर स्पिरिट. सो यू नो दैट्स वॉट आई डू मोस्ट ऑफ ऑल. उसके अलावा भी मैं बहुत काम करती हूँ यार, मुझे काम करना बहुत पसंद है. आई एम हु दे कॉल और वॉट दे कॉल अ वर्कहोलिक पर्सन. मुझे खाली बैठना बिल्कुल नहीं पसंद लाइफ में. तो वेन आई एम नॉट डूइंग ऑल दैट, आई परफॉर्म, आई रिलीज माई ओन सॉन्ग्स, आई राइट माई ओन सॉन्ग्स. मेरे म्यूजिक से, मैंने पूरी अपनी जिंदगी के 30 साल जो है मैंने म्यूजिक में गुजारे हुए हैं. आई हैव लर्नड लॉट्स ऑफ म्यूजिक. मैंने हिंदुस्तानी क्लासिकल सीखा हुआ है. उसके अलावा व्हेन आई वाज इन इंडिया, आई टूर्ड विथ माय बैंड ऑल ओवर इंडिया. बॉम्बे, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, गोवा, पुणे, मैंने हर जगह परफॉर्म किया हुआ है. बहुत सारे म्यूजिक फेस्टिवल्स में परफॉर्म किया हुआ है. आई इवन एक्चुअली परफॉर्म्ड for this festival called Mahindra Blues Festival, which is Asia's largest blues festival, in 2013 in front of 5,000 people. So I did a lot basically. तो वो सब करने के बाद then I was like, चलो अब अमेरिका चलते हैं, अमेरिका जाके ही करेंगे. तो आप अगर सोच रहे हैं कि मैं ये सब क्यों बोल रही हूँ, तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि भाई यहाँ पे भी मैं वही कर रही हूँ. साथ में ये आरजे वाला सीन मैंने अभी नया नया शुरू किया है,
क्योंकि मुझे लगता है कि भाई आई हैव सम सो मेनी नाइस थिंग्स टू शेयर, सो मेनी पॉजिटिव आइडियाज़ टू शेयर. समटाइम्स पीपल गेट ऑफेंडेड बिकॉज आई फील लाइक हमारे इंडियंस जो है ना, हम लोगों की ईगो हमारे कमर से भी ज़्यादा होती है. मतलब हमारी कमर इतनी बड़ी नहीं होती कि जितना बड़ा हमारा दिल होता है और उतना ही बड़ा हमारा ईगो भी होता है. तो हम छोटी छोटी बातों पर बुरा मान जाते हैं. तो भाई बुरा ना मानो, मजाक है, बुरा ना मानो. सबकी आइडियाज़ होती है, ओपिनियंस होती है. यू शुड be open and you should listen. You don't have to accept everything, but you should just be open to the fact that yes, there are people who are different from you and there are people, you know, who have different ideas. That being said, main yahan pe kya karu bhai, mera yahan pe Dallas mein I have this really beautiful band called the Dallas Bollywood Project and we do a lot of live performances. Hum Bollywood gaane bahut gaate hain, especially lot of purane gaane, you know, like from the 60s and the disco era and everything. So we do a lot of live performances. और मैं रोज़ मैं इसीलिए इस बात को बोल रही हूँ क्योंकि रिसेंटली ना मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला हिंदी गाना, मैंने इसके पहले तक तो मैं सिर्फ इंग्लिश में गाने रिकॉर्ड कर रही थी एंड आई वाज डूइंग अ लॉट ऑफ जैज़ एंड ब्लूज़ एंड स्टफ़ लाइक दैट. ओके, ज़िंदगी का पहला मैंने हिंदी गाना लिखा पिछले साल और वो मैंने रिकॉर्ड किया और रिलीज़ किया. आपको पता है कितनी बड़ी बात है. यू नो इंडिया में क्या होता है, व्हेन यू आर ग्रोइंग अप इन इंडिया ना, यू आपको सारी ज़िंदगी आप स्कूल में पढ़ते हो तब सब बोलते हैं कि वर्क ऑन योर इंग्लिश, मेक योर इंग्लिश बेटर, मेक योर इंग्लिश बेटर, मेक योर इंग्लिश बेटर. ठीक है, सो देन यू स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश, एवरीथिंग बिकम्स, यू नो, यू बिकम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन वेयर यू आर थिंकिंग इन इंग्लिश एंड यू आर मोर फ्लुएंट इन इंग्लिश दैन यू आर इन योर ओन लैंग्वेज. तो एक टाइम पे ऐसा हो गया कि आई कुड राइट पोएट्री स्टोरीज, मैं बड़े अच्छे आर्टिस्टिकली मैं इंग्लिश में बहुत कुछ लिख पाती थी, गाने वाने बहुत लिखे मैंने. पर मैंने फिर डिसाइड किया यार इंग्लिश हमारी ऑडियंस जो है हिंदी ऑडियंस है, यू नो यू हैव टू, हिंदी उर्दू ऑडियंस है, तो अगर आपको थोड़ा नाम कमाना है तो आपको हिंदी उर्दू में, यू नो, लिखना पड़ेगा, आपको हिंदी उर्दू में गाने लिखने पड़ेंगे. तो ज़िंदगी में पहली बार जब मैंने गाना लिखना शुरू किया ना अपना हिंदी या उर्दू में, मैंने कहा यार कितना मुश्किल है, मेरे से तो पोएटिक लैंग्वेज बताई नहीं जा रही. आई कॉन्ट इवन इमेजिन हाउ पीपल डू इट, आई कॉन्ट इवन थिंक स्ट्रेट. तो देर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर गोइंग टू रिलेट टू दिस बिकॉज लास्ट वीक एक माया जी बोल के एक कॉलर है, वो मेरी रेगुलर लिसनर है, उन्होंने मुझे कॉल किया. वो भी कहती है मैं भी पोएट्री लिखती हूँ पर हिंदी में मैं सोच नहीं पाती, मैं बोल लेती हूँ हिंदी, मैं भी जैसे आपके साथ मैं बोल लेती हूँ, गाने मुझे बहुत पता है, लेकिन भाई ओरिजिनल थॉट्स हम जो राइट करते हैं ना, जो शायरी वाली लैंग्वेज होती है भाई, हमसे तो लिखी नहीं जाती. तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि भाई ज़िंदगी का पहला हिंदी गाना मैंने रिलीज़ किया, रिकॉर्ड किया, इट्स आउट देयर इन द वर्ल्ड. एंड आई, फन फैक्ट, आई एक्चुअली कोलैबोरेटेड विद ए कोरियन, डैलस बेस्ड कोरियन प्रोड्यूसर. तो मतलब बड़ा ग्लोबल सा गाना हो गया एंड उसने मेरे गाने के ऊपर, यू नो, ही पुट सम लाइक डीजे बीट्स एंड यू नो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक बना के. और अगर आपको पता है, इफ़ यू नो व्हाट इंडी म्यूजिक इज, स्पॉटिफाई बोल के एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, जैसे यूट्यूब है वैसे ही स्पॉटिफाई होता है. तो एज एन आर्टिस्ट स्पॉटिफाई के नंबर्स बहुत ज़रूरी मैटर करते हैं, बहुत मैटर करते हैं. तो ज़िंदगी में पहली बार, मैं पिछले 10 साल से म्यूज़िक बना रही हूँ, ज़िंदगी में पहली बार आई हैव फर्स्ट टाइम क्रॉस दैट थ्रेशोल्ड ऑफ 1000 स्ट्रीम्स ऑन स्पॉटिफाई. और मुझे उससे बड़ी खुशी हुई, मैंने कहा यार वाह, मेरे ज़िंदगी का पहला 1000 स्ट्रीम्स. और वो भी पता है क्यों, क्योंकि उसमें एल्बम आर्ट था सरस्वती माँ का. तो मैंने इस बार बोला भाई सरस्वती माता प्लीज़ मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दे दो, मेरा ये गाना पहुँचा दो लोगों तक. और आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा गाना इट्स बीइंग प्लेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. आई मीन फ्रॉम जर्मनी टू इंग्लैंड टू अमेरिका में तो खैर बज ही रहा है, इंडिया में भी बज रहा है, नेदरलैंड्स में बज रहा है, जापान में बज रहा है, वियतनाम में लोग सुन रहे हैं, ब्राज़ील में सुन रहे हैं, डोमिनिकन रिपब्लिक में सुन रहे हैं. मेरे पास एक्चुअली स्टैट्स है क्योंकि देर इज़ समथिंग नोन एज स्पॉटिफाई फॉर आर्टिस्ट एंड यू कैन सी कहाँ कहाँ पे आपके गाने स्ट्रीम हो रहे हैं. और मैं जब वो देखती हूँ ना मुझे इतनी खुशी होती है, मैंने कहा पूरे वर्ल्ड ओवर में लोग इस हिंदी गाने को अप्रिशिएट कर रहे हैं और सुन रहे हैं जो कि मैंने खुद अपनी मेहनत से लिखा है एंड इट्स आउट देयर इन द वर्ल्ड. मुझे तो बड़ा मन है आप लोगों के लिए वो गाना बजाने के लिए, लेकिन मुझे मेरी मैनेजमेंट टीम ने एडवाइस करी है कि नहीं भाई ये गाना हम नहीं बजा सकते हैं क्योंकि ये बॉलीवुड नहीं है और हमारा रेडियो है बॉलीवुड रेडियो. बट मुझे यार आप लोगों के लिए बजाना है क्योंकि इट्स डूइंग सो वेल और मैंने इतनी बड़ी अच्छी स्टोरी सुनाई है. तो अगर आपको मेरा गाना सुनना है एंड इफ़ यू आर अ लिसनर, इट्स अ वेरी क्लीन सॉन्ग बाय द वे, FYI, इट्स कॉल्ड किताबें.
तो आप प्लीज मुझे कॉल करिए. दिस इज अ पोल दैट वी आर टेकिंग. आप मुझे कॉल करिए और बोलिए कि भाई मुझे एपी का गाना सुनना है, तो मैं ज़रूर बजाऊंगी. अगर मेरे पास 5 कॉल्स आ गई ना, और वो मैं एयर पर डालूंगी, अगर मेरे पास 5 कॉल्स आ गई एंड वील कीप इट शॉर्ट कि एपी मुझे आपका गाना सुनना है, तो मैं ज़रूर आपके लिए वो गाना बजाऊंगी. अगर नहीं आएगी कोई बात नहीं यार, ठीक है, आई मीन बॉलीवुड ही चलाएंगे. ये नेक्स्ट सॉन्ग एक रिक्वेस्ट है, मैं उनका नाम लिखना भूल गई, लेकिन आप इस गाने को सुनिए. और इसी से रिलेटेड हमारा गिव अवे क्वेश्चन भी है, तो आप ये पहले गाना सुनिए, उसके बाद मैं गिव अवे के लिए भी आती हूँ, ठीक है? पर पहले आप गाना सुनिए, फिर गिव अवे का क्वेश्चन हम बाद में बोलेंगे.

0: हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी राम कुमार जी, आपको सुनाई दे रहा है?
1: हाँ
0: बिल्कुल सॉरी, वो मेरा थोड़ा कनेक्शन थोड़ा वो लूज हो रहा था यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क का।
1: हाँ
0: बट एनीवेज, बट आप क्या बोलना चाहते हैं? आपको मेरा गाना सुनना है कि नहीं?
1: गाना आपने सुनना है। मैं तो 10 बजे तक बैठूंगा। मैं 10 बजे तक जागता हूँ,
0: अरे 10 बजे
1: कोई
0: तक
1: बात
0: नहीं, मैं आपको अगले आधे घंटे
1: नहीं
0: में ही सुना दूंगी। मुझे 3 कॉल्स और चाहिए। कोई 3 कॉल मुझे और करेगा तो मैं जरूर आपको अपना गाना सुनाऊंगी।
1: मैं दोबारा दोबारा कर देता हूँ, नहीं कर देता हूँ, तीन तीन 10 कॉल कर
0: और क्या,
1: देता
0: बिल्कुल।
1: हूँ
0: थैंक यू सो मच राम कुमार जी फॉर योर कॉल। थैंक यू। आप ये बाकी का गाना
1: आपको।
0: एंजॉय
1: ओके
0: करिए।
1: ओके, थैंक यू।

0: सुन अरे बेटा सुन।
1: Guys, we have another caller. We have Akhil online. Akhil, can you hear me?
2: Yeah, I can.
1: Akhil, can you say that one more time on air so then I can play my song like that? Say it one more time.
2: Yeah, absolutely. I want to listen to AP's song.
1: Yay! Thank
2: and
1: you.
2: This is my first ever call to this radio station. So.
1: थैंक यू सो मच अखिल. यू नो यू आर माई थर्ड कॉलर. आई एम वेटिंग फॉर टू मोर कॉल्स. अगर दो लोग मुझे और कॉल करके बोले कि भाई मुझे एपी का गाना सुनना है तो मैं तो जरूर बजाऊंगी. ओके
2: एब्सोल्युटली. थैंक यू.
1: थैंक यू गाइस. एंजॉय दिस नेक्स्ट सॉन्ग. नॉट नेक्स्ट सॉन्ग, ये गाना हमारा चल रहा है.
0: यहाँ बिजनेस का हो रगड़ा, सब लफड़ों का बोझ हटे जब पड़े हाथ एक तगड़ा.

0: सुन अरे बाबू सुन इस चंपी।
1: गाइस वी हैव अनदर कॉलर ऑन एयर, ये मेरे चौथे कॉलर है, आपको सुनाई दे रहा है?
2: हाँ जी सुन रहा हूँ।
1: बिल्कुल, तो आप दोबारा मेरे लिए एयर पे बोल दीजिए ताकि सबको पता चल जाए आप मेरे नहीं क्या चौथे कॉलर है। हाँ बिल्कुल,
2: सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल, मैं आपको एपी का गाना जरूर सुनाऊंगी। एक कॉलर मेरे पास और आ रहे हैं और वो अगर आ गए तो ब्रेक के बाद पहला गाना मैं वही बजाऊंगी। एक कॉलर और चाहिए। ओके नेक्स्ट कॉल। हाय कैन यू हियर मी?
3: यस मैम, प्लीज प्ले योर सॉन्ग, यू आर हियर आवर फेमस आर्टिस्ट ऑन स्पॉटिफाई।
1: थैंक यू सो मच। ये वी हैव आवर फाइव कॉल्स, एक छठा कॉल भी आ गया, मैं उनको भी डाल रही हूँ। सॉरी, नो प्रॉब्लम, आ गया दोबारा। हेलो रुचि, थैंक यू फॉर कॉलिंग।
4: हेलो, हाय।
1: हाय भाई, रुचि मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। और रुचि तुम्हें क्या बोलना है, तुम्हें मेरा गाना सुनना है कि नहीं सुनना है?
4: ओह यस डेफिनेटली।
1: थैंक यू यार, देखो मेरे 6 कॉल्स आ गए, अब तो गाना बजाना ही पड़ेगा। वाह, थैंक यू सो मच, मेरे एब्सोल्युटली डेडिकेटेड फेवरेट लिसनर्स। मेरी एक और कॉल आ रही है, मैं तुम्हारी कॉल हैंग अप कर रही हूं। ओके, हाय यू ऑन एयर, थैंक यू फॉर कॉलिंग।
5: हेलो,
1: हाय यू ऑन एयर, थैंक यू फॉर कॉलिंग।
5: एपी का गाना सुनना है।
1: अरे वाह, मेरे सातवें कॉल आए। गाइस आपने मेरा दिल इतना खुश कर दिया ना, आई लव इट, थैंक यू सो मच। आपका नाम क्या है?
5: मेरा नाम प्रकाश विरडिया।
1: वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, मैं जरूर बजाऊंगी आप, क्योंकि आपने रिक्वेस्ट करी है तो बिल्कुल बजाऊंगी। थैंक यू फॉर कॉलिंग। हाय यू आर ऑन एयर, थैंक यू फॉर कॉलिंग।
6: अरे आपका गाना बजाओ।
1: गाना बजाती हूँ मैं अभी ब्रेक में, अभी हम जाने वाले हैं 15 सेकंड में, उसके बाद आके मैं आपको अपना गाना जरूर बजाऊंगी, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। हाय यू आर ऑन एयर, थैंक यू फॉर कॉलिंग।
7: ऑब्वियसली आई वांट द सॉन्ग किताबें।
8: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
9: कौन सा?
8: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
9: अरे सारे तो सेम है।
8: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
9: ओ हाँ, ये तो अलग है।
10: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
9: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
11: हाँ।
9: घर रिलोकेट करनी है?
11: हाँ।
9: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
11: हाँ भाई हाँ।
9: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
12: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज। SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335। Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com। फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500। The Jago Times Commission, Jago Bhi, Jagao Bhi. Exclusive media partner, Panacea.
13: Safar khoobsurat hai manzil se bhi.
14: अरे भाई वही तो नहीं होता हर बार हर ट्रिप के इतने झंझट।
15: बिकॉज यू डोंट ट्रैवल विद लॉसिन। चाहे शादी के लिए इंडिया जाना हो, दुबई की लग्जरी शॉपिंग या यूरोप की ड्रीमी वेकेशन फोटोज, एक परफेक्ट ट्रिप के पीछे होता है एक परफेक्ट ट्रैवल पार्टनर, लॉसिन ट्रैवल। फॉर नियरली 30 years लॉसिन ट्रैवल हैज बीन हेल्पिंग फैमिलीज प्लान स्ट्रेस फ्री इंटरनेशनल ट्रिप्स विद द बेस्ट एयरफेयर्स, वेकेशन पैकेजेस, क्रूजेस एंड कस्टमाइज्ड ट्रैवल सॉल्यूशंस। लॉसिन ट्रैवल मेक्स एवरी जर्नी स्मूथ, अफोर्डेबल एंड टेंशन फ्री। कॉल नाउ 214-631-2458 or visit lawsontravel.com।
16: घर की याद नहीं आई तुझे जब से?
17: आती है यार, बहुत आती है, इसलिए तो घर जैसा टेस्ट ढूंढता रहता हूँ।
18: अब और ढूंढने की जरूरत नहीं, विजिट चंडीगढ़ वाले, जहाँ हर बाइट में मिले असली पंजाबी घर का टेस्ट।
17: सच में
11: बिल्कुल घर जैसा।
19: Try the variety of veg and non-veg specialty kulchas with gravy, butter chicken and many more. Located in Irving, there is Punjabi घर का खाना on every plate. चंडीगढ़ वाले, taste that feels like home.
20: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
21: बैठ जाऊँ? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
22: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
21: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
23: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव इन प्लेनो। एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपटीटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
20: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
24: Attention store owners, Ravi's summer kickoff is back June 3rd and June 4th, 9 a.m. to 5 p.m. And this year, it's different. We are turning the warehouse into a full tropical experience with crazy deals you won't find anywhere. New product launches and free gifts all day. Meet vendors, discover your next best sellers and stock up like never before. Same Ravi's, just bigger, bolder and way more fun. Ravi's Import Warehouse, 11029 Harry Hines Boulevard, Building A, Dallas, Texas 75229. Entry requires a valid tax number and tobacco license.
1: Guys, time aa chuka hai. Ye hai mera gana. Aap enjoy kariye. Aur agar aapko pasand aaye, please stream it on Spotify.

गाइस थैंक यू सो मच. आई एम एब्सोल्युटली फ्लोर्ड. पता है एक एंटरटेनर का सबसे मेन पर्पस क्या होता है कि भाई आप जिन ऑडियंस के लिए आप परफॉर्म कर रहे हो, चाहे आप वो गाना गा रहे हो या डांस कर रहे हो या फिर कॉमेडियन हो, ठीक है, या फिर मेरी तरह आरजे हो, अगर आपकी ऑडियंस इंटरेक्ट कर रही है तो हमारा पर्पस वहीं पे सफल हो जाता है. अब इट डजेंट मैटर व्हाट काइंड ऑफ इंटरेक्शन यू गेट. कई इंटरेक्शंस पॉजिटिव होती हैं, कई नेगेटिव होती हैं, लेकिन द पॉइंट इज आर जॉब इज टू मेक श्योर दैट द इंटरेक्शन इज स्टिल ऑन. बिकॉज रिमेंबर, ये बहुत पुरानी सेइंग है वैसे तो, मेरी ओरिजिनल भी नहीं है. रिमेंबर ऑल पब्लिसिटी इज पब्लिसिटी. नो, बट दिस इज नॉट पब्लिसिटी यू गाइस, दिस इज इंटरेक्शन. ऑल इंटरेक्शन इज ग्रेट इंटरेक्शन बिकॉज इट शोज दैट यू नो यू गाइस आर लिसनिंग एंड इट गिव्स मी, मैं एज एन एंटरटेनर माई सेल्फ और एज अ पर्सन हु इज बिहाइंड दिस माइक्रोफोन, आप मेरी शक्ल नहीं देख रहे, आप सिर्फ मेरी आवाज़ सुन रहे हैं. और जब आप मुझे इस तरह से कॉल करते हैं, मेरे पास पांच नहीं गाइज, मेरे पास कम से कम 11 कॉल्स आई हैं कि आप अपना गाना बजाइए. मुझे इतनी खुशी हुई, ओ माई गॉड. मतलब अगर आपने मेरी शक्ल देखी होती, मेरी आवाज़ सुन रहे अगर होते तो आपको पता ही चल जाता कि मेरी आवाज़ में कितनी जॉय आ रही थी. आई वाज लाइक एनीवेज, बट थैंक यू सो मच. अगर आपको मेरा गाना पसंद आए तो प्लीज कीप लिसनिंग टू इट ऑन स्पॉटिफाई, बिकॉज आप जितनी बार सुनोगे उतनी बार मुझे कुछ पैसे वैसे कुछ नहीं मिलते उससे. आई ओनली डू दिस बिकॉज इट गिव्स मी जॉय. आई ओनली डू दिस बिकॉज इट स्प्रेड्स अ लिटिल बिट जॉय. अगर आप सोच रहे हैं कि ये गाने का मतलब क्या था, व्हेन आई रोट दिस सॉन्ग किताबे, द होल पर्पस व्हेन आई रोट दिस सॉन्ग वॉज बेसिकली आई वॉज गोइंग थ्रू अ रियली डिफिकल्ट प्लेस इन लाइफ, ठीक है. क्योंकि कई कई बार क्या होता है ना, आई मीन जैसे मैं अपना रेडियो शो कर रही हूँ, आपको शायद मेरी बातों से पता ही चल गया होगा कि भाई ये लड़की जो है थोड़ी मुँहफट टाइप की है भाई. मतलब जो आता है वो ही बोल देती है भाई. हम लोगों को थोड़ी बहुत फिल्टर हमने भी लगाई हुई है, ऐसा कुछ नहीं है, हमने भी फिल्टर किया हुआ है, लिब्रिटा हमने भी लगाया हुआ है यहाँ पे. लेकिन उसके अलावा भी आई एम ऑनेस्ट, आई एम लाइक मुफट, बिकॉज भाई हम दिल्ली वाले हैं, दिल्ली वाले ऐसी बात करते हैं. कई बार लोग हमको बोलते हैं कि भाई आप इतनी रूडली बात क्यों करते हो. भाई हम रूडली बात नहीं कर रहे, हम लोग ऐसी ही बात करते हैं. इट्स एक्चुअली द वे वी शो आर लव टू ईच अदर. ओके, सो वेन यू गाइज उस टाइम पे ना, एक आई वॉज गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट प्लेस इन लाइफ, क्योंकि मेरे पीठ पीछे, मैं म्यूजिक इंडस्ट्री में थी, इंडिया में काफ़ी पॉपुलर थी, मेरे पीठ पीछे लोगों ने कुछ बोलना बोलना शुरू कर दिया. आई यूज टू हैव दिस एक्स, उसने जाके ना मेरे पीछे कुछ स्टोरीज वगैरह फैलानी शुरू कर दी, और इस तरह से थोड़ा वो हो गया, गॉसिप वगैरह हो गया. तो देन आई हैड टू बेसिकली बी लाइक नो, आई नीड अ फ्रेश स्टार्ट, आई नीड टू मूव टू अमेरिका एंड स्टार्ट न्यू. सो आई बेसिकली लेफ्ट एवरीथिंग ऑन अ विम एंड आई वाज लाइक अब मैं जा रही हूँ अमेरिका, मैं अपनी नई जिंदगी शुरू करने वाली हूँ नए लोगों के साथ, जो यू नो हु अप्रिशिएट एवरीथिंग दैट दिस कंट्री हैज टू ऑफर. ओके, सो देन आई गॉट अप एंड आई लेफ्ट. मैंने कहा मैं जा रही हूँ, टाटा बाय बाय भाई हूँ, जो भी है आई एम गोइंग. एंड ऑनेस्टली दो मुझे अमेरिका में आके इतना प्यार मिला है फ्रॉम माई कम्युनिटी, फ्रॉम माई न्यू फ्रेंड्स, फ्रॉम यू नो एवरी वन. इट्स जस्ट बिन इनक्रेडिबल. कई बार मुझे लगता है कि मे बी आई वॉज ऑलवेज मेंट टू बी हियर रादर दैन इन इंडिया. ठीक है, मैं इंडिया में पैदा हुई, मैंने अपनी काफ़ी साल गुजारे वहाँ पे, लेकिन एक वो पर्पस होता है, एक जर्नी होती है सबकी, सबको एक जर्नी से गुजरना पड़ता है, सबको एक सफ़र तय करना पड़ता है टू फाइंड देयर फाइनल डेस्टिनेशन इन लाइफ. एंड आई फील लाइक अमेरिका हैज़ गिवन मी दैट फाइनल डेस्टिनेशन. आई डोंट नो अगर आप इस चीज़ से रेजोनेट करते हैं. कई लोगों क्या होता है, आई मीन दे कम टू अमेरिका देन दे गो बैक, कि इंडिया चले जाते हैं, वापस पाकिस्तान चले जाते हैं, कहीं से भी आप आए हों वो वापस चले जाते हैं, बिकॉज मे बी दिस इज नॉट द प्लेस. बट मे बी अगर आप अमेरिका आए हैं, यू हैव अ पर्पस दैट यू नीडेड टू सर्व हियर. भगवान आपको, ऊपर वाला आपको एक जर्नी पे इसीलिए ले जाता है क्योंकि आपको उस जर्नी से शायद कुछ सीख मिले. मुझे मेरे पास्ट जो लाइफ जो मेरी थी इंडिया में, जितने भी लोगों से मैंने इंटरेक्ट करी, मुझे इतनी सीख मिली है, मैं एक चीज़ को भी रिग्रेट नहीं करती हूँ उसमें. मैं मेरे को हमेशा लगता है कि नहीं यार, देयर इज़ अ रीज़न मैं वहाँ पे क्यों थी इन द फर्स्ट प्लेस, बिकॉज मुझे ये चीज़ें सीखनी थी. और आज मैं अपने बारे में वो चीज़ें जानती हूँ. अगर मैंने वो चीज़ें वहाँ पे उस टाइम पे नहीं सीखी होती तो शायद आई वुड नॉट हैव बीन एबल टू सर्वाइव और थ्राइव द वे आई एम इन अमेरिका. एंड आई लव इट बिकॉज उससे चीज़ें मुझे बहुत सीखने को मिली. सफ़र से याद आया, ये अलग रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास, तो आप ये गाना सुनिए. जिंदगी का हमारा सबका सफ़र सुहाना हो, और
गाना पहले सुनिए, बातें बाद में करेंगे।

0: Alright guys, we are back and thank you so much. अभी जो मेरे पास बीच में एक कॉल आई ना, बड़ी इंटरेस्टिंग सी कॉल आई, जब यू नो व्हेन आई वाज टेकिंग अ पोल कि भैया आप लोगों को मेरा गाना सुनना है कि नहीं, आप मुझे बताइए, देन आई विल प्ले इट फॉर यू. तो जो इतने सारे लोगों ने मुझे कॉल की, सबसे इंटरेस्टिंग कॉल पता है, मतलब वैसे तो सबके कॉल्स बहुत ही प्यारे प्यारे थे, थैंक यू सो मच, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग कॉल मुझे लगी क्षितिज जी की. क्षितिज जी हैड कॉल्ड मी एंड क्षितिज जी कहते हैं कि भाई मैं ये वाला जो मैं हूँ, मैं आपने बोला कि आपकी दोस्त ने इसके पहले कॉल किया, मैं आपका दुश्मन बोल रहा हूँ. मैंने कहा अच्छा मेरा दुश्मन, OMG, उसका मतलब वाय? तो उन्हें बोला देखो भाई आप अपने मैनेजमेंट को जाके सुनाइए कि आपके दोस्त को तो आपका गाना सुनना ही है, आपके दुश्मनों को भी आपका गाना सुनना है. ऑलराइट क्षितिज, यस एग्जैक्टली, मुझे बड़ी खुशी हुई. मैंने कहा दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, है ना. तो भाई मैनेजमेंट को मेरी बात सुननी पड़ेगी, ऐसे थोड़ी ना भाई, दोस्त दुश्मन सब प्यारे प्यारे हैं. एनीवेज गाइस, इट इज टाइम फॉर द फन पिज्जा किचन गिव अवे, बिकॉज दिस इज अ फन एशिया रेडियो एंड आई एम योर फनेस्ट आरजे ओवर हियर, इपी द हिपी. एंड आर यू क्रेविंग समथिंग चीजी विद अ देसी ट्विस्ट? फन पिज्जा किचन इज वेयर फ्लेवर मीट्स फायर. भाई उनका अचारी पनीर पिज्जा है या तंदूरी चिकन पिज्जा है, और भी बहुत सारे पिज्जा फ्लेवर्स हैं. अगर आपको खाना है और $10 का फ्री गिफ्ट कार्ड चाहिए, तो आपको इस अगले क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा. अगले क्वेश्चन का मैं आपको एक गाना बजाऊंगी, ठीक है? वो बहुत ही आसान गाना है, मतलब बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही आसान गाना है, ऐसा कुछ है भी नहीं. वो है विवेक ओबरॉय, यहाँ पे ही इज ऑन अ बाइक, ठीक है? और एक बड़ा सही सा गाना चल रहा है. आपको मुझे ये बताना है कि ये कौन सी पिक्चर का गाना है और ये किसकी आवाज़ में ये गाना गाया गया है, ठीक है? तो यू प्रॉबली ऑलरेडी नो दिस सॉन्ग. इफ़ यू डोंट नो दिस सॉन्ग, यू विल नो दिस सॉन्ग राइट नाउ, बिकॉज आई लव दिस सॉन्ग, मुझे बड़ी ग्रूवी लगता है. तो आप मुझे उसके सिंगर का नाम बताइए. मुझे कॉल्स पहले ही आ गई भाई, मैंने गाना तो बजाया नहीं, फिर भी चलो ले लेते हैं. हाय यू आर ऑन एयर, थैंक यू फॉर कॉलिंग.
1: तो आप मुझे उसके सिंगर का नाम बताइए.
0: हेलो, hi, you're on air, thank you for calling.
2: Hi, I'm Shreya and the song is Oh Hum Dum Suni Ore.
0: That sung is by correct. KK. And there's one more singer.
2: KK, Satya. I don't remember it. One more singer is
0: one
2: there.
0: One more singer.
2: A.R. Rahman.
0: He's the composer. I'll tell you the name. Chalo, you know what?
2: Yeah.
0: Let me play the song. Maybe you can call me back. There's one more singer. There's okay. Two singers over there. Okay?
2: Oh, okay.
0: Okay. Bhai, maine gaana bajaya nahi, pehli call aa rahi hai. Chalo. Hi, you're on air. Thank you for calling.
1: There's two singers over there.
3: Yeah, hi. Thank you. The answer for that question is Chalte Chalte movie and Oh Hum Dum Suni Ore.
0: Yeah. Song. Well, the song is correct. But the movie is not Chalte Chalte. But the what the questions the question is ki movie ka naam bataiye and aur do singers hai, do singers ke naam bataiye. Pehle main gaana baja leti hu. Aap
3: KK and Shan,
0: that is correct, but unfortunately you got the name wrong of the movie, so I'll have to call, give this to someone else. Hi, you're on air, thank you for calling.
4: Hi, I'm calling to answer the question.
0: Hanji, Bhanji, bataiye. First, tell me your name.
4: Ruchi.
0: Ruchi, thanks for calling, Ruchi. Ruchi, what is the answer to the question?
4: Okay, so, gaana gaya hai A.R. Rahman ne?
0: Nahi, A.R. Rahman ne compose kiya hai. Oh.
4: Oh, okay.
0: So close.
4: Okay. All righty.
0: Hi, thank you for calling. You're on air. Hello? Oh. Hi, thank you for calling. You're on air. So,
2: I'm Shreya.
0: Tell me the name of the movie and tell me the names of the two singers who...
2: Satya, KK and Shan.
0: Yes! And you are the winner for today's giveaway.
2: Thank you.
0: And what is your name?
2: Shreya.
0: Shreya, I'm going to put you off air while I play that call. ठीक है, मैंने तो गाना अभी तो प्ले दैट कॉल कह रही हूँ, प्ले दैट सॉन्ग एंड देन आई विल टेक योर इन्फो. ओके
2: श्योर, थैंक यू.
0: ओके गाइज, एंजॉय द सॉन्ग व्हाइल आई टेक श्रेयाज इन्फो.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Asia 104.9 FM.
3: Turn up the volume!
4: Mark Hill is the leader Frisco needs to move forward together. As a former school board president, Mark has a proven record of integrity, fiscal responsibility, and bringing people together. He values the vibrant contributions of our Asian and Indian communities, recognizing that our strength lies in our diversity and collaboration. Mark rejects divisive rhetoric, focusing instead on smart growth, public safety, and ensuring every voice is heard. For steady, experienced leadership that unites our city, vote for Mark Hill for Mayor. Let's build a stronger Frisco together.
5: Paid for by Mark Hill for Mayor.
6: Heere moti maina chahu.
7: Achha, manifest karne se pehle thoda dubara soch lo. Kyunki ab diamonds mein mil raha hai buy two, get one free offer. Tanmay Jewelers in Irving. Diamond rings, pendants, earrings aur bridal jewelry par buy two, get one free. Aur wo bhi sab kuch wholesale price par. Chahe proposal ho, wedding ho, ya bas apni sparkle upgrade karni ho. Ab shine double within budget. Luxury, brilliance, celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
8: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल वन, मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल टू, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट। लेवल थ्री, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड नो कॉम्प्रोमाइजेस।
9: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीपीटी। तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
10: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
11: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
12: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
13: Har samasya ka hal hai astrologer Ishwar ke paas. 400 saal ki family wisdom ke saath world famous astrologer. Ab Dallas mein.
12: That magic removal ho. Love and relationship issues ho. Get trusted solutions with 100% privacy.
13: Thousands ki life badli unki divine guidance se. Now it's your turn. Samasya ka पक्का समाधान एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com।
14: हाय, दिस इज शर्वरी, यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो।
15: हाय यारो दोस्तों, वी आर बैक। यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो, द एब्सोल्यूट फनेस्ट रेडियो चैनल अब देयर इज इन DFW बाय द वे। Okay, you're listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, and this is Ippy the Hippie, the newest baddie here, who is unapologetic about her opinions and her ideas, and that's what makes it fun. Okay, bhai log, aage badhne se pehle ek thodi announcement kar de. This next part of the show is brought to you by AG FinTax, one of the fastest growing tax firms in the US. They offer innovative financial services with untapped potential for both individuals and businesses. They are trusted, efficient, and they get you ready for the future. So call 469-942-9888 or you can go to agfintax.com. Abhi yaar, last ek ghanta hai aaj ke show ke liye. I hope aapko mera show pasand aaya. Mujhe to पता है कि आपको मेरा गाना तो जरूर पसंद आया, क्योंकि मुझे उसके बाद भी कितने लोगों ने कॉल करके बोला दैट दे रियली रियली एंजॉयड दैट सॉन्ग। भाइयों एंड बहनों एंड मेरे दोस्तों और सखियों एंड एवरीवन, आई एम सुपर सुपर ग्रेटफुल कि आप लोगों को मेरा गाना इतना पसंद आया, अब मुझे इंस्पिरेशन मिली है कुछ और गाने बनाने के लिए, यू नो लाइक आई एम गोइंग टू राइट सम मोर हिंदी सॉन्ग्स. थोड़ा मेहनत लगता है हिंदी में सोचने के लिए, मतलब जितनी फ्लुएंटली इंग्लिश फ्लोज आउट ऑफ माई माउथ उतनी फ्लुएंटली हिंदी डज नॉट फ्लो आउट ऑफ माई हैंड्स एंड दीज फिंगर्स, क्योंकि लिखना पड़ता है ना, तो थोड़ा सोचना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है उसके लिए, थोड़े वर्ड्स ढूंढने पड़ते हैं. ठीक है, मतलब आई विश मेरे पास वो कबीर या अमीर खुसरो जैसी टैलेंट होती, पर है नहीं मेरे पास उतनी वैसी वाली टैलेंट, किसी और चीज़ों में टैलेंट है, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, वन डे प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, है ना, तो प्रैक्टिस कर करके हम बन जाएंगे परफेक्ट. उससे याद आया, दिस इज आवर लास्ट आवर

ऐसी वाली टैलेंट, किसी और चीजों में टैलेंट है, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं. वन डे प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, है ना. तो प्रैक्टिस कर करके हम बन जाएंगे परफेक्ट. उससे याद आया, दिस इज आवर लास्ट आवर फॉर टुडे. उसके बाद मैं कल भी आने वाली हूँ 7 से 10, परसों भी आऊंगी, तरसों भी आऊंगी, सरसों शायद नहीं आऊंगी. सरसों वैसे आई डोंट थिंक टाइम रिलेटेड कोई वर्ड है. सरसों तो खाने वाली चीज होती है, बट कई बार बोलने में मजा आता है. आज कल परसों तरसों सरसों नरसों बरसों, बट आई विल बी हियर ऑल द वे टिल थर्सडे 7 to 10 PM. सो ट्यून इन, बिकॉज मैं बहुत मजेदार चीजें लाती हूँ. ओके, सो लास्ट वीक आई ब्रॉट इन सम इनक्रेडिबल ज्यूसी रेडिट थ्रेड्स दैट आई वॉज रीडिंग आउट दैट आई फाउंड वर वेरी very funny and they were like ridiculously hilarious. And then aap sabne mere sath share bhi kiya apni stories, apni bachpan ki stories. We really had a lot of fun. But kal aaiye, this is the official beginning of summer yaar. Aaj pehla June hai, 1st of June, official beginning of summer. Aaj main ghar se bahar nikli to I could feel the heat and I was like, bro, bhai summer aa gaya hai, pata chal gaya hai. Meri gaadi ke andar ban chuka tha oven. आई एम श्योर अगर मैं ब्राउनी बैटर डालती उसके अंदर वो बन जाता, ब्राउनी गारंटीड बन जाता. मतलब जब आपको दरवाजा खोल के जब आप लेदर वाली सीट्स पे बैठते हो ना, डोंट वेयर शॉर्ट्स व्हेन यू आर डूइंग इट, देन अदरवाइज योर बैक इज गोइंग टू बर्न लाइक एनीथिंग. ओके, देन उसके बाद मैं सोच रही हूँ यार कपड़े वाली सीट्स ही लगा लेनी चाहिए थी, वो एटलीस्ट बर्न तो नहीं होती है कम से कम. इट गेट्स रियली हॉट. मेरी गाड़ी में ना हमेशा एक लिप बाम भी रहता है और वो लिप बाम पूरा मेल्ट होके पूरे मेरे गाड़ी के डैशबोर्ड में इधर उधर सब जगह फैल गया. मैंने कहा ओ नो, ये गर्मी आ गई है, हमें पता चल गया है. गर्मी तो बिल्कुल एकदम सॉलिड, इट वाज लिटरली लिक्विड. ऐसा लग रहा था नारियल तेल को गर्म करके घी में डाल के ला दिया है. मतलब इट वाज दैट मेल्टेड. ओके, बट एनीवेज वो हम बातें बाद में करेंगे. ये लास्ट वाला आवर जो है, दिस इज अ लिटिल बिट फॉर द ग्रोन अप्स. So we are going to talk about something very important. Maybe a little serious, maybe a little, I don't know. You can tell me what you think this is. I mean, I like to think these are very important things that people must discuss in life. I had a call earlier, matlab in my first hour, Mansoor ji ka call aaya tha. Mansoor ji had also requested for a song jo maine bajaya. Lekin unhone, we were talking about, you know, the new dating culture and new relationship standards and everything, which I mean, it is not a joke, you guys. Life has changed. It is not the same as what it used to be. Relationships ka jo matlab hota tha pehle ke zamane mein, wo nahi hai. Aaj ki date pe, matlab it's literally like ordering fast food at McDonald's. Relationships and dating has become like that, you know. You swipe right, so you swipe left. Kyunki uske agar wo nahi karte ho, then you don't have a place to meet a person unless you're a college kid or something like that, you know. I mean, people are mostly working from home, remote jobs kar rahe hain. Agar aap kisi se miloge bhi to kahan miloge? Gym mein miloge? Gym mein log workout kar rahe hote hain, theek hai? Usme aap kisi ko jaake approach karoge, you come across as the creep. And I'm not kidding, a lot of women think that. A lot of men also don't want to approach because of that, because they're like, nahi yaar, hame matlab gaali wali de denge, chaate waate pad jayenge, hum nahi jayenge aage. To matlab ye wali na bahut serious wali situation hai. तो हम इसी चीज़ के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे. और उसके अलावा मंसूर जी ने मुझे कॉल करके बोला कि भाई आज के ज़माने में आपकी जनरेशन में इतने डिवोर्सेस क्यों हो रहे हैं. तो मैंने बोला आपने बहुत सही पॉइंट आउट किया है, देयर इज सो मेनी डिवोर्सेस एंड इट्स अ वेरी कॉमन थिंग. कहते नहीं, आपका इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, आपको इसके बारे में बात करनी चाहिए, दैट आपको यू नो ऐसे बोलना चाहिए कि लोग अपनी शादियाँ बचा के रखें एंड वगैरह वगैरह. तो हम उस चीज़ के बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे. मतलब एक ही घंटा है तो उतनी डिटेल में तो हम बात नहीं कर पाएंगे. अगर हमारी बात आज ख़त्म नहीं होती है तो वी विल कैरी इट ऑन टू टमोरो एंड वी विल कंटिन्यू दिस प्लेटफॉर्म टमोरो. बट अंटिल देन यू एंजॉय द सॉन्ग एंड देन वी कम बैक एंड देन वी विल टॉक अ लिटिल बिट मोर अबाउट दिस. ओके,

एंड गाइज वी आर बैक. तो ऐसा है कि अभी मेरे पास कॉल आई एंड माया जी मेरी जो रेगुलर लिसनर है उन्होंने भी ये बात बोली. अर्लियर मेरे पास मंसूर जी की कॉल आई. तो ये जो रिलेशनशिप वाली जो चीज़ है ना, आई थिंक आफ्टर स्पेंडिंग सो मेनी ईयर्स यू नो बींग विथ समवन एंड देन बींग सिंगल फॉर सो मेनी ईयर्स. And there is, I spend a lot of time on social media, you guys. I spend so much time because as an artist, theek hai, as an artist, as a person who is, you know, in the media, like radio, ya fir somebody who has to be current and updated, kyunki main bachcho ke saath kaam karti hoon and they are already into like new things and stuff like that. So I have to be on social media. I have to know what's hip. I have to know what's happening. So, ये एक दिन ना सोशल मीडिया स्क्रोल करते करते आई केम अक्रॉस दिस रियली इंटरेस्टिंग फ्रेज. ओके, इट इज कॉल्ड द मेल लोनलीनेस एपिडेमिक. ओके, नाउ अपेरेंटली फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई डोंट नो हाउ मेनी इयर्स. ओके, यू गाइस कैन गूगल इट बाय द वे. इफ यू हैव फाउंड अ पार्टनर, अमेजिंग. अगर आपको पार्टनर नहीं मिला है देन यू प्रोबेबली रेजोनेट विद व्हाट आई एम अबाउट टू से. So basically the situation is ki for the first time in our so many years of existence there is a worldwide male loneliness epidemic, which means a lot of the guys are actually single and are not being able to find partners or mates simply because apparently women have like really high standards right now. That's one reason that a lot of the guys say. Number two is women basically don't feel the need to have a partner anymore. Kyunki pehle ke zamane mein kya hota tha? Patriarchy was pretty popular, not just in India, all over the world. America mein bhi patriarchy kafi strong hai. Whether you look at like the Christian marriage institutions or ya UK mein dekho, patriarchy is pretty much the main social system across the entire world, minus some societies, say in Africa or something, ya Southeast Asia mein kuch aise hai jahan pe matriarchy follow hoti hai. Patriarchy nahi hoti, usme bhi matriarchy jo hoti hai wo bhi naam ki matriarchy hoti hai technically, kyunki maybe the property is passed down from mother to daughter but the person who controls it is still the daughter's husband. So anyways, that's deep into sociology stuff which I don't think you guys want to listen to right now. Agar aapko sunna hai to aap mere ko batana call karke, to I will give you some more information about those societies jahan pe patriarchy nahi hoti, jahan pe matriarchy hoti hai. Like, you know, it's, and basically it's not even like a situation of ideas at this point, it's like how the property and wealth has passed on basically. Theek hai, very objective, nothing subjective and all that. To मैं जो बोल रही थी वो ये है कि पेट्रियार्की ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रिटी मच प्रेवलेंट है. तो उसमें क्या हुआ है, पहली बार जिंदगी में, इतने सालों की जिंदगी है, वुमेन आर रियली रियली रियली रियली रियली इंडिपेंडेंट. ओके, दे हैव गुड जॉब्स विथ रियली गुड पे. ओके, एंड नाउ वुमेन आर लाइक, यार वी डोंट नीड टू फाइंड अ हस्बैंड और वी डोंट रियली नीड टू फाइंड अ पार्टनर when I can just pay for everything myself. Like pehle ke zamane mein women used to find partners and husbands and everything, ki chalo the husband will work and I will become the wife and the mother and I will, main ghar sambhalungi, mere pati bahar ka kaam sambhalenge. Bahut aisi situations hoti thi, lekin aajkal ke zamane mein thoda wo kam hone laga hai, kyunki aajkal ke zamane mein kya ho gaya hai, single income household kahin nahi chal pati yaar, economy bahut kharab ho gayi hai. Aur aisa nahi hai कुछ लोगों के लिए इट्स बाय चॉइस. सम वुमेन लव टू वर्क, आई लव टू वर्क, आई एम वन ऑफ दोज, बट देर आर सम वुमेन जिनको मजबूरी में काम करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपकी फैमिली है, चाहे वो इंडिया में हो या अमेरिका में हो, अगर आपकी फैमिली है तो डबल इनकम हाउस होल्ड जब तक नहीं होगा आपका, यू कांट लिव अ कंफर्टेबल लाइफ. इन्फ्लेशन इज लाइक स्काई रॉकेटिंग, सो वुमेन ऑल्सो हैव टू वर्क. प्लस साथ में वुमेन को काम भी करना पड़ता है, फिर घर आके बर्तन भी धोने पड़ते हैं, खाना भी पकाना पड़ता है, बच्चों के भी ध्यान रखने पड़ते हैं एंड ऑल ऑफ दैट. मैं ये नहीं कह रही हस्बैंड्स नहीं करते, हस्बैंड्स भी करते हैं, लेकिन वही चीज़ होती है ना. तो अगर यही सारी चीज़ें, पहले जैसी सिचुएशंस ही नहीं रही हमारी शादी की एंड ऑल ऑफ दैट की,
तो विमेन आजकल वो कहती है कि हमें शादी करने की जरूरत ही क्या है, अगर हम मुझे पैसे कमा के घर का काम अगर यही सब करना है, जॉब भी करनी है घर का काम भी करना है, तो वो मैं अकेले ही कर सकती हूँ, व्हाई डू आई नीड अ पार्टनर, स्पेशली बिकॉज अनलेस यू लाइक रियली लोनली और मे बी यू फाइंड लाइक एब्सोल्युटली द मोस्ट अमेजिंग ह्यूमन बींग ऑन दिस प्लानट हु इज़ वेरी वेरी सपोर्टिव एज अ हस्बैंड. तो इस वजह से अ लॉट ऑफ वुमेन आर चूजिंग टू नॉट गेट मैरिड ऑल्सो. एंड द अदर थिंग इज अ लॉट ऑफ वुमेन, आई डोंट थिंक अ लॉट ऑफ इंडियन वुमेन आर चूजिंग दिस, बट अ लॉट ऑफ अमेरिकन वुमेन आई नो फॉर डेफिनेटली आर चूजिंग कि चलो ठीक है, यू नो दे आर चूजिंग टू बी सिंगल मॉम्स और वट एवर इट इज, बिकॉज यू नो दे कैन डू इट नाउ. आई मीन एंड इट्स नॉट सच अ टैबू एनी मोर, इतना कुछ मतलब है नहीं. आई डोंट थिंक इंडियन वुमेन ऐसे कर रही हैं ज्यादातर, मुझे नहीं लगता, लेकिन अमेरिका में तो बहुत टाइम से चल रहा है, यूके में भी बहुत टाइम से चल रहा है. बींग अ सिंगल मॉम इज वेरी कॉमन, वेरी मेरी पड़ोसन इनफैक्ट मेरे घर के ऊपर, मैं जिस अपार्टमेंट में रहती हूँ मेरे ऊपर ही एक लेडी है, वो सिंगल मॉम है, उनके दो बच्चे हैं, वो शी वर्क्स फ्रॉम होम, अपने बच्चों को पालती है, उनका एक बड़ा बच्चा है वो स्कूल जाता है और दूसरा वाला तो छोटा सा बेबी है, शी इज़ हैप्पी, उनके पास एक कुत्ता भी है. एंड आई डोंट सी आई मीन एनी बॉयफ्रेंड्स और एनी वन कमिंग टू सी हर और एनी थिंग, मुझे तो दिखता है एनी वेज. तो मैं जब ये सारी चीज़ें आती ना तो मैं सोचती हूँ कि यार मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन जो है ना, मैरिज इज बेसिकली एन इंस्टीट्यूशन, ओके, इट्स अ सोशल इंस्टीट्यूशन, इट डज नॉट एग्जिस्ट लाइक इट यूज टू बी इन लाइक फ्रॉम बैक इन द डेज. बैक इन द डेज में एक डिफाइंड बाउंड्रीज होती थी सबकी, कि वाइफ घर का संभालेगी, आदमी जो है बाहर का काम करेंगे, दैट वॉज अ ट्रेडिशनल मैरिज. तो आज के ज़माने में वो वाली ट्रेडिशनल सिचुएशंस है नहीं, तो उसकी वजह से कई बार क्या होता है ना, तनाव भी आ जाते हैं मैरिजेस में, इसीलिए डिवोर्सेस भी होती है. तो आई फील लाइक हमारी विमेन को तो हमने बहुत सिखा दिया कि पढ़ाई करो, बी लिबरल, बी ओपन माइंडेड, हैव थॉट्स, यू नो, गो आउट इन द वर्ल्ड, गेट अ जॉब, बी इंडिपेंडेंट, ये सब हम बहुत अच्छी चीज़ें सिखा रहे हैं लड़कियों को. लेकिन लड़कों को इसके साथ डील कैसे करना है अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी लड़की आती है, हाउ कैन यू बी अ बेटर पार्टनर टू अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ वुमन हु इज नॉट लाइक योर मदर. बिकॉज आप सोचिए, आपकी मदर वैसी फिगर नहीं है, आपने अपने घर पे जो ट्रेडिशनल मैरिजेस देखे, यू कांट रेप्लिकेट द सेम रूल्स दैट यू हैव सीन इन योर हाउस इन द मॉडर्न डे सेटिंग, बिकॉज मे बी योर पार्टनर इज टोटली डिफरेंट. And that is something to really, really think about. That's where marriage counselors and all these guys, they actually really come into play, because they give you tools. कि अगर आपको अपनी शादी बचानी है या marriages पे काम करना है, और मतलब ठीक है सबकी अपनी अपनी choice होती है, जो भी होती है, but you know, seeking help from a counselor is not bad. Sometimes a counselor can give you some really great advice कि अच्छा, you are having this conflict. बट बचपन से हम इंडिया में भी जब हमने पढ़ाई करी है, वी आर नेवर टॉट टू हैंडल ऑल दिस कॉन्फ्लिक्ट, कि हम ये कॉन्फ्लिक्ट को डील कैसे करें, हाउ डू वी शेयर आर थॉट्स, हाउ डू वी शेयर आर फीलिंग्स. दोज आर सम थिंग्स दैट अ मैरिज काउंसलर कैन हेल्प यू विद, टू हैव द कॉन्वर्सेशन. तो अगर आपको जैसे मंसूर जी ने बोला कि ये बच्चे, वो टिकटॉक देख रहे थे मंसूर जी, तो मंसूर जी ने बोला कि हमारे बच्चे टिकटॉक देखते हैं और यहाँ पे इतने डिवोर्सेज होते हैं वगैरह वगैरह, आपके पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, प्लीज गिव देम सम एडवाइस ऑन हाउ टू हैंडल इट. वेल, माई एडवाइस टू यू गाइज हु आर हैविंग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स एंड एवरीथिंग इज, इफ अगर आप खुद से अपनी कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ गो सीक आउट सम एक्सटर्नल हेल्प. दोस्तों के पास मत जाइए, क्योंकि यू नेवर नो, योर फ्रेंड्स माइट एक्चुअली बी डीलिंग विद द सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. तो पता चले आप दोस्तों के पास जाओगे सोल्यूशंस के लिए, वो उल्टा आपको अपने और कॉन्फ्लिक्ट्स में फंसा देंगे और कुछ कुछ मतलब, यू नो, डोंट गो टू समवन हु इज नॉट एन एक्सपर्ट. जैसे अगर आपको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए तो ठीक है दोस्तों से पूछते हैं, बट यू विल ऑलवेज गो टू लाइक समबडी हु इज एन एक्सपर्ट, राइट, समबडी हु नोज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ 401k एंड एन IRA और रॉथ IRA, राइट. यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग, और यू विल रीड सम सेल्फ हेल्प बुक्स लाइक मी, लाइक यू नो, यू विल फिगर दैट आउट. सिमिलरली गो टू एन एक्सपर्ट, गो टू अ रिलेशनशिप काउंसलर हु हैव द टूल्स टू have a conversation with, and these conversations are very sensitive, matlab kyunki apne partner ke sath conversations hote hai yaar, matlab language ka dhyan rakhna padta hai, tone ka dhyan rakhna padta hai, you have to make sure that you are actually catering to other people's needs as well,
यू नो, आप अपनी बात भी सामने रखिए और दूसरे की बात भी सुनिए. तो सीक एडवाइस फ्रॉम ए साइंटिस्ट इन द सेंस लाइक अ रिलेशनशिप साइंटिस्ट, समबडी हु नोज लाइक साइकोलॉजिस्ट एंड दोज पीपल हु हैव स्टडीड दिस काइंड ऑफ बिहेवियरल पैटर्न्स. ओके, तब तक के लिए आप ये गाना एंजॉय करिए. मैंने बहुत बोल दिया.

0: जी हाँ जी गाइस, दिल तो हमेशा बच्चा ही रहना चाहिए, तभी आप आगे मतलब यू नो लाइफ अच्छे से खुशी की तरह से आप जी पाओगे. वी आर अबाउट टू गो इन टू अ लिटिल बिट ऑफ अ ब्रेक, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट कर दूं. दिस नेक्स्ट पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय टेक्सास प्राइमरी केयर. फॉर 13 ईयर्स टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक हैज प्राउडली केयर फॉर आर कम्युनिटी, नाउ ग्रोइंग विद अ ब्रांड न्यू नेम एंड अ सेकंड फ्रिस्को लोकेशन इंक्लूडिंग लनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य. लनॉक्सी मेडिकल ब्रिंग्स प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, इन हाउस लैब टेस्टिंग, एक्स रे, सी टी स्कैन, कार्डियक डायग्नोस्टिक्स एंड हिमालयन मेड स्पा सर्विसेज ऑल अंडर वन रूफ. Stop! It's so much. Okay, you have to go visit them. I'll also go there one of these days. One of these days. Okay, they are open 7 days a week from 8 a.m. to 8 p.m. You can walk in anytime. No appointment needed. Bhai, a little while ago, somebody called me up and उन्होंने बोला सबसे सबसे इंटरेस्टिंग कमेंट एंड सजेशन वगैरह वगैरह जो आए इतने, वो कहते हैं कि आपकी ये नेचुरल आवाज ऐसी है, इज दिस योर रियल एक्सेंट और इज दिस रेडियो पर्सनालिटी एक्सेंट. मैंने कहा भाई आई एम अ पर्सन विद मल्टीपल पर्सनालिटीज ऑनेस्टली. नो आई डोंट हैव मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर ऑनेस्टली, बट यू नो आपने वो प्रियंका चोपड़ा का वो इंटरव्यू देखा है जिसमें वो कहती है कि प्लेन में चढ़ते ही उसका उनका एक्सेंट बदल जाता है. मेरा भी वैसे कुछ होता है, जब मैं हिंदी में बात करती हूँ ना बिल्कुल देसी वाली एकदम दिल्ली वाइब्स आती है. और जब
1: इस शहर को हुआ क्या, कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं, क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में, कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता, जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का.
2: पंडित रामनाथ जी जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा, लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
3: विजिट psychicramnath.com, कॉल 469-347-4401. प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध.
4: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू. लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई. डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com. फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Panacea.
5: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession. Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument, or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas. Because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA. Your talent, your spotlight.
0: गाइज मेरे बोलते बोलते तो वो कट ही गया, कमर्शियल शुरू हो गया, मेरे को टाइम कर लेना चाहिए अगली बारी. एनीवेज मैं जो बोल रही थी कि आपने वो वाला देखा है प्रियंका चोपड़ा का इंटरव्यू, शी इज़ क्रिटिसाइज्ड हेविली बिकॉज पीपल आर लाइक कि भाई तुम्हें अमेरिका गए हुए इतना टाइम ही नहीं हुआ, तुम्हारा एक्सेंट कैसे बदल गया ऐसा ऐसा करके. तो वो कहती है भाई मेरा एक्सेंट ऐसे होता है ना कि मैं जब मैं प्लेन में चढ़ती हूँ तो मेरा एक्सेंट या इंडियन एक्सेंट हो जाता है, जब मैं वापस आ रही होती हूँ प्लेन में चढ़ते ही मेरी हवा में एक्सेंट चेंज हो जाता है. तो मेरे साथ भी वैसा ही कुछ है. ऐसा है कि मोस्ट ऑफ माय इंटरेक्शन व्हेन आई टॉक टू पीपल ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द डेज, दे आर मोस्टली अमेरिकन्स या फिर कोरियंस या फिर लाइक ऑल डिफरेंट पीपल फ्रॉम ऑल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. ओके, तो वहाँ पे जब मैं इंग्लिश में बात करती हूँ सो माई एक्सेंट डज बिकम अ लिटिल बिट अमेरिकनाइज, बट हाउएवर जब मैं हिंदी में आती हूँ ना, क्योंकि हिंदी रोज़ बोलने को मिलता नहीं है, क्योंकि मतलब एवरीडे इंटरेक्शन नहीं होता है. माय इंडस्ट्री इज सच दैट आई डोंट गेट टू मीट अ लॉट ऑफ इंडियन पीपल इन माय नेटवर्क ऑन एन एवरीडे बेसिस अनलेस आई एक्चुअली कम टू फनेशिया रेडियो एंड टॉक हियर. तो इसीलिए मैंने ये जॉब भी इसीलिए ली थी. मैंने कहा नहीं यार, कम से कम हिंदी में बोलूंगी तो हिंदी में लिख भी पाऊंगी, है ना, हिंदी में लिख पाऊंगी तो हिंदी में गाने भी बना पाऊंगी, है ना. तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो भाई ऐसे ही करते हैं. तो जब मैं फनेशिया आती हूँ, जब मैं बात करने आती हूँ यहाँ पे हिंदी में, जब मैं बोलती हूँ तो बिल्कुल दिल्ली वाली एक्सेंट आ जाती है, एकदम कूट कूट के भर के. तो जिन्होंने मेरे से ये सवाल पूछा, मैंने कहा भाई दिस इज़ मी ओनली. बट अनफॉर्चुनेटली वो कई बार अनकॉन्शियसली वो स्विचरूनी हो जाता है, बिकॉज यू नो योर सोशल सेटिंग चेंजेस. एंड समटाइम्स व्हेन यू आर एन आर्टिस्ट यू आर अ फास्ट थिंकर, व्हेन यू आर एन एंटरटेनर यू हैव टू बी अ फास्ट थिंकर एंड यू हैव टू बी एन आर्टिस्ट एंड यू हैव टू अडैप्ट. You have to adapt to whatever the situation is. You're like, अच्छा ये चल रहा है, चलो यहाँ पे इस कुछ बदलते हैं, यही चल रहा है, यहाँ पे चेंज करते हैं. Anyways, that being said, guys, जाने से पहले we were talking about relationships and traditional institutions of marriages and वगैरह वगैरह. हम उसके बारे में थोड़ी और बात करेंगे, लेकिन पहले एक गाना सुनते हैं, फिर उसके बाद आते हैं. लास्ट के 25 मिनट बाकी हैं, तो मैं कोशिश करूँगी, मतलब आई विल ट्राई एंड डिवाइड द टाइम इतने अच्छे से कि आपको सब मिल जाए, ठीक है, बातें भी हों और गाने भी सुने. तो तब तक के लिए आप ये सुनिए.

0: मेरे पास अभी थोड़े टाइम पहले एक कॉल आई, ठीक है? वो कॉल आके उन्होंने मुझे बोला कि उनके किसी जान पहचान में कोई तो गए कहीं थाईलैंड शाईलैंड, वैसी सी कोई कंट्री जो भी है साउथ ईस्ट एशिया में, वहाँ जाके उन्होंने पकड़ ली एक और किसी लड़की को। हाय, उनकी शादी तो वहीं टूट गई। तो इसी से मुझे ये गाना याद आया कि मैंने उनके लिए, तूने बोला आप प्लीज मेरे लिए ये वाला गाना बजा दो, बिकॉज इट्स सो रेमिनिसेंट ऑफ दैट पर्सन जो गए। तो ये आपके लिए है माया जी, थैंक यू फॉर बीइंग सच एन ऑसम रेगुलर लिसनर।
1: हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ

भाई पुराने गानों में अपना ही मतलब मजा था, यू नो. इनके पिया वीडियो में अगर आपने देखा है तो इनके पिया रंगून है, रंगून में उनको रंगूनी लड़की मिल गई है, फिर भी वो फोन कर रहे हैं, फिर भी ये जो उनकी घर पे जो उनकी बीवी बैठी है वो अपने पिया के याद में बोल रही है, मेरे पिया तुम्हारी याद सताती है, हाय हाय हाय तुम कोई बात नहीं, वहां पे लड़कीबाजी चाहे तुम जितनी भी कर लो, यहाँ पे तो मैं तुम्हारी वेट करूंगी. भाई आज के जमाने में लड़कियां इतना नहीं वेट करती, अगर आप लड़कीबाजी कर रहे हैं तो लड़कियां भी कहती है भाई जाओ तुम करो, मैं आई विल लिव माई ओन लाइफ, आई विल गो ऑन वेकेशन विद माई गर्ल फ्रेंड्स, दैट्स वॉट वी डू. नो वी डोंट डू लड़काबाजी, वी डू वेकेशन विद आर गर्ल फ्रेंड्स, दैट्स वॉट वी डू. ठीक है, मेरे को तो बड़ा मन है यार अपनी गर्ल फ्रेंड्स के साथ जाके कहीं बीच वेकेशन पे बैठ के एक मोहीटो पीने का, ओके एंड देन जस्ट सोक अप द सन, थोड़ा सनस्क्रीन लगा के जाने का क्योंकि टैन नहीं होते हैं. बट फ्रेंडशिप से याद आया, कल पता है क्या हुआ मेरे साथ, द मोस्ट अमेजिंग थिंग हैपेंड. ओके और वो सबसे अमेजिंग चीज़ पता है क्या थी, ये थी कि लाइक आई सेड आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन सोशल मीडिया. हाँ बहुत टाइम तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत करना पड़ता है क्योंकि हमारा काम ही है सोशल मीडिया से रिलेटेड, हम अपने आप को प्रमोट नहीं करेंगे तो थोड़ी ना कोई आ रहा है मेरा काम खुद प्रमोट करने, तो मुझे खुद ही करना पड़ता है ना, बार बार बोलना पड़ता है गाइज आई हैव अ बैंड कॉल्ड डैलस बॉलीवुड प्रोजेक्ट ब्ला ब्ला ब्ला और मेरा नया गाना है वगैरह वगैरह, तो ये हमें ही बोलना पड़ता है, वैसे कोई नहीं आएगा बोलने के लिए. ठीक है, तो ऐसे ही मैं स्क्रॉल करते करते एक रील आया, एक किसी क्रिए शी वॉजंट इवन अ क्रिएटर, शी वॉज जस्ट अ ऑर्डिनरी पर्सन लाइक यू मी एवरी वन, एंड उन्होंने एक रील डाली कि भैया ये हम पूरे अमेरिका में इतने साल हो गए पर ये दिल्ली के लोग है कहाँ, दिल्ली के लोग कहाँ हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है समटाइम्स यू नीड टू हैंग विथ योर पीपल फ्रॉम योर एरिया टू एक्चुअली फील कम्फर्टेबल, वैसे तो वी कैन हैंग विद एनी वन ऐसा कुछ नहीं है, बट लेकिन कई बार एक वो बात करने का स्टाइल होता है, यू नो उस तरह से थोड़ी कॉमन शेयर्ड मेमोरीज होती है कि पता है हम लोगों ने वहाँ पे आई डोंट नो लाजपत नगर में जाके पराठे खाए, मूरथल जाके हमने पराठे खाए, ऐसे वैसे करके यू नो यू समटाइम्स यू नीड टू शेयर दीज मेमोरीज विद समवन. तो मैंने उसके कमेंट सेक्शन में डाला कि भाई मुझे डैलस में भी यही लगता है, डैलस में मुझे ना दिल्ली के लोग कम मिलते हैं, मुझे मोस्टली यहाँ पे हैदराबाद के लोग मिलते हैं, हैदराबाद के बहुत लोग हैं, मोस्टली साउथ इंडिया से लोग काफ़ी हैं, लेकिन दिल्ली के लोग जो है ना वो बहुत कम दिखते हैं मुझे, आई मीन आई हार्डली मीट एनी वन. तो फिर मैंने जैसे ही वो कॉमेंट डाला नीचे, तो उस कमेंट पे ना इतने सारे लोगों ने रिप्लाई किया, लाइक किया, पहले तो बहुत सारे लोगों ने लाइक किया, मैंने कहा अच्छा एक कमेंट से जो कि मैंने सिर्फ बोला यार डैलस में भी यही हाल है हमें तो दिल्ली के लोग नहीं मिल रहे, तो एक मैंने वो किया तो इतनी सारी लाइक्स आ गई, फिर उसके बाद लाइक्स आई तो कितने लोगों ने लाइक पोस्ट भी किया, कहते मैं हूँ डैलस में आई एम फ्रॉम दिल्ली, मैं भी हूँ डैलस में आई एम फ्रॉम दिल्ली मैं भी हूँ, तो मैंने बोला यार एक दिल्ली गर्ल्स का एक गैंग बनाते हैं, तो हम बड़े टाइम्स हम लोगों ने ऐसे ही एक इंस्टाग्राम पे एक ग्रुप चैट बनाई, फिर ग्रुप चैट पे हमने सोशलाइज किया, वी गाइज डोंट नो ईच अदर, हम लोगों ने कभी भी पहले जिंदगी में इंटरेक्ट नहीं किया, पर हमने इंस्टाग्राम के थ्रू, सोशल मीडिया कैन बी अ वेरी पावरफुल फोर्स ऑल्सो इफ यू ट्राई एंड पुट इट इन द राइट वे, इट कैन, सोशल मीडिया इज अ वेरी स्ट्रांग फोर्स गाइज, दोनों तरफ जा सकता है, आप चूज करिए आपको किस डायरेक्शन में लेके जाना है उसको. तो मैंने वो ग्रुप बनाया, फिर हमने इंटरेक्ट किया एंड वी वर फोर गर्ल्स, एक्चुअली वी आर टेक्निकली सिक्स गर्ल्स बट फोर ऑफ अस डिसाइडेड कि चलो मिलते हैं, बहुत टाइम से चलो बात करें, आज मिलेंगे, कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे, तरसों मिलेंगे, ऐसे करते करते फाइनली जाके हम कल मिले संडे शाम को, हमने कहा चलो यार यहाँ पे 121 के पास एक चाय की दुकान है वहाँ पे बैठ के लेट्स ग्रैब सम चाय एंड समोसा. तो शुरू में सबको लगा कि यार इट्स ऑलमोस्ट लाइक गोइंग ऑन अ डेट कि वी डोंट नो दीज पीपल, वी हैव जस्ट मेट दीज गर्ल्स, वी हैव जस्ट एक्सचेंज्ड अ फ्यू टेक्स्ट ऑन इंस्टाग्राम, पता नहीं कैसे इंटरेक्शन होगा, यू नो ठीक है दिल्ली से हैं लेकिन आर वी गोना गेट कंफर्टेबल विथ ईच अदर और नॉट, हम लोग की सारी एज ग्रुप्स अलग हैं, समवन इज इन देयर 40, समवन इज इन देयर 30, समवन इज इन देयर 20s, यू नो वी डिडंट इवन नो लाइक हाउ कंफर्टेबल इज गोना बी, इज गोना गेट ऑकवर्ड, कोई बुरा मान जाएगा, नहीं होता, ये सारी चीज़ें ना बहुत सोचने में आती हैं. तो फिर हमने कहा चलो कोई बात नहीं, फिर फाइनली हम मिले एंड गाइज आई थिंक इट वॉज लाइक द बेस्ट हैंग आई हैव हैड इन अ लॉन्ग टाइम. ओके गर्ल्स नीड गर्ल फ्रेंड्स यू गाइज,
अगर आप लड़की हैं तो आपको एक लड़कियों का एक ग्रुप होना चाहिए. मेरे ना लड़के दोस्त बहुत हैं एंड दे आर ऑल लाइक ग्रेट फ्रेंड्स ऑफ माइन एंड एवरीथिंग. मतलब बहुत सही है, लेकिन एक जो एक कंफर्ट लेवल आता है ना गर्ल फ्रेंडशिप्स के साथ और क्लोज गर्ल फ्रेंडशिप्स के साथ, वो एक मीटिंग में हमने ऐसे बात बात करी और मतलब ऐसे लगा कि जैसे यू नो देर इज़ नो एज गैप. द सम पीपल देर वॉज अ 10 ईयर एज गैप, सम पीपल देर वॉज अ 20 ईयर एज गैप, 15 ईयर एज गैप, बट वी डेंट फील इट लाइक दैट. यू नो एक टाइम के बाद आप एज गैप वगैरह आप सोचते नहीं हो, आप सोचते हो आपकी शेयर्ड एक्सपीरियंस क्या है, आपकी कॉमन एलिमेंट्स क्या है, एंड दैट्स वॉट मैटर्स. सो आई थॉट दैट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग कि ऐसे ही रैंडमली किसी के साथ हमने इंटरेक्ट किया ऑनलाइन और इतना बढ़िया सा हमने फ्रेंडशिप ग्रुप बनाया. आई हैड द बेस्ट टाइम. सो आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू ऑल. समटाइम्स यू जस्ट हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप्स एंड देन थिंग्स विल फॉल इन टू प्लेस ऑन देयर ओन. इसी से एक गाना और सुनते हैं. वी आर टूवर्ड्स द एंड ऑफ माई शो, बट लास्ट 8 मिनट्स में मैं आपके लिए दो गाने बजाऊंगी. थैंक यू, टाटा, बाय बाय. मैं जाने से पहले आपको यही एक दोबारा से वही सेइंग मैं बार बार हर शो के एंड में मैं वही कहती हूँ, मैं दोबारा से वो कहूँगी, विच इज दिस दैट गाइज ओके लाइफ इज टू शॉर्ट. Life is too short, so you should live it the best, okay? But the full saying is this: life is too short to be sad, so shine like a hira, okay? Shake your hips like Shakira, and then dance like garam tel mein jeera. Wah wah wah wah wah wah. Shukriya shukriya. Wah wah wah. Chalo, aap ye gana suno. Baaki hum baatein baad mein karenge. Okay, bye.

0: अभी मजा आएगा ना भिड़ो।
1: अपुन बोले तो फुल बॉलीवुड धमाका फन एशिया पे।
2: जब तू आ गई है

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: यू आर माय स्पेशल फ्रेंड।
1: कौन है ये लोग, कहां से आते हैं?
2: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

What is up? क्या बोल रहे सब लोग? एमवे बंटा है मालूम है ना, मचाएंगे जो नहीं नाचते उसको भी नचाएंगे. Let's do it. Hey.

0: still is the leader Frisco needs to move forward together. As a former school board president, Mark has a proven record of integrity, fiscal responsibility, and bringing people together. He values the vibrant contributions of our Asian and Indian communities, recognizing that our strength lies in our diversity and collaboration. Mark rejects divisive rhetoric, focusing instead on smart growth, public safety, and ensuring every voice is heard. For steady, experienced leadership that unites our city, vote for Mark Hill for Mayor. Let's build a stronger Frisco together.
1: Paid for by Mark Hill for Mayor.
2: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
3: ट्यून सुनते ही ब्रांड क्लिक कर गया ना जस्ट लाइक दैट व्हेन इट कम्स टू टैक्सेस ओनली वन नेम पॉप्स अप एजी फिनटैक्स दिस टैक्स सीजन फॉर अ स्ट्रेस फ्री टैक्स फाइलिंग फाइल स्मार्ट फाइल इजी विद ग्रंथी टैक्स प्रोस एंड एसोसिएट ऑफ एजी फिनटैक्स साथ ही साथ आपका रिफंड मैक्सिमाइज करना और आपका फाइनेंशियल फ्यूचर प्लान करना दैट्स आवर कमिटमेंट तो इस बार डिले क्यों कॉल 972-618-8555 और विजिट agfintax.com ग्रंथी टैक्स प्रोस पावर्ड बाय एजी फिनटैक्स प्लान टुडे प्रॉफिट टुमारो
4: Hi, this is Deepika Padukone and you're listening to Fun Asia Radio.

Mas agali, aw. Ah, jawab dah.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Frisco is growing fast, and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure, and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services, and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco. Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू. लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई. डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com. फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Fun Asia.
3: कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये?
4: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: पिक्चर
1: अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
2: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: अब तेरी बारी।
1: मतलब
0: मेरा फैन बनना?
1: तेरा फैन बनने के लिए मुझे एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैड, डैलस में रेडियो का डैड, फनीशा 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

नेकी कर दरिया में डाल, ये मशहूर जमाना कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन आजकल का वर्जन कुछ अलग ही हो गया है। नेकी कर और ऑनलाइन पोस्ट कर दे, मगर आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। कोई भी अच्छाई, कोई भी नेकी जो आप करते हैं, उसे अपने तक ही रखिए, क्योंकि काइंडनेस इज लाइक वाईफाई, सबको फील हो जाती है, पासवर्ड की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। इसी तरह फन एशिया रेडियो आपके दिलों में धड़कता है बगैर आपको महसूस हुए।

हेलो एवरीवन, यू ट्यून्ड इनटू 104.9 एफएम फनीशा रेडियो। क्या आपको पता है कि असल में चॉकलेट वंस यूज्ड टू बी अ करेंसी? जी हाँ, माया सिविलाइजेशन में चॉकलेट वाज मनी। इमेजिन आज के जमाने में अगर आपकी सैलरी चॉकलेट्स में मिलती हो तो क्या होगा। डालस में सब सारे के सारे जिम फुल हो जाएंगे। जी हाँ, लेकिन जिंदगी की मिठास तो जिंदगी की मिठास है। मजा लीजिए जिंदगी की मिठास का फनीशा रेडियो के साथ।

0: नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव वाइब्स से और नेगेटिव चीजों से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि नेगेटिविटी ब्रीड्स नेगेटिविटी। वही नेगेटिविटी आप तक ट्रांसफर हो और आपके सुकून को बर्बाद कर दे, इससे बेहतर है कि पॉजिटिव थॉट्स की तरफ जाइए। और अगर कोई भी पॉजिटिव थॉट आपको नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, फाइनेंशियल रेडियो पे ट्यून इन कीजिए और सुनते रहिए हमारे साथ इन जबरदस्त गानों को। कीप एंजॉयिंग।
1: Mark Hill is the leader Frisco needs to move forward together. As a former school board president, Mark has a proven record of integrity, fiscal responsibility and bringing people together. He values the vibrant contributions of our Asian and Indian communities, recognizing that our strength lies in our diversity and collaboration. Mark rejects divisive rhetoric, focusing instead on smart growth, public safety and ensuring every voice is heard. For steady, experienced leadership that unites our city, vote for Mark Hill for Mayor. Let's build a stronger Frisco together.
2: Paid for by Mark Hill for Mayor.
3: Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai. Profits hai, but no cash liquidity. हर साल टैक्स बिल्स के साथ टैक्स सीजन का एंग्जाइटी। डायग्नोसिस क्लियर है, आपके बिजनेस को चाहिए स्मार्ट टैक्स प्लानिंग, क्लीन बुककीपिंग और एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रेटजी। एजी फिनटैक्स, फाउंडेड बाय फोर्ब्स काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांथी। फ्रॉम टैक्सेस टू सीएफओ एडवाइजरी, बिजनेस ओनर्स के हर चैलेंज का एक ही सोल्यूशन। कॉल 425-395-4318 और विजिट agfintax.com। प्लान टुडे, ऑप्टिमाइज योर कैश फ्लोज विद एजी फिनटैक्स एडवाइजरी सर्विसेज।

दोस्तों, नॉलेज इज द ओनली थिंग जो बांटने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है। नॉलेज इज दैट लाइट जो आपकी जिंदगी को रोशन करती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आज के जमाने में नॉलेज सिर्फ किताबों में नहीं, हर कॉन्वर्सेशन, हर सफर, हर गाने में मौजूद होती है। तो क्यूरोसिटी रखिए, सवाल कीजिए, क्योंकि जानने का जुनून ही बनाता है इंसान को बड़ा। नॉलेज ही पावर है, और पावर तो आपको फनी रेडियो भी देता है विद दिस नेक्स्ट सॉन्ग, फील द पावर।

क्या आप जानते हैं कि लाफ्टर इज लाइक अ 15 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज। जैसे वर्कआउट किया हो आपने, मतलब अगर आप हंसी हंसी में हमारा शो सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी कैलोरीज भी बर्न हो रही हैं। तो रेडियो सुनना अब हेल्दी भी है, तो सुनते रहिए फनी शो रेडियो।

0: Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल वन, मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल टू, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट। लेवल थ्री, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस।
3: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी। तंदूरी फ्लेम, नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।

दोस्तों, मुस्कुराहट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। स्माइल ज्यादा कीजिए, फ्री है और सबको अच्छी भी लगती है। वो कहते हैं ना, चेहरे पे मुस्कान हो तो मुश्किलें भी शर्मा जाती हैं। तो आप अपनी स्माइल से, अपनी मुस्कुराहट से आधी से ज्यादा मुश्किलों को तो वैसे ही मात दे सकते हैं, और बाकी आधी को मात देने के लिए फन एशिया रेडियो के साथ बने रहिए।

तन्हाई में, अकेले में, महफिल में और मेले में, आपके साथ है फनीशिया।

दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को सिंपल बनाना चाहते हैं तो एक गोल्डन ट्रिक याद रखें। Declutter your desk, declutter your mind. सफाई सिर्फ घर की नहीं बल्कि thoughts और दिमाग की भी जरूरी है। So clean space, clean thoughts and clean vibes only. यही है Fun Asia Radio का अंदाज। सुनते रहिए हमें और इस next गाने को।

0: जिंदगी एक लंबी फिल्म है और हर दिन एक नया सीन। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो जब भी मुश्किल हो, समझ लो कि डायरेक्टर ऊपर वाला है और स्क्रिप्ट उसकी सुपर हिट ही होती है। बस पॉपकॉर्न लेकर चिल करो, बिकॉज लाइफ इज वर्थ वॉचिंग, जस्ट लाइक वन एजिया रेडियो इज वर्थ लिसनिंग।
1: सुहानी रात ढल चुकी

क्या आपको पता है कि आपकी हार्ट बीट सिंक हो सकती है म्यूजिक के साथ? अगर गाना फास्ट हो तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और अगर गाना स्लो हो तो काम हो जाती है, हल्की हो जाती है। तो अगला गाना सुनते ही अपना दिल जरूर चेक कीजिए। फनी इज योर रेडियो, लिटरली प्लेइंग विद योर हार्ट बीट्स।

हेलो एवरीवन, एक सिंपल ट्रिक फॉर इंस्टेंट हैप्पीनेस। अपने आप को आईने में देखिए और 30 सेकंड्स के लिए मुस्कुराइए। अजीब तो लगेगा, फनी भी लगेगा, लेकिन आपके दिमाग को ये मैसेज जाएगा कि यू आर जेन्युइनली हैप्पी। वो कहते हैं ना, मुस्कुराहट सबसे खूबसूरत जेवर है, सो इस जेवर को पहने रखिए, स्माइल करिए और डालस की ट्रैफिक को थोड़ा हल्के में लीजिए इस गाने के साथ।

playing the best tunes in all of Dallas. Fun Asia Radio, 104.9 FM.

जिंदगी के कई रंग। फनीशा रेडियो के संग।

0: Frisco is growing fast, and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure, and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services, and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco. Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500 The Jago Times Commission Jago bhi jagao bhi Exclusive Media Partner Panacea
1: Ek baar jo maine commitment kar di
2: to phir sirf Panacea hi sununga

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: शर्मा।
1: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं?
2: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो।
1: आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड आज।

104.9 FM Fun Asia Radio, Fun Asia Radio, non-stop infotainment.

0: पिक्चर
1: अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है
2: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फनी।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट डैलस में रेडियो का डैड फनीशा 104.9 FM
1: Yeah, it's coming up.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Frisco is growing fast, and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure, and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services, and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
4: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1, मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस।
5: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी। तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
6: Yeah, this is Shakti Kapoor and you guys are listening to me on the Fun Asia Radio.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।
2: और इस तरह बल्ली को भी अपनी रानी मिल गई, वीरे की गीत से वेडिंग हो गई और शादी में घोड़ी के सबसे आगे नाचे मामा जी और भांजा जी।

0: Abi oy.
1: सॉरी
0: हम ठीक हैं।

0: तमाशे थिएटर भर देते हैं, इससे फिल्मों का भी फायदा हो जाता है।
1: तुम इस तमाशे में शामिल?
0: तुम्हारी जिंदगी के तमाशे में शामिल काफी है।

0: कुछ बदल गया है।
1: नहीं तो
0: आपकी आवाज में नहीं, आपके मन में।

0: क्यों नहीं समझ रहे हो? ये जगह सही नहीं है अर्जुन।
1: It's Tuesday, the 2nd of June. We're already at 80 degrees. We'll be touching the mid-90s, sunny and hot today. But yes, we have a 50% coverage chance of storms later in the day. Some of you won't even see a drop and others may even see a tiny bit of hail. We'll keep you updated right here on the Funasia Network.
2: Frisco is growing fast and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
3: सुनीता, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
4: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है।
3: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है।
4: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है।
5: इंट्रोड्यूसिंग लुमिटी लर्निंग सेंटर, फ्रिस्को प्रॉस्पर और मैकिनी ISD अलाइंड करिकुलम दैट डजंट जस्ट मैच, इट एक्सीड्स। पर्सनलाइज्ड मैथ और इंग्लिश प्लान्स, सर्टिफाइड टीचर्स, कंटीन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट और हर बच्चे के लिए कम्पेटिटिव एज। ट्राई लुमिटी, यू सी द डिफरेंस। किड्स एजेस 5 टू 13, कॉइट एंड Panther Creek in Frisco. Call 972-666-1181. Mention Fun Asia. Get $100 off your first month.
6: Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai. Profits hai, but no cash liquidity. Har saal tax bills ke saath tax season ka anxiety. Diagnosis clear hai. Aapke business ko chahiye smart tax planning, clean bookkeeping aur ek strong financial strategy. AG Fintax, founded by Forbes Council member Anil Granthi. From taxes to CFO advisory, business owners ke har challenge ka ek hi solution. Call 425-395-4318 or visit agfintax.com. Plan today. Optimize your cash flows with AG Fintax's advisory services.
7: Apni roots bhi aur Texas ka swag bhi, dono ek saath ek hi jagah. HEB mein Royal Sona Masuri rice ho, Nanak paneer ho, ya Parle Ji biscuits. Wahi desi taste jo dil ko ghar jaisa feel de. और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो सिर्फ यही मिलते हैं। एक ही ट्रिप, एक ही स्टोर और सारा सामान डन। तो आज ही जाइए अपने नियरेस्ट HEB पर और ले जाइए अपने ट्रेडिशनल और टेक्सन फेवरेट्स एक साथ। HEB, हियर एवरीथिंग्स बेटर।
8: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
9: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
10: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
11: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
10: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
12: लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर नॉट रेडी फॉर दिस। फ्रिस्को में इतना प्यार मिलने के बाद पंचतारा इज नाउ ओपन एट अ न्यू लोकेशन इन एलन। वही स्वाद, वही जुनून और वही जबरदस्त मैनेजमेंट और कस्टमर सर्विस। फेमस गर्मा गर्म पराठे, रोज ताजी बनी मिठाइयाँ और फुल सर्विस बार वेटिंग जस्ट फॉर यू। एंजॉय फाइन डाइनिंग एक्सपीरियंस और पंजाबी बफे एवरी डे। कैटरिंग सर्विस इज ऑल्सो अवेलेबल टू मेक योर एवरी सेलिब्रेशन मेमोरेबल। पंचतारा नाउ इन फ्रिस्को एंड एलन। मेंशन अपना पंजाब एंड गेट एक्सक्लूसिव डिस्काउंट ऑन your first visit.
13: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
14: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
15: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
16: Hi guys, this is Tiger Shroff. Enjoy Fun Asia Radio.

0: That clock on your dashboard should now say 8 a.m.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
2: Official tax and finance partner, AG Fintax.
1: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
8: कौन सा?
7: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
8: अरे सारे तो सेम है।
7: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो, ये वाला।
8: ओ हाँ, ये तो अलग है।
9: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो हैं। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
10: Desi cravings simple nahi hoti, unke levels hote hain. Level 1, mixed veg pakora, light, crispy, perfect shuruaat. Level 2, masala omelette aur dahi bhalla, thora nostalgia, thora comfort. Level 3, amritsari kulcha platter ya pindi chana, full Punjabi mode on, fully loaded. Aur jab bhook ho next level, slow cooked keema mutter, rich, bold, no compromises.
9: Isiliye Tandoori Flame lekar aaya hai, new on the flame and new weekend menu. Visit Tandoori Flame in Garland at Shiloh and PGBT. Tandoori Flame, now serving new favorites. Craving ka level badhao, flavor hum sambhal lenge.
11: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
12: हाँ।
11: घर रिलोकेट करनी है?
12: हाँ।
11: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
12: हाँ भाई हाँ।
11: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
13: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज। SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन। विजिट sflworldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
14: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का।
15: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
9: विजिट psychicramnath.com, कॉल 4693474401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
16: Attention store owners, Ravi's summer kickoff is back June 3rd and June 4th, 9 a.m. to 5 p.m. And this year, it's different. We are turning the warehouse into a full tropical experience with crazy deals you won't find anywhere. New product launches and free gifts all day. Meet vendors, discover your next best sellers and stock up like never before. Same Ravi's, just bigger, bolder and way more fun. Ravi's Import Warehouse, 11029 Harry Hines Boulevard, Building A, Dallas, Texas 75229. Entry requires a valid tax number and tobacco license.
17: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी, सच बता, लॉटरी लगी है क्या?
18: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी। जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे K2 ड्राइव पे लिस्ट कर दी।
17: K2 ड्राइव मतलब?
18: मतलब गाड़ी खुद पैसे कमा रही है, लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लवफील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस सब K2 ड्राइव हैंडल करता है।
17: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
18: 100%
19: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट K2 ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी। विजिट K2Drive.com और कॉल 214-814-0402। केटो ड्राइव, डायलिसिस स्मार्टेस्ट फ्लीट पार्टनर।
2: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार,
12: खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
9: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
20: Hi, this is Akshay Kumar and you're listening to Fun Asia Radio.
0: Ladies and gentlemen, welcome to this hour of the program. This is the 8 o'clock hour and we are already in the 80s, touching the mid-90s. Later today, it's going to be a sunny and hot day. But we do have a chance of some storms, a kind of 50% coverage. So 50% of us are going to not even see a drop of rain, but 50% may even see some tiny hail. But we'll keep you updated right here on the airwaves of the Fun Asia Network. Welcome to the show if you are just joining us.

0: Frisco is growing fast, and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure, and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services, and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
3: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1 मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस।
2: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी। तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
4: अरे भाई वही तो नहीं होता हर बार हर ट्रिप के इतने झंझट।
5: बिकॉज यू डोंट ट्रैवल विद लॉसिन। चाहे शादी के लिए इंडिया जाना हो, दुबई की लग्जरी शॉपिंग या यूरोप की ड्रीमी वेकेशन फोटोज, एक परफेक्ट ट्रिप के पीछे होता है एक परफेक्ट ट्रैवल पार्टनर। लॉसिन ट्रैवल। फॉर नियरली 30 years लॉसिन ट्रैवल हैज बीन हेल्पिंग फैमिलीज प्लान स्ट्रेस फ्री इंटरनेशनल ट्रिप्स विद द बेस्ट एयरफेयर्स, वेकेशन पैकेजेस, क्रूजेस एंड कस्टमाइज्ड ट्रैवल सॉल्यूशंस। लॉसिन ट्रैवल मेक्स एवरी जर्नी स्मूथ, अफोर्डेबल एंड टेंशन फ्री। कॉल नाउ 214-631-2458 or visit lawsontravel.com.
6: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
7: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
6: Kya matlab?
7: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
6: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
7: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
6: Ab to karna hi padega, madam.
8: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
9: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
10: With over 25 years of lived experience, certified and accredited relationship coach, Aarti Vedula helps individuals, couples, parents and hundreds of happy clients break unconscious cycles using NLP, EFT, hypnosis and mindset reprogramming. Book your free clarity call today at 269-281-1099 or visit thrivewitharti.com. Mention Phanisha and get 50% off on your package. Thrive with Aarti. Helping you thrive from within.
11: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas, because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA, your talent, your spotlight.

0: It is 9 o'clock.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
2: Official tax and finance partner, AG Fintax.
1: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
3: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
4: कौन सा?
3: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
4: अरे सारे तो सेम है।
3: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो, ये वाला।
4: ओह हाँ, ये तो अलग है।
5: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
6: I've been researching retirement planning.
7: Oh, really? Where?
6: Google, YouTube, a guy on TikTok.
7: Or you could just talk to WealthTactic.
6: What's the difference?
7: They create a real retirement strategy. Not just investments, but a plan for when your income stops.
5: WealthTactic. Because retirement needs a strategy, not a search bar. For free consultation, call 469-693-2077 or visit them at thewealthtactic.com.
8: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
9: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
10: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
11: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
10: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
12: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
13: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
14: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
13: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
15: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
16: इन प्लेनो।
15: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपटीटर कोर्ट मैच भी। कॉल 469-298-3870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
12: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
17: प्लीज डोंट सी योर यूजुअल प्लेस अगेन, आई एम टायर्ड ऑफ द सेम फूड।
18: एक्सक्यूज मी, इट्स कॉल्ड बीइंग लॉयल,
17: इट्स कॉल्ड बीइंग प्रेडिक्टेबल।
18: ओके देन, let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
17: And what's so special at Neon Cactus?
18: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
17: Not bad.
18: Happy hours Monday to Friday, and amazing food and drink deals every day.
17: Okay, this I didn't expect from you.
18: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
5: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
0: Thank you very much for joining us in this final hour of our program. We'll get you caught up, but if you are just joining us, do receive my very warm welcome to the show.

0: I am taking your calls, 972-235-5555. We will have the world news coming up for you a little later. I do have a giveaway for you also coming from the Panjthara restaurant. And so stay tuned for all that. Plenty of information all headed your way. And of course, all the music that you want to listen to right here on the airwaves of the Fun Asia Network. This is the morning show, and thank you very much for making me a part of your morning and the Fun Asia Network a part of your daily lives. I will also like to leave my direct number, so when I'm not in the studios, for those of you who would like to reach me as far as advertising or anything programming to do with the Fun Asia Network, I will be happy to help you. And my direct number is 214-675-1754. 214-675-1754. And right now we have some messages from our sponsors.
1: Tune sunte hi brand click kar gaya na. Just like that. When it comes to taxes, only one name pops up. AG FinTax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Granthi Tax Pros, an associate of AG FinTax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna. That's our commitment. So is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com. Granthi Tax Pros, powered by AG FinTax. Plan today, profit tomorrow.
2: Yaar, boss ne fir se daat diya. Traffic alag. और ऊपर से ये स्ट्रेस।
3: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
2: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
3: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
2: ये क्या होता?
3: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
4: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
5: सुनीता, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
6: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है।
5: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है।
6: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है।
7: Introducing Lumity Learning Center, Frisco Prosper or McKinney ISD aligned curriculum that doesn't just match, it exceeds. Personalized math or English plans, certified teachers, continuous feedback, on-demand support aur har bacche ke liye competitive edge. Try Lumity, you'll see the difference. Kids ages 5 to 13, Coit and Panther Creek in Frisco. Call 972-666-1181. Mention Fun Asia. Get $100 off your first month.
5: Dude, life mein kuch aisa karna hai jisme main front page pe rahun.
6: Front page ka to pata nahi, but tera पेज थ्री में होना मेरी गारंटी है।
5: कैसे?
6: पेज थ्री ईटरी?
5: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
6: डूड, इट्स पेज थ्री। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट।
5: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
8: पेज थ्री ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट।
9: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas, because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA, your talent, your spotlight.
10: Hi, this is Madhavan, and you're listening to me on my official radio station, Fun Asia Radio.

0: And that, ladies and gentlemen, is my show for today. Remember, 50% coverage on our thunderstorm. So half of you are going to see some rain, the other half not a drop. But I promise to be back tomorrow morning. It is right now 10 a.m.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Official tax and finance partner, AG Fintax. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Did you know LASIK is just one of six ways to get rid of glasses and contacts? I'm Dr. Shahzad Batliwala. Yes, your eye surgeon is Desi. I'm a fellowship-trained surgeon and founder of Visionary Eye in Plano. My philosophy is simple. Educate first. Once you understand your options, the decision becomes easy.
3: Call 214-972-2020 or visit LASIK-Plano.com. Mention FunAsia 2020 for a free consultation.
2: Visionary Eye. See clearly. Live boldly.
4: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं. लेवल 1, मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत. लेवल 2, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट. लेवल 3, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड. और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस.
5: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीपीटी. तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स. क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे.
4: Taxes are not complicated or stressful with CPA Shalini Kodial on your side. You focus on growing your business while she handles the planning to mitigate your tax liability. She's honest, transparent and accountable, ensuring your business stays fully IRS compliant. Unlike many other CPAs who meet just once a year, Shalini meets with you every quarter. Call 281-760-5573 today or visit the website www.skodialcpa.com.
6: कहते हैं अयोध्या में एक रसोई थी, सीता की रसोई, जहां माँ सीता अन्नपूर्णा के रूप में सिर्फ भोजन नहीं, प्रेम और सेवा परोसती थी. और अब वही पवित्र स्वाद, वही भाव श्री अयोध्या भवन में, ऑपोजिट टू द कार्य सिद्धि हनुमान टेंपल इन फ्रिस्को.
7: फर्स्ट एवर ऑथेंटिक सात्विक फ्लेवर्स विद नो अनियन एंड गार्लिक,
6: वेयर एवरी डिवाइन फूड इज एन ऑफरिंग. ओपन डेली फ्रॉम 7 AM, लोकेटेड एट इंडिपेंडेंस एंड एल्डोराडो. श्री अयोध्या भवन, वेयर टेस्ट मीट्स डिविनिटी.
8: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame, and clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duct Time.
9: Chicken banana. Chicken banana?
10: Bro, banana nahi, banana. मतलब make the chicken right.
8: That's exactly what happens at Sal's Nashville Hot Chicken. They don't just make it, they make it unforgettable. Fresh ingredients, bold flavors, jumbo chicken tenders, Nashville sandwiches that actually hit. Located in Plano and Richardson, Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry.
11: Hello guys, this is me Kinjal Dave and you are listening and watching Fun Asia Radio.
12: FM, Fun Asia Radio, Fun Asia Radio, non-stop infotainment.

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: डालस की धड़कन 104.9 FM फनीजिया रेडियो।
2: हेलो नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज गपशप गली विथ मी टू एंड आई कम राइट आफ्टर ए शो विच इज हैवीली लोडेड विथ इंफॉर्मेशन एंड म्यूजिक एंड ग्रेट एंटरटेनमेंट। इट्स शबनम जीज मॉर्निंग ड्राइव टाइम शो दैट यू एंजॉय फ्रॉम 7 to 10 मंडे टू फ्राइडे ऑन फनीशा रेडियो 104.9 FM। अब मेरी बारी है, कोशिश वही रहेगी और जबरदस्त रहेगी। इट इज आफ्टर ऑल फनीशा रेडियो 104.9 FM दैट यू चूज टू लिसन टू एवरी डे। तो हमारी भी कोशिश रहेगी कि ये पूरा आपके लिए वर्थ वाइल एफर्ट बनाए। दिस इज गपशप गली विथ मी टू।

9722355555 नंबर इन द स्टूडियो लेडीज एंड जेंटलमैन, जरूर अपनी रिक्वेस्ट मुझ तक पहुंचाइएगा. एंड आई वुड लाइक टू नो योर मूड, क्योंकि मुझे लगता है कि वेदर डिपेंडेंट हमारा मूड होता है, लेकिन उस वेदर का ही जो क्या कहना चाहिए, रिएक्शन हर किसी का होता है वो बिल्कुल अलग हो सकता है. अब जैसे ये वेदर है और आज का दिन है ट्यूजडे, यानी कि मंडे का एक स्टार्ट हो चुका है. अब धीरे धीरे वो सिंक इन कर रहा है कि पूरा हफ्ता भी बाकी है. वो सारे में मुझे कुछ थोड़े से अपबीट गानों की ज़रूरत है. मुझे नहीं पता कि आप उस अपबीट मूड में हैं कि नहीं, और इसीलिए मैं जानना चाहती हूँ आप लोगों से कि आर यू इन ए मोर लाइक अ सॉफ्ट ईजी ऑन यू ऑन योर ईयर्स काइंड ऑफ ए मूड, कि आप सच में इस तरह के गाने पसंद कर रहे हो मेरे साथ. कीप लिसनिंग टू फनीशा रेडियो 104.9 FM और बताइएगा ज़रूर 9722355555 नंबर इन द स्टूडियो.

डालिस का मौसम भी कोई कम जालिम नहीं कहलाता है, लेकिन देखिए आप टेक्सास के साउथ में रहते हो, टेक्सास मतलब कि साउथ में है यूएस के, और गर्मी है, ये मान लीजिए कि आपको ठंड में ठंड और गर्मी में गर्मी मिलने वाली है. सो यस लेडीज एंड जेंटलमैन, गर्मी बढ़ने वाली है आज भी, लेट्स से दैट. धीरे धीरे टेम्परेचर कम होने वाला है क्योंकि स्टॉर्म चांसेस भी कुछ आने वाले दिनों में कंपेरेटिवली बढ़ने वाला है. सो स्टॉर्म कवरेज दिस वीक विल बी स्प्लैश एंड डैश वेराइटी, मीनिंग नॉट एवरी वन विल सी ए स्टॉर्म. तो इसके बारे में बातचीत होगी अगले सेगमेंट में. फिल हाल खान साहब की रिक्वेस्ट पे लेट्स टेक यू टू राहत साहब्स वॉइस. हो सकता है इस जालिम गर्मी से राहत राहत साहब ही दिलाएं.

दिस इज गपशप गली विथ मी टू लेडीज एंड जेंटलमैन. हम आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं दिस इज़ फ्रॉम टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक और ये 13 साल से सर्व कर रही है हमारी कम्युनिटी को और एक ब्रांड न्यू नाम और साथ में एक ब्रांड न्यू सेकेंड लोकेशन लेकर आए हैं फ्रिस्को में एंड इट इज़ Lunoxy Medical. I want you all to remember and know about. It is headed by and it is founded by Dr. Mandeep Acharya. और Mandeep Acharya वो हैं जिनका internal medicine में और primary care physician के तौर पे 20 साल से भी ज़्यादा का experience है इनके पास of you know, caring for adult patients and everybody else as well. He has practiced in the Dallas-Fort Worth Metroplex since 2012, ladies and gentlemen, focusing on preventive care, chronic disease management, and evidence-based medicine delivered through a personalized, coordinated approach. Now that I've spoken about Dr. Mandeep Acharya, I also want you to know that Lunoxy Medical, ye jo second naya location hai Frisco mein, ये आपके लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, इन हाउस लैब टेस्टिंग, एक्सरेज, सीटी स्कैन्स, कार्डियक डायग्नोस्टिक्स और साथ में हिमालयन मेडस्पा सर्विसेज, सब कुछ ऑल अंडर वन रूफ दैट यू गेट. सो इट इज़ ओपन 7 days अ वीक दैट यू शुड नो. सुबह के 8 बजे से रात के 8 बजे तक वॉक इन एनी टाइम, कोई अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है. सो डू रिमेंबर दिस इज टेक्सस प्राइमरी केयर एंड दे आर इंट्रोड्यूसिंग Lunoxy Medical फॉर द कम्युनिटी. So yes, keep that in mind and also the fact that you are tuned into Phanisha Radio 104.9 FM. जिसका मतलब कि आप अपने मन के हिसाब से जो सुनना चाहते हैं वो सुन सकते हैं. इफ यू रीच मी एट 972-235-5555.

इट इज़ 2nd of June और अभी हमारे घड़ी में बजे हैं 31 minutes past 10 बाय द स्टूडियो क्लॉक दैट यू कैन मैच योर क्लॉक्स विथ. इट इज़ ए डे दैट हैज़ स्टार्टेड प्रीटी हॉट एक्चुअली. अभी हम 90s ऑलरेडी टच कर रहे हैं इन सम ऑफ द एरियाज. हमारे एक लिसनर ने कहा साउथ लेक से वो सुन रहे हैं हमें और 90 ऑलरेडी टच कर चुकी है साउथ लेक में. तो यू कैन इमेजिन इट इज़ अ वेरी हॉट बिगनिंग टू द डे. और आफ्टरनून आवर्स में मैं बता सकती हूँ आपको कि एक बैक डोर कोल्ड फ्रंट हमें हमारी एंट्री करने वाला है हमारे डैलस में. इंक्रीजिंग आर चांसेस ऑफ आइसोलेटेड थंडर स्टॉर्म्स. नॉट एवरीवन विल सी एनी स्टॉर्म्स एज रेन चांसेस जो हैं वो 30% के करीब हैं. लेकिन स्टॉर्म्स अगर होती हैं आपके एरिया में तो ये गस्टी विंड्स भी लेकर आएंगी और साथ में स्मॉल हेल भी. सो बी वेदर अवेयर बिफोर यू स्टेप आउट. रिमेंबर दैट. एंड लुकिंग अहेड टू द रेस्ट ऑफ द वीक नॉर्थ टेक्सस लुक्स मेनली ड्राई विथ ओनली एन आइसोलेटेड शावर स्टॉर्म पॉसिबल टुमारो. After that, chances of rain ramp up actually. तो 30-50% chances हमारे Thursday में और weekend में entry मारते हुए हम कुछ ऐसे ही weather में रहेंगे. और ये सारा कुछ जो increase rain chances वो thanks to Baja California, it is sending our way all of that. By the mid of next week, models suggest North Texas will dry out and the heat will return to mid-80s. अब इस cold front के चलते हमारे टेम्परेचर्स कल से 80s में वापस जाने वाले हैं ऑल द वे टिल सैटरडे एंड देन अगेन ऑन संडे विल बी बैक इन आर 90s एंड देन वी विल कीप शूटिंग अप. ऑलराइट, दैट बीइंग सेड, आज का टेम्परेचर प्रिसाइसली इट इज गोइंग टू बी अराउंड 94 and low will be around 75. Tomorrow's high will be close to 90, if not 90, and the low will be around 75. And that's your weather update on Fun Asia Radio 104.9 FM. Let's get you another uncommon song right here. Kyunki aap sun rahe hain Gapshap Gali with me too.

लिसन, अगर कोई गाना पसंद आए जो थोड़ा ऑफ बीट है, फॉर एग्जाम्पल द वन दैट यू हर्ड, इट इज इंडिपेंडेंट म्यूजिक दैट यू आर लिसनिंग टू, और ऐसे में ना कभी कभी मेरे दिमाग से फिर निकल जाता है एंड यू नो ऑल आई रिमेम्बर इज द आर द वीडियो क्लिप्स ऑफ द सॉन्ग्स, दैट डजंट हेल्प एट ऑल, क्योंकि कई बार जाने पहचाने चेहरे नहीं होते हैं और ऐसे में ना बिल्कुल गायब हो जाते हैं. तो जो गाना अच्छा लगे ना, मेक अ नोट ऑफ इट सो दैट वी कैन कीप लिसनिंग टू इट. अगर ये गाना आपको पसंद आया, याद रखिएगा इट इज कॉल्ड दिल नचदा, और इसमें समीरा कोपिकर के साथ इट वॉज सनम, यस द फेमस सनम, जिन्होंने कितने सारे रिक्रिएशंस ऑफ रेट्रो गाने गाए हैं. सनमपुरी की बात कर रही हो यहाँ पे, फ्रॉम सनम बैंड. यस, जरूर याद रखिएगा दिल नचदा. राइट, एक और ऐसे गाने पर लेकर जा रही हूँ जो कुछ दिन पहले ही रिलीज हुआ है, May 29 टू बी प्रिसाइज, एंड इट हैज ऑलरेडी गॉटन ओवर 1 million व्यूज एंड लॉट्स ऑफ लव एंड लाइक. तो चलिए सुनवाती हूँ, इट इज कॉल्ड इशारे, रिमेम्बर दैट. ये है गपशप गली विथ मी टू.

0: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
1: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़रवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर ओपन 7 डेज अ वीक 8 AM to 8 PM, वॉक इन एनी टाइम 9191 काइज़रवे स्वीट 205 फ्रिस्को।
2: माय टाइम इक्विरी, अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म ओन्ड बाय CPA सुधीर पाई, ऑफर्स इन्वेस्टमेंट एज अ सर्विस, फाइनेंशियल प्लानिंग, एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, टैक्स प्लानिंग, रियल एस्टेट, हाई यील्ड नोट्स एंड अदर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। फॉर फर्दर डिटेल्स विजिट mytimeequity.com और कॉल सुधीर पाई एट 972-330-2771 और ईमेल wealth@mytimeequity.com टू हेल्प यू अचीव योर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव टुडे। टॉक टू सुधीर पाई अबाउट 2025 डिजिटल एसेट और क्रिप्टो फंड।
3: इन्फॉर्मेशन शेयर्ड हियर इज फॉर इन्फॉर्मेशनल पर्पसेस ओनली एंड डज नॉट कंस्टिट्यूट फाइनेंशियल और टैक्स एडवाइस। इन्वेस्टिंग इन्वॉल्व्स रिस्क। ईमेल wealth@mytimeequity.com फॉर प्रोफेशनल एडवाइस।
4: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
5: Is shehar ko hua kya? Kahin pe anvishwas ka kala saaya? Kahin pe kala jadu? Dhuan dhuan. क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में, कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का।
6: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
7: विजिट psychicramnath.com, कॉल 4693474401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
8: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
9: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
10: हे डैलस, स्टिल परफॉर्मिंग ओनली फॉर योर बाथरूम मिरर और द फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas. Because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA. Your talent, your spotlight.
11: Tracks that put you on the right track.
12: सारी जो बातें दिल कहता है, लहर सपनों की कैसे गिनूं,

होप यू लाइक दिस सॉन्ग. ये मुझे ना फॉर इटर्निटी आई यूज टू थिंक ये ए आर रहमान ने कॉम्पोज किया, लेकिन हैरिस जयराज इज द नेम जो आप भी याद रखें. यू आर लिसनिंग टू फनीशर रेडियो 104.9 FM. गपशप गली में हमारी गली जाने वाली है फीफा की तरफ, क्योंकि फीफा यहाँ पर डैलस में जून 14 को शुरू हो रहा है और माहौल जबरदस्त बनता चला जा रहा है. द ब्रॉडकास्ट हब फॉर द अपकमिंग वर्ल्ड कप इज ऑफिशियली ऑपरेशनल इन डाउन टाउन डैलस विद द ओपनिंग ऑफ द इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट सेंटर इनसाइड द डैलस कन्वेंशन सेंटर, जहां पे हंड्रेड्स ऑफ जर्नलिस्ट रहेंगे, पूरी दुनिया से आएंगे और ये रहेंगे. व्हेन मैचेस बिगिन इन व्हाट 10 डेज, इट विल आल्सो ऑपरेट एंड कंट्रोल कैमरा फीड्स फ्रॉम ईच ऑफ द 16 वेन्यूज अक्रॉस मेक्सिको, कैनेडा एंड US. फीफा के प्रेसिडेंट ने अपनी खुशी जताई ओपनिंग सेरेमनी में, ही वॉज प्रेजेंट येस्टरडे, और हंड्रेड्स ऑफ मॉनिटर्स कल एक्टिवेट कर दिए गए ऑफ दिस ब्रॉडकास्ट हब जो कि डैलस कन्वेंशन सेंटर के अंदर खुला है. डैलस सिटी मैनेजर किम टोलबर्ट सेड द ओपनिंग रिफ्लेक्ट्स इयर्स ऑफ विजन, प्लानिंग, पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन. नाउ इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट सेंटर ये अपने आप में केवल एक यूनिक चीज नहीं है डैलस के लिए, लेकिन एक और चीज जो बिल्कुल यूनिक होगी वो है स्पॉट, ए रोबोटिक पेट्रोल डॉग. और ये स्पॉट जो है ये एक एसिड प्रोटेक्शन करेगा हमारे ब्रॉडकास्ट, इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट सेंटर का इनसाइड डैलस कन्वेंशन सेंटर, और साथ ही साथ एट द न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम टू आइडेंटिफाई एंड रिपोर्ट फिजिकल सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड रिस्क फॉर ह्यूमन इंटरवेंशन. सो यस, द इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट सेंटर विल रिमेन ओपन अराउंड द क्लॉक थ्रू द वर्ल्ड कप फाइनल ऑन July 19th, एंड द ओपनिंग सेरेमनी हैपेंड जस्ट येस्टरडे. यू आर लिसनिंग टू द फीफा सेगमेंट ऑफ गपशप गली विथ मी टू. एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताने वाली हूं. कीप लिसनिंग.

लिसन, एक और बहुत ही जबरदस्त खबर है एंड इट इज अबाउट फीफा वर्ल्ड कप, क्योंकि ये फीफा सेगमेंट मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ गपशप गली में फ्रॉम 10:45 टू 11 दैट आई ब्रिंग फॉर यू. और एक चैलेंज जो कि फॉक्स स्पोर्ट्स ने रखा है, और ये फॉक्स स्पोर्ट्स का चैलेंज इज दैट ग्लास क्यूब चैलेंज. आई एम नॉट श्योर इफ यू आर अवेयर ऑफ इट, तो मैं बताती हूँ आपको क्या है ये. तो कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल सिंपल है और बिल्कुल माइंड ब्लोइंग सा कॉन्सेप्ट है. किसी एक लकी फैन को $50,000 दिए जाएंगे सिर्फ फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सारे 104 मैचेस लाइव देखने के लिए. कैन यू बिलीव दैट? लेकिन ट्विस्ट ये है कि ये मैच जो भी मतलब लकी विनर होगा वो ये सारे मैचेस अपने घर पर बैठकर नहीं देखने वाले हैं, बल्कि दे आर गोइंग टू हायर दिस पर्सन हु एवर इज द लकी विनर एंड ही हैज टू बी इन न्यूयॉर्क सिटी और टाइम स्क्वायर के बीचों बीच एक कस्टम बिल्ड ट्रांसपेरेंट ग्लास क्यूब के अंदर बैठ के उन्हें वो सारे 104 मैचेस देखने होंगे. वहाँ क्लाइमेट कंट्रोल होगा, सब फैसिलिटीज होंगी और साथ में होगा हाई स्पीड वाईफाई पर बाहर जो हजारों टूरिस्ट होंगे वो आराम से बैठ के ना उनके सारे रिएक्शंस देख पाएंगे. इट विल बी क्वाइट फन आई थिंक. June 6 से लेके July 26, आई थिंक इट्स सच अ क्वर्की आइडिया बाय फॉक्स स्पोर्ट्स. और ये भी शर्त है इस जॉब यू नो इस जॉब सिनेरियो में कि जो भी मैच आप देखोगे उसके रिएक्शंस, उसके रील्स बनाओगे, उसके सोशल मीडिया फॉक्स स्पोर्ट पर आप पोस्ट करते रहोगे, कॉन्टेंट डालते रहोगे, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रिक्वायरमेंट. और एप्लीकेशंस जो हैं ऑलरेडी जा चुकी हैं और क्लोज हो चुका है May 17 को. अब जो विन करने वाला है उसका नाम पता चलेगा June 6 को एट रेड सॉक्स वर्सेस यांकीज के लाइव गेम पर. ये पूरे US को पता चलेगा कि वो लकी विनर कौन है जो वो ग्लास क्यूब में जाके बैठेंगे मैनहट्टन के. इट्स बेसिकली अ क्रॉस बिटवीन लिविंग इन अ हाई टेक जू एग्जिबिट truly and having the absolute best summer job on the planet. क्या कहते हैं आप? मुझे बड़ा दिलचस्प भी लगा, बहुत weird भी लगा, लेकिन this is what is making the hype right now. We'll find out what happens to that and I'm quite curious कि कौन जीतेगा. This is Gapshap Gali with me too.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: यार बिजनेस चलाना दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। हर तरफ बस एक्सपेंसेस ही एक्सपेंसेस।
3: बिल्कुल, लेकिन तुझे पता है अब वही एक्सपेंसेस तुझे इनकम भी दे सकते हैं।
2: सच में एक्सपेंसेस से इनकम कैसे?
3: कनेक्टिंग अमेरिका के थ्रू। उनके पास एक यूनिक इंश्योरेंस सॉल्यूशन है जो बिजनेस ओनर्स को अपने खर्चों को एक इनकम स्ट्रीम में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है।
2: वाह, मतलब पैसे सिर्फ जाएंगे नहीं वापस भी आएंगे।
3: एग्जैक्टली, अगर तू अपनी बॉटम लाइन बूस्ट करना चाहता है तो जेम्स को आज ही कॉल कर।
2: नंबर बोल जल्दी।
3: कॉल जेम्स एट 321-888-7345 और विजिट connectingamericafinancials.com।
4: कनेक्टिंग अमेरिका, जहां स्मार्ट बिजनेस ओनर्स टर्न कॉस्ट्स इनटू कैश।
5: हे मैप्स, टेक मी टू माय देसी ग्रोसरी स्टोर।
6: कैलकुलेटिंग राउट, रीराउटिंग।
5: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है।
6: लोकेशन अपग्रेडेड, नाउ हेडिंग टू इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ।
5: क्यों?
6: क्योंकि फोर्ट वर्थ केलर, हैसलेट और हर्स्ट के स्मार्ट लोग जानते हैं। डेली ग्रोसरीज हो या पूजा एसेंशियल्स, ऑथेंटिक इंडियन प्रोडक्ट्स और घर की हर जरूरत, फाइंड एवरीथिंग देसी एट इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ।
5: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो।
7: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ। स्विच द रूट,
6: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड।
8: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
9: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
10: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
11: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
10: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
12: सेम ऑर्डर अगेन, सेम पिज्जा, सेम टेस्ट, सेम स्टोरी। टाइम टू अपग्रेड योर क्रेविंग्स डालस। Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
13: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
14: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
13: Kya matlab?
14: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
13: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
14: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
13: Ab to karna hi padega, madam.
15: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
16: Abey jaldi bol, kal subah Panvel nikalna hai.
17: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।
18: ट्रैक्स दैट पुट यू ऑन द राइट ट्रैक।
19: वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। क्योंकि आप फन एशिया रेडियो 104.9 सुन रहे हैं, 104.9 एफएम सुन रहे हैं, जहाँ पर हम पूरी कम्युनिटी को एक साथ लेकर आते हैं, आपके पसंदीदा गाने सुनवाते हैं, हम आपके साथ बहुत सारी जानकारी शेयर करते हैं। अभी थोड़ी देर में हमारे साथ पंडित जी जुड़ेंगे, पंडित ईश्वर जी। ही विल बी ऑन द एयरवेव्स ऑफ फनीशा रेडियो एंड ही विल टेल यू आपके ज़ोडियक साइन पे बेस्ड आपका हफ्ता कैसे जाने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दैट, देयर विल बी दिस कॉन्वर्सेशनल सेगमेंट फॉर ऑल ऑफ यू, जहां पर आपसे एक सवाल पूछा जाता है, ना कोई सही या गलत जवाब उसका नहीं होता है। बेसिकली सेइंग कि आप आएं ऑन एयर और गुफ्तगू करें, बताएं, अपने इनपुट्स दें अबाउट द टॉपिक दैट आई शेयर विथ यू इन अ बिट। और इसके अलावा आप लोगों के लिए बॉलीवुड की बातें हैं एंड देयर इज प्लेंटी अदर थिंग्स दैट आई विल बी टॉकिंग अबाउट। तो बेसिकली मैं ये कह रही हूँ कि आप जहां पर हैं बस चिपक के सुनते रहें. दिस इज फन एशिया रेडियो 104.9 FM. और यहाँ पे ये भी कहना चाहती हूँ, सुने लेकिन ध्यान से गाड़ी चलाएं अगर आप कार में हैं इस वक्त, बिकॉज वी नो कि वो क्या कहते हैं ना कि दुर्घटना घटी, ध्यान बटा और दुर्घटना घटा, ऐसे कुछ कहते हैं ना. तो बस मैं यही यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि कीप योर आइज ऑन द रोड, बट कीप दिस इंफॉर्मेशन इन योर माइंड कि कभी अगर आपके फ्रेंड्स की कोई ज़रूरत हो तो ये नाम और नंबर और वेबसाइट आपके पास होना चाहिए. एंड इट इज़ टू डू विद यू नो एक्सीडेंट्स, ट्रक एक्सीडेंट, कार एक्सीडेंट हो, स्लिप एंड फॉल इंसिडेंट हो या वर्क प्लेस इंजरी हो, तो अटर्नी ओमर ख्वाजा को आप ज़रूर याद करें क्योंकि ये आपकी कॉम्पनसेशन दिलवाने में आपकी पूरी तरह से मदद करेंगे. एंड यू कैन हैव अ स्ट्रेस फ्री एक्सपीरियंस ऑल थ्रू इट वाइल यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ and other matters, all right? तो ये जो इंश्योरेंस कंपनीज के साथ भिड़ना होता है ना, ये बैक एंड फोर्थ, इट कैन बी अ बिग हेडेक. और अटर्नी ओमर ख्वाजा कैन सिंप्लीफाई थिंग्स फॉर यू. एंड एक सिंपल सी बात लेकिन बहुत तगड़ी बात जो ये आपके सामने रखते हैं कि आपको तब तक पे नहीं करना जब तक आप केस जीत नहीं जाते हो. एंड दैट्स अ सॉलिड प्रॉमिस दैट दे कम विथ. इट इज़ अटर्नी ओमर डॉट कॉम दैट यू मस्ट विजिट. और आप देखें पूरी डिटेल्स लें उनके बारे में एंड देन बात करें उनके साथ, टॉक टू द स्टाफ एंड देन गेट इन टच विथ, टेक एन अपॉइंटमेंट विथ अटर्नी ओमर ख्वाजा. और यहाँ पे ये भी कहना चाहती हूँ कि आपका फ्री कंसल्टेशन होगा, ये पहला कंसल्टेशन. सो गेट इन टच विद देम एंड फाइंड आउट हाउ दे कैन हेल्प यू एंड व्हाट्स द वाइब ऑफ द प्लेस एंड द पीपल देयर, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जिनके साथ आप कनेक्ट करते हो, जिनसे सर्विसेज लेते हो, उनकी वाइब फील करना बहुत ज़रूरी बात होती है. अब जैसे आप हमें सुन रहे हो, होपफुली द वाइब इज़ ऑल गुड एंड पॉजिटिव राइट हियर, इसीलिए तो आप चिपक के सुन रहे हो ना. Thank you so much for tuning into Financial Radio 104.9 FM and thank you for tuning into my show Gapshap Gali with me too.

एंड इट वॉज द रीमेक ऑफ दैट बार बार देखो सॉन्ग बाय रफ़ी साहब, राइट? और कुछ रीमेक्स ही मैं प्ले करने वाली हूँ आप लोगों पे. एक रिक्वेस्ट आई थी, मेरी प्यारी बिंदु, वो जो गाना है उसका रीमेक, एंड आई फाउंड वन. और ये मैं आप पे छोड़ूंगी कि आपको कैसा लगता है, लेकिन येस, रीमेक्स इज़ वॉट वी आर गोइंग टू प्ले. आफ्टर ऑल हम रीमेक्स की तो बाहर नहीं, एक्चुअली बाढ़ देख रहे हैं इन बॉलीवुड, राइट? मतलब राइट फ्रॉम वरुण धवन की वो जो फिल्म है यार, जिसके कारण काफ़ी परेशान भी हो गए हैं, वाशु भगनानी ने जो केस कर दिया, चुनरी चुनरी जिसमें गाना है यार, इश्क तो होना ही है, क्या था, इश्क तो सोना है, कुछ ऐसे तो कुछ जो गाना भी, वो भी रीमेक हुआ है उस फिल्म के लिए. द वन यार विथ मृणाल ठाकुर एंड पूजा हेगड़े, जिसके बारे में मैं कल भी बात कर रही थी. लुक इट मी, सीरियसली हाउ कैन आई फर्गेट द नेम ऑफ द मूवी, स्पेशली यू when I am the person who is supposed to know it the best. Hi, hai jawani to ishq hona hai, that's the name of the film jo June 5th ko release hone wali hai. To us film mein le lijiye, ya ek aur koi film thi Ayushman Khurana ki, usme bhi remakes hain. I mean itne sare remakes hain, maine kaha chalo yaar remake par hi pura segment kar dete hain. Aur aap se ek sawal poochte hain. 972-235-5555 studio ka number hai, and this is for a giveaway that I have for you from Red Hot Chili Pepper. Ya to dry chili chicken aapko mil sakta hai, ya chili baby corn mil sakta hai, ya unka the best, Dallas ka best actually, chicken makhan wala, yani ki butter chicken mil sakta hai. So one of the three things that you can enjoy, the one lucky person who can get it. Simple sa hai sawal ki bhai summers ke dino mein na hamare jo movie watching list hai na thodi badh jati hai, to maine socha movie se related hi kuch baat karte hain. To jahan gaane remake ho rahe hain wahan pe main filmon ki baat karna chahti hu. Kaun si aisi film hai जिसका सब्जेक्ट इतना तगड़ा है आपको लगता है कि उसका रीमेक मस्त बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा, कोई अच्छे से बनाए तो डेफिनेटली बहुत अच्छा बनेगा. तो वो कौन सी बॉलीवुड फिल्म है आपको लगता है कि जिसका रीमेक सॉलिड हो सकता है, लेकिन अभी तक बनी नहीं है, लेकिन बननी चाहिए, वैसी वाली कोई फिल्म हो बॉलीवुड की तो मुझे बताइए. 972-235-5555 नंबर इन द स्टूडियो, एंड वन ऑफ यू विल गेट दिस रेड हॉट चिली पेपर का गिव अवे. इस गाने के बाद आपके जवाब लेते हैं कि ऐसी कोई भी फिल्म का नाम बताएं जो आपको इतनी बेहतरीन लगी है, इतनी बढ़िया लगी है कि आपको लगता है कि यार ये दोबारा, यार आज के जमाने के हिसाब से बननी चाहिए ये फिल्म, ठीक है? सो गिव मी दैट आंसर एंड लेट्स सी, मे बी इट्स समथिंग दैट वी आर मैनिफेस्टिंग और फिर हो ही जाए.

0: मेरे प्यारे लिसनर्स, आप लोगों के लिए एक सवाल है, और वो सवाल है कि अगर कोई हिंदी फिल्म की अगर उसका अगर रीमेक बनाने का स्कोप होता, अगर चॉइस आपके पास होती, तो कौन सी वो एक फिल्म होती जो आपका मोस्ट फेवरेट रहा है फ्रॉम येस्टर ईयर्स, जिसका आप रीमेक देखना चाहेंगे, जिसका रीमेक अभी तक बना नहीं है, लेकिन सॉलिड रीमेक, ऐसा नहीं कि इंस्पायर्ड बाय या इस तरह की कोई बात नहीं, बस सॉलिड रीमेक आप देखना चाहेंगे, ये मैं अपनी जनता से पूछ रही हूँ। रेड हॉट चिली पेपर का गिव अवे अवेट्स फॉर वन लकी विनर ऑफ दिस क्वेश्चन। यू आर लाइव ऑन एयर।
1: हाय
0: हाय एंड रीमा, थैंक यू वेरी मच फॉर होल्डिंग द लाइन फॉर मी। बताइए, क्या है आपकी फेवरेट फिल्म जो आप चाहोगे दोबारा देखना इन मॉडर्न टाइम?
1: अनमोल पारेख का एक मूवी था, चुपके चुपके।
0: अमोल पालेकर,
1: अमोल
0: अमोल
1: चुपके चुपके।
0: चुपके चुपके बस अमिताभ बच्चन एंड धर्मेंद्र, वो वाला बोल रहे हो आप? चुपके चुपके
1: नहीं नहीं नहीं नहीं बहुत उससे भी पुराना।
0: अच्छा, अनमोल
1: उससे भी पुराना। अशोक कौन है, राकेश? चुपके चुपके जिसमें वो गाना है जाने मन
0: तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए। ये ना छोटी सी बात है, आई थिंक छोटी सी बात,
1: छोटी सी बात।
0: हाँ, ओह एब्सोल्युटली, व्हाट अ मूवी दैट वाज, एंड कितने बेहतरीन गाने थे यार। एंड वो ना अमोल पालेकर का वो जमाना था जब ना वो गाय नेक्स्ट डोर काइंड ऑफ एक आम जनता की कहानी ऐसे लगता था कि वो पोर्ट्रे करते थे एक कैरेक्टर, राइट?
1: एग्जैक्टली, हाँ हाँ हाँ।
0: थैंक यू सो मच, आई हैव इट इन माय लिस्ट एंड कीप लिसनिंग। देखते हैं कि हमारे लिसनर्स और क्या कहना चाहते हैं अबाउट

0: about the one movie that they would like to be remade. You are live on air.
1: Hello.
0: Hello.
1: How are you?
0: I am doing very well. Kya naam hai aapka?
1: Mera naam Anand hai.
0: Anand, bataiye. Please don't say ki Anand ka remake. Are you going to say that?
1: नहीं नहीं
0: ओके
1: वो भी अच्छी मूवी थी वैसे
0: जी बिल्कुल हाँ आपका कौन सा चॉइस है
1: सो एक मूवी थी अमिताभ बच्चन और ये मौसमी चटर्जी की बेनाम
0: बेनाम
1: वो मर्डर मिस्ट्री थी
0: ओके
1: और उसमें बेसिकली यू नो लाइक बहुत ही टेंस सी मूवी थी ये दोनों कहीं थ्रिलर टाइप की ये दोनों कहीं जा रहे हैं कुछ मर्डर विटनेस करते हैं उसके बाद इनके ऊपर थ्रेट्स आने शुरू हो जाते हैं सो लाइक अपना फैमिली लाइफ एंड देन कैसे उनकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है
0: इंटरेस्टिंग स्टोरी हाँ इट्स नॉट द रोम कॉम काइंड इट्स अ थ्रिलर ओके वेरी इंटरेस्टिंग ये तो मुझे ढूंढना पड़ेगा अगर यूट्यूब में मिलता है अमिताभ बच्चन एंड मौसमी चटर्जी हाँ
1: हाँ मैं भी बहुत दिन से ढूंढ रहा हूँ ये मूवी मुझे देखनी है दोबारा
0: से मजा आएगा देखने में थैंक यू जी आनंद सर आपका नाम लिख लिया गया मैं लिस्ट में मैं अगले कॉल की तरफ बढ़ रही हूँ यू आर लाइव ऑन एयर बताइए
2: हेलो
0: हाय व्हाट्स योर नेम
2: माय नेम इज मुफद्दल
0: हाउ डू यू स्पेल योर नेम मुफद्दल
2: मुफद्दल
0: दल ऑलराइट मुफद्दल गॉट इट डाउन बताइए कौन सी फिल्म
2: I think half ticket movie उनका remake बने तो बहुत मजा आएगा
0: किशोर कुमार एंड मधुबाला
2: किशोर कुमार का जी जी
0: क्या,
2: जी
0: क्या अमेजिंग गाने भी हैं उसमें आपने कौन से फिल्म
2: अमेजिंग
0: आई नो
2: सॉन्ग एक्टिंग सबके प्लॉट एकदम जबरदस्त है
0: बिल्कुल
2: और कपिल शर्मा बनाए और वो गाते भी है एक्टिंग भी अच्छी करते हैं कॉमिंग अमेजिंग है तो मजा आ जाए
0: आपने तो कास्टिंग डायरेक्टर का काम ले लिया आप अगर कास्ट कर ही रहे हैं तो किशोर कुमार की जगह तो कपिल शर्मा बोल दिया आपने और मधुबाला की जगह किसको ले बता दीजिए
2: मधुबाला की जगह पे कोई भी ले लीजिए एक्ट्रेस
0: कोई भी तो नहीं चलेगी शी हैज टू बी रियली स्पेशल अगर मधुबाला की जगह पे कोई आ रहा है तो दैट हैज टू बी समबडी रियली रियली स्पेशल हाउ अबाउट नहीं तृप्ति दिमरी के साथ नहीं जमेंगे ठीक है हम कास्टिंग करते हैं आप भी सोचिए मैं भी सोचती हूँ मैं चलती हूँ अभी अपने अगले कॉलर पर सम फूड फॉर थॉट फॉर मुफद्दल सर जी यू आर लाइव ऑन एयर आपका नाम क्या है
3: हाय नाम संदीप है
0: संदीप बताइए व्हाट डू यू थिंक या
3: Yeah, the movie, right? The question is still same?
0: Yes, still the same.
3: Okay. So, मेरे हिसाब से the best movie जो आज के time पे फिर से बनानी चाहिए
0: हाँ
3: वो है movie दामिनी
0: दामिनी oh, what an amazing मीनाक्षी सेशाद्री at her best in that one. Yeah.
3: The reason वो movie क्यों बनानी चाहिए is because उस movie में पूरा सोसाइटी कवर है लाइक हाउ अ हस्बैंड शुड बी जब अपनी वाइफ पे बात आती है तो उसने फैमिली क्लब जाकर उसने आवाज नहीं उठाई फिर उसने उठाई सेकंड पार्ट एक किसी पे अगर कुछ हो रहा है अच्छा जैसे दामिनी पे हुआ था
0: करेक्ट
3: तो उसने वो कैसे अपने पूरे फैमिली सिस्टम के खिलाफ गई और खड़ी रही आवाज उठाया बर्दाश्त किया एंड सेकंड सनी देओल एज अ मैन वो कैसा मतलब उसे एक इंसान एक मर्द कैसा होना चाहिए एक औरत कैसी होनी चाहिए सिस्टम कैसा होना चाहिए गलत होने तो इंसान कैसा लेना चाहिए मतलब पूरा एक कंप्लीट ये पैकेट है वो मूवी
0: बिल्कुल एब्सोल्युटली और आज के दिन में भी इट विल स्टैंड ट्रू अगर वैसी फिल्म बनाई जाए इट विल बी सच अ गुड मैसेज टू द कम्युनिटी आई एब्सोल्युटली अग्री
3: द रीजन इज आजकल रिमोट एरिया में इंडिया में रिमोट एरिया में इंटरनेट आ गया है तो लोग नई मूवी देख पाएंगे दामिनी पता नहीं इस गांव में किसने देखी है कि नहीं
0: कितने लोगों ने देखी होगी
3: बहुत सारे हो रहे जो अनरिपोर्टेड है
0: बिल्कुल एब्सोल्युटली एंड गांव में भी क्यों मुझे लगता है कि बड़े शहरों में भी यू नो द रेप केसेस एंड एवरीथिंग दैट हैपेंस और वो बिल्कुल दबा दिया जाता है या तो बड़े लोग इन्वॉल्व होते हैं इसीलिए या कई बार लोग सोसाइटी के चक्कर में यू नो कि लोग क्या कहेंगे उस चक्कर में या नो वेरी वेल सेड संदीप थैंक यू फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन हियर एंड दैट मेक्स मी टेक यू टू अनदर रीमेक और हम इस गाने के बाद कुछ और कॉल्स और विनर का नाम भी बताएंगे

0: ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, वक्त है कि हम अपने अनाउंसमेंट करें फॉर द विनर दैट वी हैव फ्रॉम दिस सेगमेंट फॉर रेड हॉट चिली पेपर. एक आखिरी कॉल ले लूं, बड़ी जबरदस्त तरीके से कोई पहुंचने की कोशिश कर रहा है. सो लेट्स टेक दिस पर्सन लाइव ऑन द एयरवेव्स ऑफ फन एशिया रेडियो. यू आर लाइव ऑन एयर.
1: Hi, I like to watch remake of movie Jaane Bhi Do Yaaro.
0: Jaane Bhi Do Yaaro, what a chaotic comedy film that it was. Or believe it or not, usme ek murder bhi hota hai. Wo bhi hota hai, haan?
1: Agree.
0: It was well made actually. Kya naam hai sir aapka?
1: Sri Ram.
0: Tell me again.
1: Shri Ram.
0: Got that. Shri Ram, how about I give this giveaway to you? Red Hot Chili Pepper ki taraf se aapko milta hai dry chili chicken ya fir chili baby corn ya fir Dallas ka best chicken makkhan wala that you can get at Red Hot Chili Pepper. Ye sawal main har apne winner se poochti hu, kya khayenge aap wahan par? It is not my business, but I'm just curious to find out. Kya lenge Shri Ram?
1: Being vegetarian, I think I'll go with chili corn.
0: Chili baby corn. Oh, good chili choice there. Good choice. वैसे इनमें से कुछ भी choose करते मैं यही कहती कि good choice. Because Red Hot Chili Pepper is really a very good choice to go have your food there. All right, Shri Ram, I'm going to ask you to hold the line for me. And thank you so much everyone for participating. आपके सारी information मैं off फेर लेती हूँ, ठीक है? Thank you. And congratulations to Shri Ram, ladies and gentlemen. और आप सबको मैं ये कहना चाहती हूँ कि रीमेक्स जो जिनकी भी आपने कही, क्या पता किसी दिन बन जाए, और अगर बन जाए तब मुझे और मेरे शो को और साथ में फन एशिया रेडियो को ज़रूर याद कीजिएगा. ऑलराइट, नाउ दैट बीइंग सेड, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं आप लोगों के साथ एक और घंटे हूँ. सो कीप लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 FM. मिलते हैं ब्रेक के बाद.
2: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
3: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है.
2: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
3: वेट, व्हाट?
4: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है.
5: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ. मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग.
4: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए. कॉल 669-243-5799. दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन.
6: ड्यूड, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं.
7: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है.
6: कैसे?
7: पेज 3 ईटरी?
6: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन.
7: ड्यूड, इट्स पेज 3. स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोल्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट.
6: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं.
8: पेज 3 ईटरी, ईट सिप गॉसिप रिपीट.
4: Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai. Profits hai, but no cash liquidity. Har saal tax bills ke saath tax season ka anxiety. Diagnosis clear hai. Aapke business ko chahiye smart tax planning, clean bookkeeping aur ek strong financial strategy. AG Fintax, founded by Forbes Council member Anil Granthi. From taxes to CFO advisory. Business owners ke har challenge ka ek hi solution. Call 425-395-4318 or visit agfintax.com. Plan today. Optimize your cash flows with AG Fintax's advisory services.
9: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
10: Har samasya ka hal hai astrologer Ishwar ke paas. 400 saal ki family wisdom ke saath world famous astrologer. Ab Dallas mein.
9: That magic removal ho, love and relationship issues ho, get trusted solutions with 100% privacy.
10: Thousands ki life badli unki divine guidance se. Now it's your turn.
9: Samasya ka pakka samadhan.
10: Astrologer Ishwar. Call now 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
11: घर की याद नहीं आई तुझे जैसी?
12: आती है यार, बहुत आती है, इसलिए तो घर जैसा टेस्ट ढूंढता रहता हूँ.
13: अब और ढूंढने की जरूरत नहीं, विजिट चंडीगढ़ वाले, जहाँ हर बाइट में मिले असली पंजाबी घर का टेस्ट.
12: सच में? बिल्कुल घर जैसा.
13: ट्राई द वैरायटी ऑफ वेज एंड नॉन वेज स्पेशलिटी कुल्चास विद ग्रेवी, बटर चिकन एंड मेनी मोर. लोकेटेड इन इरविंग, देयर इज पंजाबी घर का खाना ऑन एवरी प्लेट. चंडीगढ़ वाले,
14: taste that feels like home.
15: Breaking news! Home loan ya refinance ab aur bhi aasan. MyFamilyHomeLoan.com deta hai transparent pricing. No hidden fees. No surprises. Aur haan, sabse badi khabar, unka AI-powered platform. Real-time rates compare karta hai, taki aapko mile better deals and faster approvals. 15,000 plus Google reviews. Hazaro families ka bharosa. Visit MyFamilyHomeLoan.com or call 469-734-3338. 469-734-3338. MyFamilyHomeLoan.com is powered by Loan Factory. NMLS 2025289. Licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
16: Big achievements deserve unforgettable celebrations. Host your kids' graduation party at the Flavor Lounge in Frisco, where great food meets great memories. And if you want to host the party at your place, no worries. You can also order for catering services only. Fresh Tray Catering, custom menus for small or large gatherings. Everything in perfect style. Call now 469-712-3591 or visit theflavorlounge.com. The Flavor Lounge. You celebrate. Flavor hum sambhal lenge.
17: Hi, this is Rani Mukherjee. You're listening to Fun Asia Radio.
18: Tracks that put you on the right track.

इस सेगमेंट में सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्शियल गाने प्ले किए जाएंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि कुछ कंट्रोवर्शियल स्टोरीज जो चल रही हैं बॉलीवुड में, वो ही कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। ना सिर्फ बॉलीवुड में लेकिन डैलस में भी जनाब एंड मोहतरमा, सबको इंक्लूड करना जरूरी है, लेडीज एंड जेंटलमैन। जी हाँ, तो ये अगला गाना जो मैं लगाने वाली हूँ, दिस इज ऑल्सो अ कॉन्ट्रोवर्शियल गाना। और ये गाना लगाऊँ उसके पहले मैं पहली कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में बात करती हूँ, विच इज फ्रॉम बॉलीवुड। और ये जो ड्रामा शुरू हुआ है, इट इज़ टू डू विद भाईजान, यानी कि हमारे सलमान खान, एक लीगल टीम ने जो है, एक फिल्म है उस पर कुछ स्ट्रिक्ट लीगल नोटिस वो लेकर आए हैं। काला हिरण द बैटल ऑफ लेगेसी, दैट्स द नेम ऑफ द फिल्म, और उनके मेकर्स को एक स्ट्रिक्ट लीगल नोटिस भेज दिया गया है। सलमान खान के लॉयर्स का कहना है कि ये फिल्म उनकी पर्सनैलिटी राइट्स का ग्रोस वायलेशन है, और क्योंकि 1998 का ब्लैक बक केस अभी भी राजस्थान हाई कोर्ट में पेंडिंग है, ये मूवी उनके राइट टू ए फेयर ट्रायल को अफेक्ट करता है, और इसीलिए ये नोटिस ठोका गया है। फैंस ने नोटिस किया है कि भाई ये फिल्म के पोस्टर में जो बंदा है, जो भी हीरो वगैरह जो भी होगा, उसके हाथ में गन है, और उसके हाथ में वो सलमान खान वाला जो आइकॉनिक फिरोजा ब्रेसलेट है ना, वो भी दिख रहा है। सो यस, डेफिनेटली टेकन फ्रॉम सलमान खान। लेकिन फिल्म के प्रोड्यूसर अमित जानी और डायरेक्टर भरत श्रीनाथे, उन्होंने कहा है कि वो बिल्कुल पीछे नहीं हटने वाले हैं, पूरी तैयारी में है। इफ कम्स टू लीगल बैटल, दे आर अप फॉर इट। उन्होंने साफ कह दिया है कि सलमान खान की बायोपिक नहीं है, बल्कि बिश्नोई कम्युनिटी और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की रियल लाइफ कहानी है, और उनका टीजर स्केड्यूल के मुताबिक जून 20th को ही रिलीज होगा। अब देखते हैं कि कुछ स्टे ऑर्डर लगता है ऑन द रिलीज ऑफ द टीजर, या फिर टीजर जो है वो रिलीज होता है ऑन June 20th। सो दैट्स वन ऑफ द बैटल्स गोइंग ऑन इन बॉलीवुड। घूमर द सॉन्ग फ्रॉम पद्मावत, दिस वॉज ऑल्सो डीपली इन कॉन्ट्रोवर्सी व्हेन इट रिलीज्ड।

इस सॉन्ग दैट हर्ट रिलीजियस सेंटिमेंट्स एंड इन सब के चलते ये गाना कंट्रोवर्सी के दायरे में आया था. और नेक्स्ट गाना जो है वो भी कंट्रोवर्शियल था फॉर द रीजन कि दलित कम्युनिटी इन इंडिया दे वर ऑफेंडेड, क्योंकि इस गाने में एक लाइन थी एंड दैट लाइन वाज मोहल्ले में कैसी मारामार है, बोली मोची भी खुद को सुनार है. तो इस लाइन से ऑब्जेक्शन था एंड प्रोटेस्ट वगैरह हुआ था एंड उसका रिस्पॉन्स ये था कि यशराज स्टूडियोज ने, यशराज फिल्म्स ने, उन्होंने एक अपॉलॉजी भी इशू की और उस लाइन को बदला भी. एंड दैट लाइन बिकेम मोहल्ले में कैसी मारा मार है, मेरे दर पे दीवानों की बहार है. दैट इज वॉट इट वॉज चेंज टू. तो ये आजा नचले गाना आई एम गोइंग टू प्ले फॉर यू. लेकिन बिफोर दैट, और मे बी लेट्स डू इट आफ्टर दैट, डैलस में भी एक कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है और ये है एक आर्ट को लेकर जिसके बारे में मैं पहले बात कर चुकी हूँ. लेकिन वी विल गेट टू दैट आफ्टर दिस सॉन्ग. और गेस व्हाट, आपको मुझे बताना है द मिसिंग लाइन इन दिस सॉन्ग. लेडीज एंड जेंटलमैन, 972-235-5555, दैट्स द नंबर इन द स्टूडियो. और आपके लिए एक गिव अवे है और वो गिव अवे है इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ की तरफ से आपके लिए एक ग्रोसरी हैम्पर. लेडीज एंड जेंटलमैन, इंडिया बाजार लोकेटेड एट 5152 क्वाड्रेंट वे इन फोर्ट वर्थ. फॉर पीपल लिविंग इन फोर्ट वर्थ, केलर, हर्स्ट, हैसलेट, आप सबके लिए ये कन्वीनियंटली लोकेटेड है. और जो भी जीतेगा उनके लिए भी ऑटोमेटिक कन्वीनियंस हो जाती है कि ग्रोसरी का बहुत सारा सामान आपको उस हैम्पर में मिल जाएगा. सो गेट रेडी फॉर दिस वन लेडीज एंड जेंटलमैन, जहाँ पर आपको फ्रेश प्रोड्यूस, स्पाइसेस, स्नैक्स एंड एवरीथिंग दैट ए डेली देसी एसेंशियल नीड इज कंसर्नड, यू विल फाइंड इट एट इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ. तो मैं एक लाइन को दबाने वाली हूँ इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक के साथ और आपको वो फिल इन द ब्लैंक्स करना है, एज सिंपल एज दैट. एंड दिस सॉन्ग इज आजा नचले, सुनिधि चौहान्स फ्रॉम द मूवी आजा नचले. Let's hear it. और एक गाना गायब करने वाली हूँ. Ready? 972-235-5555 number in the studio.

0: All controversial songs from Bollywood that I played in this segment. और कुछ controversies की बात कर रही थी तो Dallas की हमारे backyard में controversy जो चल रही है, it is to do with the Wailing Wall by renowned artist Weiland, which is in downtown, ladies and gentlemen. That iconic massive whale and dolphins mural, which was created in 1999 as a community gift to raise environmental awareness, and it is one of 100 Wailing Wall murals by Weiland painted worldwide. तो टेक्सस यूटिलिटीज बिल्डिंग पे ये हुआ था, 505 नॉर्थ एकार्ड स्ट्रीट इन डाउनटाउन डैलस. डैलस स्काईलाइन का एक मतलब हिस्टोरिक पीस बन चुका था. ऑलमोस्ट 17,000 स्क्वायर फीट पे इसे पेंट किया गया था. और अब ये फीफा के चलते, फीफा 2026 वर्ल्ड कप के चलते, इंटरनेशनली अक्लेम्ड डच आर्टिस्ट रोजेली दे ग्राफ उन्होंने पेंट ओवर किया है. द म्यूरल इज कॉल्ड वन फील्ड इन्फिनिट स्माइल्स, बट कई चेहरों के स्माइल्स उड़ चुके हैं जो 1999 से यूज टू थे वाइल्डलैंड के पेंटिंग की, विच वॉज डॉल्फिन्स एंड यू नो वेल की जो वो पेंटिंग थी, वो अब क्योंकि उसके ऊपर पेंट कर दिया गया विदाउट द परमिशन, विदाउट इवन आस्किंग वाइल्डलैंड अबाउट इट. और ये वाइल्डलैंड को और यहाँ के कई लोकल्स को पसंद नहीं आया है. एंड अब एक $25 million का लॉसूट ठोक दिया गया है ऑन फीफा एंड द सिटी. कीप लिसनिंग.
1: दिस इज द फन एशिया नेटवर्क. यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, पायलट पॉइंट टेक्सास, साइमलकास्टिंग ऑन KTCG 104.1 FM HD2, सैंगर टेक्सास. ऑफिशियल टैक्स एंड फाइनेंस पार्टनर AG Fintax, पावर्ड बाय फन एशिया फिल्म्स एंड फन पिज़्ज़ा किचन. ऑफिशियल इंजरी लॉ पार्टनर द लॉ ऑफिसेस ऑफ ओमर ख्वाजा.
2: Frisco is growing fast and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
3: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर.
4: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
5: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
6: वेट, इतना सब और प्राइस?
5: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन. समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
7: मैं ही तो.
8: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
9: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था.
10: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था.
9: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है.
11: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव इन प्लेनो. एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपटीटर कोर्ट मैच भी. कॉल 4692983870. पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
8: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
9: हेलो, एक्सीडेंट क्लेम? ओके, नेम ऑफ द लॉयर? उमर ख्वाजा.
12: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल. कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
13: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
14: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
15: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
16: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
15: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
7: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
17: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
18: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
19: कौन सा?
18: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
19: अरे सारे तो सेम है।
18: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो ये वाला।
19: ओ हाँ, ये तो अलग है।
20: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
21: Hi, this is Konkana Sen Sharma and you're listening to me on Fun Asia Radio.
22: Tracks that put you on the right track.

0: And it is Sonakshi Sinha celebrating her 39th birthday, and we wanted to join in to wish her a very happy birthday. I do follow her YouTube channel. मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग उन्हें follow करते हैं, लेकिन not for the makeup tutorials, the beauty tutorials or life updates that she gives या home tours जो वो देती हैं, जो मैं जब देख रही हूँ तो मैं absorb भी कर रही हूँ, लेकिन at the same time I would like to say what I like about her YouTube channel is her being absolutely एब्सोल्यूटली अनफिल्टर्ड. बिल्कुल एक हाईली रिलेटेबल वाइब लेकर आती हैं वो, और कोई हैवीली क्यूरेटेड यू नो पीआर इमेजेस नहीं होते हैं. दैट इज़ वॉट पीपल आर लविंग एक्चुअली. एक पर्सनल लेड बैक स्पेस जो उनका है, और वो जिस तरह से शेयर करती हैं जीरो फिल्टर अप्रोच के साथ, एक जो उनकी वल्नरेबिलिटी है, कुछ गलती कर देती हैं वो भी वो एडिट नहीं करती हैं, उसको उसको निकाल नहीं देती हैं अपने अपने यू नो यूट्यूब अपलोड में से. और एक टॉक्सिक नहीं है स्पेस, इट्स ऑल गुड, यू नो इट्स ऑल नाइस. एंड द कॉन्फिडेंट हर शोज वेरी नाइसली ऑन दैट यूट्यूब चैनल ऑफ हर्स, एंड विशिंग हर ए वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे. टॉकिंग अबाउट बर्थडेज, एक और बर्थडे पे जाना चाहूंगी, क्योंकि आज है इन माइस्ट्रो का बर्थडे. एक ऐसे जाने माने फिल्म मेकर, फिल्म प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर की क्या ही कहा जाए, ना सिर्फ तमिल सिनेमा में लेकिन कन्नड़, तेलुगु, मलयालम एंड ऑफ कोर्स हिंदी सिनेमा में एक अमेजिंग अपना जो नाम बनाया है, इट्स मणि रत्नम.
1: हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा

एंड इट इज मनी रत्नम्स बर्थडे दैट वी हैड टू सेलिब्रेट लेडीज एंड जेंटलमैन. मतलब क्या अमेजिंग फिल्म मेकर है, और इनकी बनाने की स्टाइल में ना एक विजुअल पोएट्री है, एक जो रियलिस्टिक कैरेक्टर्स का वो पोर्ट्रेयल करते हैं वो कुछ अमेजिंग ही होता है. कुछ रेवोल्यूशनाइज किया है उन्होंने इंडियन सिनेमा को, ये तो मानना ही पड़ेगा. वो कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड सोशल और पोलिटिकल इशूज़ को जिस तरह से उन्होंने अपने फिल्म में ब्लेंड किया है.

विजुअल पोएट्री है, एक जो रियलिस्टिक कैरेक्टर्स का वो पोर्ट्रेयल करते हैं वो कुछ अमेजिंग ही होता है. कुछ रेवोल्यूशनाइज किया है उन्होंने इंडियन सिनेमा को, ये तो मानना ही पड़ेगा. वो कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज को जिस तरह से उन्होंने अपने फिल्म्स में ब्लेंड किया है, इट मेक्स फॉर अ वंडरफुल वॉच एंड इट इज़ गोइंग टू स्टे फॉर एवर विद अस. सो दैट्स लेडीज एंड जेंटलमैन मणि रत्नम सेलिब्रेटिंग 70th. तो हम दिल से विश करना चाहेंगे ए वेरी हैप्पी बर्थडे. वो कहते हैं ना काल करे सो आज कर, आज करे सो अब. वो थोड़ा सा उल्टा लेने वाली हूँ, जो कल नहीं किया वो आज करने वाली हूँ, वो आज यानी कि अभी करने वाली हूँ. एंड दैट इज़ टू डू विथ सेलिब्रेटिंग आर माधवन. लेडीज एंड जेंटलमैन, कल कैसे दिमाग से उतर गया मुझे नहीं पता, लेकिन जो नहीं किया कल वो आज करना ही पड़ेगा. बिग फैन ऑफ आर माधवन दैट आई एम एंड आई एम श्योर यू ऑल आर एज वेल. तो ये तो भाई फॉर आर माधवन वी मस्ट रियली डाइव इन टू हिज सॉन्ग. और ये जो एक रेयर जो पैन इंडिया फेम जो इनको मिला है ना बिल्कुल, और वो एक जो उनकी वर्सिटैलिटी हमें उनकी फिल्मों में दिखा है, वो चाहे आप विक्रम वेदा कह लें, थ्री इडियट्स या रंग दे बसंती एंड ऑफ कोर्स रहना है तेरे दिल में, पैन इंडिया अपील जो है ना कि साउथ की फिल्म्स में भी उतने ही पॉपुलर हैं जितने हमारे बॉलीवुड की फिल्मों में विदाउट बीइंग टाइपकास्ट. नाउ दैट्स आल्सो कमेंडेबल राइट. और उनकी सिर्फ जो जो कमिटमेंट है इंडस्ट्री में, इट इज़ नॉट लिमिटेड टू एक्टिंग. हम जानते हैं कि डायरेक्शन की दुनिया में भी उन्होंने कितना कमाल का काम किया है विथ द नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म रॉकेट्री द नंबी इफेक्ट राइट. तो इसी बात पे वो गाना हो जाए जो उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म से, रहना है तेरे दिल में. लेट्स गेट इट फॉर यू राइट हियर ऑन फन एशिया रेडियो 104.9 FM. विशिंग आर माधवन ए वेरी हैप्पी बर्थडे टुडे, यस्टरडे एक्चुअली.

While we are talking about this day's importance, although R. Madhavan का birthday कल था लेकिन आज हमने मना लिया. Birthday wishes are always welcome. थोड़ा आगे पीछे हो तो कोई दिक्कत नहीं, wishes पहुंच जानी चाहिए. तो हमने तो भेज दी भाई R. Madhavan को. और अब जो लेकर आने वाली हूँ, it is about this day, 2nd of June 2023 को एक फिल्म आई थी जिसमें थी विकी कौशल और सारा अली खान. सुपर हिट रोमांटिक कॉमेडी साबित हुई एट द बॉक्स ऑफिस और इस फिल्म के दो गाने पर्टिकुलरली सुपर हिट हुए जिनमें से एक चलिए लगा देते हैं. फिल्म का नाम जरा हटके जरा बचके.

एक जो बजट था उस बजट से कहीं ज्यादा इस फिल्म ने कमाया. सो ए स्लीपर हिट दैट दिस फिल्म बिकेम जरा हटके जरा बच के. और ये था विकी कौशल और सारा अली खान का फर्स्ट ऑफिशियल उनकी जो फिल्म एक साथ जो हमने पहली बार इस जोड़ी को देखा. एनी वेज गोइंग अहेड विद दिस नेक्स्ट ट्रैक जो बहुत ही मशहूर फिल्म से है. फिल्म का नाम है कभी अलविदा ना कहना विच रिलीज ऑन दिस डे 20 ईयर्स बैक. जी हाँ, करण जौहर की ये फिल्म जो लोगों ने रिलीज के पहले सोचा था कि खूब बड़ी हिट होने वाली है, लेकिन कह सकते हैं कि सेमी हिट हुई थी इंडिया में. बाकी ओवरसीज इट इट वॉज अ ब्लॉक बास्टर. सो थोड़ा क्रेडिट हमको भी जाता है. आई एम श्योर हम सब ने देखी होगी थिएटर्स में जाके. आफ्टर ऑल क्या स्टार कास्ट था यार. शाहरुख खान, रानी मुखर्जी, अभिषेक बच्चन, प्रीति जिंटा एंड देन ऑफ कोर्स अमिताभ बच्चन का गेस्ट रोल भी था इस फिल्म में. और यस, समथिंग दैट हैड अ वेरी पोलराइज्ड रिएक्शन इन द डोमेस्टिक मार्केट बैक इन इंडिया. और ये इनफिडेलिटी पे था और ये अनकन्वेंशनल थीम कुछ हजम नहीं हो पाया था बैक इन इंडिया. दैट इज़ वाई कुडन डू एज वेल इन इंडिया जितना ओवरसीज मार्केट में ये फिल्म चली. तो उसी फिल्म का एक ये वाला डांस नंबर हो जाए, कभी अलविदा ना कहना.

0: लिसन, जाने से पहले आप लोगों को याद दिलाना चाहती हूँ, और ये तो मतलब हम सबको पता है कि फ्रिस्को इज ग्रोइंग फास्ट एंड द फ्यूचर ऑफ फ्रिस्को सिटी नीड्स एक्सपीरियंस्ड लीडरशिप. फॉर मोर देन 40 ईयर्स रॉड विलोर हैज हेल्प्ड बिल्ड फ्रिस्को, क्रिएटिंग जॉब्स, सपोर्टिंग लोकल बिजनेसेस, इंप्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टिंग इन द कम्युनिटी ही कॉल्स होम. तो रॉड जो है वो बिलीव करते हैं कि सेफर नेबरहुड होना चाहिए, स्मार्टर डेवलपमेंट, स्ट्रॉन्गर पब्लिक सर्विसेज और फैमिली वैल्यूज को प्रोटेक्ट करना चाहिए. एंड दिस इज वॉट इज स्पेशल अबाउट फ्रिस्को एज वेल. वोट रॉड विलोर फॉर फ्रिस्को मेयर बिकॉज द नेक्स्ट 4 years विल डिफाइन द नेक्स्ट 40 फॉर फ्रिस्को. एंड दैट्स ऑल द टाइम आई हैव विद यू. दिस इज आरजे मी टू साइनिंग ऑफ.
1: ब्यूटीफुल होम रवि, मिलियन डॉलर्स, वाओ.
2: थैंक यू. वेल, सना एंड मी जस्ट गॉट लकी एज हुसैन पंजवानी हेल्प्ड अस विद द परचेज ऑफ आवर फर्स्ट होम. ही प्रैक्टिकली वॉक्ड अस थ्रू द एंटायर प्रोसेस. एवर सिंस, विद हिज गाइडेंस एंड सपोर्ट, आई हैव बिकम अ प्रीटी सैवी रियल estate investor myself. Unka radio show suna tha and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, aur ab ye million dollar property bhi.
3: Hi, this is Hussain Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
4: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
5: Mark Hill is the leader Frisco needs to move forward together. As a former school board president, Mark has a proven record of integrity, fiscal responsibility and bringing people together. He values the vibrant contributions of our Asian and Indian communities, recognizing that our strength lies in our diversity and collaboration. Mark rejects divisive rhetoric, focusing instead on smart growth, public safety and ensuring every voice is heard. For steady, experienced leadership that unites our city, vote for Mark Hill for mayor. Let's build a stronger Frisco together.
6: Paid for by Mark Hill for mayor.
7: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
8: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
7: Kya matlab?
8: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
7: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
8: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
7: Ab to karna hi padega, madam.
9: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
10: Heere moti maino चाहूं।
11: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर. तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर. चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट. लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग.
12: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं. क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता. जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का.
13: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा. लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
14: विजिट psychicramnath.com. कॉल 4693474401. प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध.
15: सुनीता, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
16: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है.
15: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है.
16: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है.
14: Introducing Lumity Learning Center, Frisco Prosper or McKinney ISD aligned curriculum that doesn't just match, it exceeds. Personalized math or English plans, certified teachers, continuous feedback, on-demand support aur har bacche ke liye competitive edge. Try Lumity, you'll see the difference. Kids ages 5 to 13, Coit and Panther Creek in Frisco. Call 972-666-1181. Mention Fun Asia, get $100 off your first month.
17: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
18: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
19: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
20: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument, or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas. Because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA. Your talent, your spotlight.
21: Hi, this is Kunal Kapoor and you're listening to Fun Asia Radio.

हाँ जी हाँ जी, मैं ही हूँ आरजे सिम्मी, और आप सुन रहे हैं फनेशिया रेडियो 104.9 एफएम। ये है आपका अपना फेवरेट शो आफ्टरनून अड्डा, और आज का जो टॉपिक है ना वो काफी इंटरेस्टिंग है। हम बात करेंगे उन देसी हैबिट्स के बारे में जो यूएस आके भी नहीं छूट रही, मतलब छुटाए नहीं छूट रही। भाई साहब, हम देसी लोग ना यूएस आ गए हैं, डॉलर्स में कमा रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं, जीपीएस के बिना कहीं जा नहीं पा रहे हैं, लेकिन कुछ आदतें ऐसी हैं जो पासपोर्ट चेंज होने के बाद भी नहीं बदल रही। क्या करें, अब हम तो ऐसे ही हैं भैया। आज हम बात करेंगे उन देसी हैबिट्स के बारे में जो हर एशियन फैमिली यूएस में रह के भी कंटिन्यू करती है। क्या आपका भी टीवी का रिमोट प्लास्टिक कवर में रहता है? आइसक्रीम का डब्बा खोलने पे उसमें धनिया मिलता है? होटल से एक्स्ट्रा टूथपेस्ट, शैम्पू, शैशेज, नैपकिन्स वगैरह क्या आप भी घर लेके आ जा रहे क्या? आपकी ऐसी कौन सी देसी हैबिट है जो आपसे भी नहीं छूट रही, जो आप अभी भी यूएस में आके कंटिन्यू कर रहे हो? बताओ मुझे, कॉल कीजिए एट 9722355555 पे।

आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफी इंटरेस्टिंग है। आज हम बात कर रहे हैं उन देसी हैबिट्स के बारे में जो हमने यूएस में आके भी नहीं छोड़ी है, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं और बहुत मजा आ रहा है। अभी अभी हमें कॉल आया था सुल्तान रजानी जी का, उन्होंने मेंशन किया बहुत इंटरेस्टिंग बात कि जो टूथपेस्ट होता है ना, हम उसको तब तक बेलन से निचोड़ते हैं जब तक हमें ना लगे कि हाँ भैया अब पैसा वसूल हो चुका है। और डब्बे पे डब्बे कलेक्ट कर रहे हैं, जो रेस्टोरेंट्स वगैरह से भी जो टेक अवे डब्बे आते हैं उनको भी हम घर ला रहे, हमसे नहीं फेंका जाता यार, हम तो बहुत यू नो एनवायरमेंट फ्रेंडली है। और ये सब करके हमें सुकून मिलता है, मतलब ऐसा लगता है कि लाइफ इज लवली। और ऐसी ही एक और हैबिट है अपने प्लास्टिक बैग्स को ट्रेजर की तरह कलेक्ट करने की। मतलब अमेरिकन जो है यूजुअली जो स्टोर्स में प्लास्टिक बैग मिलते हैं वो उसको या तो रिसाइकिल कर देते हैं या फिर फेंक देते हैं, लेकिन हम देसी लोग हम एक प्लास्टिक बैग के अंदर 10 और प्लास्टिक बैग डाल के किचन के सेफ कोने में स्टोर कर देते हैं। लिटरली प्लास्टिक बैग का म्यूजियम होता है हमारे किचन में। और आपको ऐसी कौन सी देसी हैबिट्स याद आ रही है जो आप करते हो छोड़ नहीं पा रहे हो, एंड यू नो यू लाइक टू मेंशन इट टू मी, देन कॉल मी एट 972-235-5555 पे।

आप सुन रहे हैं फनेशियर रेडियो 104.9 एफएम। मैं हूँ आरजे सिमी और आज हम बात कर रहे हैं उन देसी हैबिट्स के बारे में जो कि छुटाए नहीं छूट रही, मतलब अब यूएस में भी आके उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। और अभी अभी हमें कॉल आया था हितेश जी का और उन्होंने बहुत ही प्यारी सी एक सेंटेंस बोला है। उन्होंने कहा कि वो अभी तक अपनी फैमिली और अपने पेरेंट्स का ध्यान रख रहे हैं, विच इज़ अ देसी हैबिट एंड इट रियली टच्ड मी, यू नो, कि ये भी तो कहीं ना कहीं एक देसी हैबिट ही है कि हम जो है वेस्टर्न कल्चर से ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं हुए हैं। हम आज भी अपनी फैमिली के लिए खड़े रहना चाहते हैं, बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, सब के लिए। और एक और ऐसी देसी हैबिट है कि जो घर का एक अच्छा क्रॉकरी सेट होता है ना, डिनर सेट, जो थोड़ा लग्जरी वाली फील देता है, वो हमेशा हम जो है उसको गेस्ट के लिए रखते हैं, मतलब बचा के, कि ये इसमें तो हम रेगुलरली खाना नहीं खा सकते, जब कोई गेस्ट आएंगे तब वो क्रॉकरी सेट, पूरा डिनर सेट वो निकलेगा और अतिथि देवो भव कहते हुए हम रॉयल ट्रीटमेंट देना चाहते हैं अपने गेस्ट को। और आपसे मैं और भी जानना चाहूँगी कि आपका भी दिमाग में आपके कुछ आ रहा है क्या कि कौन सी ऐसी देसी हैबिट है जो आपसे छुटाई नहीं छूट रही?

0: ट्यून सुनते ही ब्रांड क्लिक कर गया ना, जस्ट लाइक दैट. When it comes to taxes, only one name pops up, AG FinTax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Granthi Tax Pros, an associate of AG FinTax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna, that's our commitment. So is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com. Granthi Tax Pros, powered by AG FinTax. Plan today, profit tomorrow.
1: Same order again? Same pizza, same taste, same story. Time to upgrade your cravings, Dallas, because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican inspired menu, and trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
2: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
3: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
4: हाँ.
3: घर रिलोकेट करनी है?
4: हाँ.
3: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
4: हाँ भाई हाँ.
3: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर.
5: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज. SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन. विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
1: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं. लेवल 1, मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत. लेवल 2, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट. लेवल 3, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड. और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस.
6: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड PGBT. तंदूरी फ्लेम, नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स. क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे.
7: कौन है ये लोग, कहां से आते हैं?
8: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं.

आप सुन रहे हैं फनेशियर रेडियो 104.9 एफएम। स्टूडियो में वक्त हो चुका है 1:07 और मैं हूँ आरजे सिमी और ये शो है आफ्टरनून अड्डा। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बातें कर रहे हैं कि वैसी कौन सी देसी हैबिट्स हैं जो कि यूएस आके भी नहीं छूट रही। बहुत सारे लिसनर्स का हमें कॉल आ रहा है जिसमें से सुनीता जी ने कहा कि जो ड्राई क्लीनिंग के हैंगर होते हैं ना वो भी जो है हम कंटिन्यू करते हैं, मतलब वो उसको भी यूटिलाइज करते हैं, उसको फेंकते नहीं है। और जो डब्बे लाते हैं हम रेस्टोरेंट से वो भी हम रखते हैं, उसको बाद में यूटिलाइज कर लेंगे। ये सोच के तो काफी किफायती, मैं कहूँ काफी किफायती देसी हैबिट्स हैं ये। और शर्मा जी का भी कॉल आया था और उन्होंने बोला कि एंटरटेनमेंट के लिए हम कोई इंग्लिश चैनल वगैरह या इंग्लिश रेडियो नहीं सुन रहे होते हैं, हम देसी रेडियो ही सुनते हैं। तो ये तो हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट हो गया भाई, थैंक यू सो मच फनेशिया से जुड़े रहने के लिए। और एक और हैबिट है वुड से कि जो एक गोल्डन रूल है ना देसी घरों का कि शूज डोर पे ही उतारना है, अंदर लेके नहीं जाना है। अगर आपने अंदर ले गए तब तो मतलब कयामत ही आ जाएगी, समझो आपको मम्मी से बहुत डांट पड़ने वाली है। खैर, देसी हैबिट सिर्फ आदतें नहीं होती, ये हमारी पहचान होती हैं, चाहे हम यूएस में हो, इंडिया में हो, या फिर किसी भी अदर लाइक पाकिस्तान से में हो, नेपाल में है, कोई भी एशियन कंट्री से हो। कुछ चीज़ें दिल से जुड़ी होती हैं और वही हमें घर जैसा एहसास दिलाती हैं। तो अब इस नोट पे हम इस सेगमेंट को एंड कर रहे हैं। अगले सेगमेंट में मैं लेके आ रही हूँ आपके लिए गिव अवे, सो स्टे ट्यून्ड। और जो अगला सॉन्ग है वो सफी आपके लिए है।

अब जरा सी जगह जो है गिव अवे राउंड को भी दे दिया जाए। तैयार हो जाइए आज के गिव अवे राउंड के लिए। अगर आप जीतते हैं ये गिव अवे राउंड तो आपको मिलेगा सैल्स नैशविल हॉट चिकन की तरफ से 3 जंबो टेंडर्स फ्री फ्री फ्री। जी हाँ, रिचर्डसन लोकेशन में है ये। और आपके लिए सवाल बस मैं यूं रेडी करती हूँ। आज एक बहुत खास अदाकारा एक्ट्रेस का बर्थडे है सोनाक्षी सिन्हा जी का, तो मैं जो है क्वेश्चन उनके अराउंड ही पूछने वाली हूँ। तैयार रहिएगा। बहुत ही आसान सा सवाल है कि उनकी डेब्यू मूवी का नाम बताना है आपको, ठीक है? अगर आपको जवाब पता है तो आप कॉल कीजिए 9722355555 पे। सोनाक्षी सिन्हा का डेब्यू मूवी नेम पूछा है मैंने। ओके, ऑल द बेस्ट।

दोस्तों हमें अपना लकी विनर मिल चुका है। जी हाँ, हमने आपसे गिव अवे राउंड का सवाल पूछा था कि सोनाक्षी सिन्हा जी, जिनका कि आज हैप्पी बर्थडे भी है, उनकी डेब्यू मूवी कौन सी थी, और सही जवाब है हुड़ हुड़ दबंग दबंग। जी हाँ, दबंग मूवी, और उन्होंने काफ़ी यू नो पॉपुलैरिटी बटोरी थी इस मूवी से। और इस राउंड के विजेता हैं श्री हरि। कॉन्ग्रेचुलेशन श्री हरि, यू आर द लकी विनर फॉर टुडे। थैंक यू टू अदर्स ऑल्सो हु पार्टिसिपेटेड। आप सबके आंसर सही थे, और अगर आप सेल्स नैशविल हॉट चिकन का गिव अवे नहीं जीत पाए भी तो कोई बात नहीं, वो लेके आए हैं एक और चैलेंज विच इज इन्फर्नो स्पाइस चैलेंज। डील ये है कि आपको 10 मिनट मिलेंगे, 3 एक्स्ट्रा हॉट जंबो टेंडर्स खाने हैं आपको विथ ओनली 1 कप ऑफ मिल्क। टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि कोई डिपिंग अलाउड नहीं है, और प्राइस जो है ना वो तो आई मीन वर्थ द पेन है भाई साहब। मतलब अगर आपने एक जंबो टेंडर खा लिया विद इन द टाइम फ्रेम तो आपको मिलता है फ्री सैंडविच फॉर 7 डेज, और अगर आपने 2 जंबो टेंडर्स खा लिए तो आपको मिलता है फ्री सैंडविच फॉर 15 डेज। और अगर आप वो महानुभाव निकले जिन्होंने सारे ही इन्फर्नो जंबो टेंडर्स तीनों के तीनों खा लिए तो आप जीते हैं ग्रैंड प्राइज जो कि है फ्री सैंडविच एवरीडे फॉर 30 डेज। और ये इन्फर्नो स्पाइस चैलेंज हो रहा है एट सैल्स नैशविल हॉट चिकन रिचर्डसन लोकेशन। डेट है जून 6th 4 PM ऑन सैटरडे। तो तैयार हो जाइए और खुद को रजिस्टर कीजिए फॉर दिस अमेजिंग एक्सपीरियंस एंड चैलेंज, और आप फन एशिया के थ्रू भी रजिस्टर कर सकते हैं। मीनवाइल सोनाक्षी सिन्हा के बर्थडे पे उनकी डेब्यू मूवी से ये प्यारा सा गाना एंजॉय कीजिए।

0: जाना।
1: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़ावे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM to 8 PM, वॉक इन एनी टाइम, 9191 काइज़ावे, स्वीट 205, फ्रिस्को।
2: Attention passengers, flight Punjab 001 to Chandigarh Wale Irving is now boarding. Destination, real Punjabi flavor.
3: Arey yaar, Dallas mein Punjab?
4: Bilkul, Chandigarh Wale, jahan butter chicken bhi asli aur naan bhi tandoor se garma garam.
5: From buttery curries and fresh naan to street style Punjabi favorites, every bite takes you straight to Punjab. Shadi ho, party ho, ya corporate event, Chandigarh Wale brings live Punjabi catering straight to your celebration. Proudly awarded Best of Dallas for Indian food by D Magazine. Skip the flight and take the shortcut to Punjab. Chandigarh Wale, Irving, where Dallas meets Punjab.
6: It's true, hum apni sadbuddhi se bahut si problems solve kar sakte hain. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwarji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwarji, 945-527-0897, or visit astrologerishwar.com.
7: Shaadi byah ka koi mauka ho ya koi tyohar, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
8: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
9: हेलो, एक्सीडेंट क्लेम? ओके, नेम ऑफ द लॉयर?
10: उमर ख्वाजा।
11: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम, तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
12: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you are dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
13: Hey everybody, this is Asim and you're listening to the rocking music of my film only on Fun Asia Radio.

वैसे मेरी भी बहुत सारी सिफारिशें हैं, मतलब जो मैं करना चाहती हूँ, जो भी सुन रहा है उनसे, चांद से, तारों से, किसी से भी। और फिलहाल तो मेरी सिफारिश ये है कि थोड़ी गर्मी को कम किया जाए, मतलब इतनी गर्मी, इतना डिहाइड्रेशन फील हो रहा है, क्या बताऊँ। और बाकी आज के वेदर के बारे में बता देती हूँ कि गर्मी अपने पीक पे है, दोपहर तक टेम्परेचर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास पहुँच सकता है और ह्यूमिडिटी की वजह से और भी ज़्यादा गर्मी महसूस हो सकती है। शाम के वक्त कुछ जगहों पे गरज चमक के साथ बारिश की बूंदाबांदें हो सकती हैं, चांसेस हैं जी, और इसलिए अम्ब्रेला हैंडी रखे और पानी पीना तो बिल्कुल मत भूलिए। और ये जो वेदर फोरकास्ट था, दिस वॉज ब्रॉट टू यू बाई मलाबार गोल्ड्स एंड डायमंड्स। मैं हूँ आरजे सिमी, आप सुन रहे हैं फन एशिया रेडियो एंड दिस इज योर आफ्टरनून अड्डा। लेके आई हूँ अभी आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस, गिव अवेज, बहुत सारी बातें भी है करने को, तो स्टे ट्यून एंड कीप लिसनिंग टू गुड म्यूजिक।

अगर कोई चाहता है कि मैं हंसती रहूं, खुश रहूं, मुस्कुराऊं, तो बस अच्छा सा कोई खाना खिला देना, उतना ही काफी है। लंच का टाइम हो रहा है, खाने पीने की बातें हो रही है, और मुझे तो याद आ रहा है पेस्ट्री ईटरी। जी हाँ, वहाँ के सिजलिंग कबाब्स और फ्लेवर फूड चाट जो है ना, मतलब इतना अच्छा फ्यूजन है ये फ्लेवर का, फायर का। काफी टेस्टी खाना मिलता है वहाँ पे, और रिफ्रेशिंग मॉकटेल्स भी मिलते हैं। अगर आप अभी तक वहाँ जा नहीं पाए हैं तो आप सीरियसली लाइफ में कुछ ना कुछ तो मिस कर रहे हो, और अगर आप अच्छा खाना मिस कर रहे हैं तो दुख की बात है। आई मीन, यहाँ बोल्ड इंडियन स्ट्रीट फूड जो है काफ़ी अच्छा मिलता है, मॉडर्न फ्लेवर के साथ मिलता है। तो आप प्लान करें जाने का, ब्रंच के लिए, लंच के लिए, डिनर के लिए भी जा सकते हैं, और डेट नाइट के लिए भी जा सकते हैं। पेस्ट्री लाता है परफेक्ट मिक्स एनर्जी का, वाइब्रेंट वाइब्स का, फ्लेवर का, कल्चर का, खाने का, सब कुछ। डू विजिट पेस्ट्री ईटरी एट हब 121। और अगर आपको इसके मेन्यू और दूसरे डिटेल्स चाहिए तो आप उनके वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, विच इज पेस्ट्री ईटरी .com।

You were listening to Mashuka from the new movie release which is Cocktail 2 अभी आने ही वाली है और मैं तो खासा excited हूँ. ये song काफी popular हो रहा है social media में हर जगह और जैसे आपने इस song के साथ connect किया ना वैसे ही connecting America के साथ भी connect कर ले अगर आपको अपने business expense को powerful income stream में तब्दील करना है तो. ये लेके आए हैं insurance based strategy design किया गया है आपके bottom line को improve करने के लिए और सिर्फ इतना ही नहीं ये होम ओनर्स को भी हेल्प करते हैं टू पे ऑफ देयर मॉर्टगेजेस विद इन 10 ईयर्स और उससे भी कम टाइम में. तो आपको किस बात का इंतजार है अभी कॉल कीजिए जेम्स को एट 321-888-7345 या फिर आप उनके वेबसाइट पे भी जा सकते हैं विच इज कनेक्टिंग अमेरिका फाइनेंशियल्स डॉट कॉम. एंड दिस सॉन्ग इज डेडिकेटेड टू मरियम.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Frisco is growing fast, and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure, and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services, and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco mayor, because the next 4 years will define the next 40 Frisco.
3: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो।
4: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
5: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
6: वेट, इतना सब और प्राइस?
5: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
7: With over 25 years of lived experience, certified and accredited relationship coach, Aarti Vedula helps individuals, couples, parents and hundreds of happy clients break unconscious cycles using NLP, EFT, hypnosis and mindset reprogramming. Book your free clarity call today at 269-281-1099 or visit thrivewitharti.com. Mention Phanisha and get 50% off on your package. Thrive with Aarti. Helping you thrive from within.
8: Big achievements deserve unforgettable celebrations. Host your kids' graduation party at the Flavor Lounge in Frisco, where great food meets great memories. And if you want to host the party at your place, no worries. You can also order for catering services only. Fresh Tray Catering, custom menus for small or large gatherings. Everything in perfect style. Call now 469-712-3591 or visit theflavorlounge.com. The Flavor Lounge. You celebrate. Flavor hum sambhal lenge.
9: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
10: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
11: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
12: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
11: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
12: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया, ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस।
13: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
12: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
13: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
12: ये क्या होता
13: है? सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
14: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस, सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
15: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
7: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
16: Hi, this is Varun Sharma and you are listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.

आ गई आ गई आ गई आपने इतने प्यार से बुकरा के रो अजमा ही वे, तो मैं आ गई आपकी अपनी आरजे सिम्मी अपना शो लेके, विच इज आफ्टरनून अड्डा। और आप सुन रहे हैं फनीशर रेडियो 104.9 एफएम। स्टूडियो में हो गया है टाइम 2:10 और हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, विच इज द गिव अवे राउंड। और आज के गिव अवे राउंड को अगर आप जीतते हैं तो आपको मिलता है फन पिज्जा किचन की तरफ से $10 का गिफ्ट कार्ड। जी हाँ, तो तैयार हो जाइए। और आज का सवाल भी थोड़ा खास है, आज का डेट भी थोड़ा खास है, 2 जून है आज। तो मेरा सवाल ये है कि 2 जून की रोटी जो हम कहते हैं, जो फ्रेज है काफी पॉपुलर, वो किसको रेफर करता है, उससे क्या मीनिंग निकलता है। अगर आपको पता है तो आप मुझे फोन कीजिए 972-235-5555 पे।

अभी अभी हमने अपना गिव अवे राउंड को जो है क्लोज किया है। सवाल हमने आपसे आज के डेट के रिलेटेड पूछा था कि 2 जून की रोटी, ये जो फ्रेज है इसका क्या मतलब होता है, और काफी लोगों ने सही जवाब दिया है। इसका मतलब होता है कि दो वक्त का खाना, जो 2 स्क्वायर मील्स बोलते हैं ना हम इंग्लिश में, बिल्कुल वही मतलब होता है कि यार 2 जून की रोटी मिल जाए उतना ही काफी है जिंदगी में, और क्या चाहिए, कुछ एवरीथिंग इज मटेरियलिस्टिक। तो इस तरीके का यूसेज होता है इसके सेंटेंस में। और जो सही जवाब दिया है और आज की जो लकी विनर है वो है दूरे काजी जी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको मिलता है फन पिज्जा किचन की तरफ से $10 का गिफ्ट कार्ड। मैं अपने बाकी लिसनर्स को भी फन पिज्जा किचन के बारे में थोड़ा बता दूं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग रेस्टोरेंट है। यहाँ पे एक स्लाइस आपका इंतजार कर रहा है, हर स्लाइस ना बिल्कुल आपके लिए बना है। या तो अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको अचारी पनीर पिज्जा जरूर ट्राई करना चाहिए यहाँ का, क्योंकि उसका अचार ऐसा लगता है ना कि सॉफ्ट पनीर और स्पाइस मैजिक सब कुछ ऐसा मिक्स होके क्या फ्लेवर बनता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, अगर आप मीट पसंद करते हो, तो तंदूरी चिकन पिज्जा भी आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। प्योर स्मोकी परफेक्शन लेके आता है वो, स्ट्रेट फ्रॉम द तंदूर टू योर टेस्ट बड्स। सो अगर आपको थोड़ा बोल्ड पसंद है, बहुत ज़्यादा स्पाइस पसंद है, या फिर आपको माइल्ड ब्यूटीफुली बैलेंस खाना पसंद है, सब कुछ अवेलेबल है एट फन पिज्जा किचन। आप उनके वेबसाइट पे जा सकते हैं फॉर फर्दर डिटेल्स, विच इज़ funpizzakitchen.com।

बिल्कुल, मेरी यही कोशिश होती है कि मैं हंसाती रहूं और आप हंसते रहें, मैं बोलती रहूं आप सुनते रहें, लेकिन वक्त जो है अब बहुत कम बचा है हमारे पास। तो मेरा जो शो का टाइमिंग है वो खत्म हो रहा है। आफ्टरनून अड्डा शो था मेरा, आई होप आपको पसंद आया हो। और आज का जो ये सेगमेंट था, दिस वॉज ब्रॉट टू यू बाई ओमर ख्वाजा विथ हिज ट्रैफिक अपडेट्स अराउंड DFW एंड एक्सीडेंट रिपोर्ट। अगर आपको कार या ट्रक एक्सीडेंट या किसी स्लिप या फॉल इंसिडेंट के बारे में ओमर ख्वाजा जी से कंसल्ट करना है तो आप बेशक उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, और ये कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। पहला कंसल्टेशन जो है उनका कॉलिंग नंबर है 4693005046, या फिर आप उनके वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, विच इज attorneyomar.com। ये जो इनकी टीम है ना, अटर्नी ओमर ख्वाजा और उनकी टीम, वो इंश्योर करते हैं कि आपको कोई भी इंश्योरेंस कंपनी स्ट्रेस ना दे। मतलब बिल्कुल स्मूथ प्रोसेस हो डॉक्यूमेंटेशन का या फिर जो भी लीगैलिटीज हैं उसकी, और आपको तब तक पे नहीं करना है जब तक कि आप ये केस अपना जीत ना जाए। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मुझे इजाजत दीजिए, मैं आपको छोड़ के जा रही हूँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग के साथ। कल फिर मिलूंगी इसी समय 12:30 से 2:30 बजे तक। टिल देन कीप लिसनिंग टू फन एशिया 104.9 FM।

0: Kill is the leader Frisco needs to move forward together. As a former school board president, Mark has a proven record of integrity, fiscal responsibility, and bringing people together. He values the vibrant contributions of our Asian and Indian communities, recognizing that our strength lies in our diversity and collaboration. Mark rejects divisive rhetoric, focusing instead on smart growth, public safety, and ensuring every voice is heard. For steady, experienced leadership that unites our city, vote for Mark Hill for Mayor. Let's build a stronger Frisco together.
1: Paid for by Mark Hill for Mayor.
2: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
3: अरे सारे तो सेम है।
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो ये वाला।
3: ओह हाँ, ये तो अलग है।
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
5: Computer ji ka sawal ye hai, business owners ko loan lena mushkil kyun lagta hai? Option A, slow process. Option B, zyada paperwork. Option C, credit score ka concern. Ya option D, loan decline hone ka dar.
6: मैं एक्सपर्ट लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा।
5: कंप्यूटर जी, SBA लोन एक्सपर्ट से कनेक्ट किया जाए।
7: SBA लोन एक्सपर्ट्स ने बिजनेस लोन प्रोसेस बहुत ही आसान बना दिया है। नो टैक्स रिटर्न्स नीडेड टू अप्लाई और क्रेडिट पर हार्ड चेक भी नहीं, रिजल्ट्स सिर्फ 10 मिनट में।
4: बिजनेस लोन ऑप्शंस को क्लैरिटी से समझने के लिए कॉल करें 817-786-3338, 817-786-3338, The SBA लोन एक्सपर्ट्स, फैसला क्लैरिटी के साथ।
8: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
7: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
9: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
7: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
10: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
11: इन प्लेनो। एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग, और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
8: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
12: डिड यू नो लेसिक इज जस्ट वन ऑफ 6 वेज टू गेट रिड ऑफ ग्लासेस एंड कॉन्टैक्ट्स? आई एम डॉक्टर शहजाद बातलीवाला। Yes, your eye surgeon is Desi. I'm a fellowship-trained surgeon and founder of Visionary Eye in Plano. My philosophy is simple. Educate first. Once you understand your options, the decision becomes easy.
7: Call 214-972-2020 or visit LASIK-Plano.com. Mention FunAsia 2020 for a free consultation.
12: Visionary Eye. See clearly. Live boldly.
13: Taxes are not complicated or stressful with CPA Shalini Kodial on your side. You focus on growing your business while she handles the planning to mitigate your tax liability. She's honest, transparent and accountable, ensuring your business stays fully IRS compliant. Unlike many other CPAs who meet just once a year, Shalini meets with you every quarter. Call 281-760-5573 today or visit the website www.skodialcpa.com.
14: भूख लगी
15: है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
16: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 ईटरी। ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
4: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 मैकिनी।
17: Hi, I'm Abhishek Bachchan and you're listening to Funasia Radio. Thank you all the listeners for always being there, watching our films. Thank you, Funasia Radio, for spreading the word.

A very good afternoon to the listeners of 104.9 FM Fun Asia Radio. Thank you so much for tuning in. आप सुन रहे हैं मेरा और अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन. जी हाँ, ये है 104.9 FM और शो आपकी पसंद का मंडे टू फ्राइडे लेकर आती हूँ 2:30 से 5 तक और रहती हूँ आपके साथ विद एवरी डे अ न्यू फ्लेवर. और क्या फ्लेवर है जी? फ्लेवर होता है हर रोज मुख्तलिफ, यानी के आज का फ्लेवर है बॉलीवुड स्पॉटलाइट. बॉलीवुड स्पॉटलाइट में मैं स्पॉटलाइट डालती हूं एक ऐसे स्टार पे जिन्होंने अपने काम से एक ऐसा नाम और मुकाम बनाया और हमें ऐसे गाने दिए कुछ बॉलीवुड में जो हम आज तक अभी तक हर रोज चेरिश करते हैं, हमारी मेमोरीज में वो गाने रहते हैं. एंड दैट्स वेयर द स्पॉटलाइट शेड्स. और आज की जो स्पॉटलाइट हमने डाली है, जो ट्यूजडे को मैं लेके आई हूं आपके लिए, अभी 2:30 से अराउंड 4:15 तक उन्हीं के बनाए हुए गाने सुनेंगे, क्योंकि ना ये सिंगर हैं ना ये एक्टर हैं. कोशिश करी थी इन्होंने बट नहीं. ना ये सिंगर हैं ना ये एक्टर हैं ना ये गाना गाते हैं ना ये कंपोज करते हैं. ये हैं फिल्म डायरेक्टर और ऐसी ऐसी फिल्में बनाते हैं कि मैं और आप उनको सालों तक याद रखते हैं. दिस इज नन अदर देन आदित्य चोपड़ा. वेलकम टू बॉलीवुड स्पॉटलाइट राइट हियर ऑन योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण.

बॉलीवुड स्पॉटलाइट में आज स्पॉटलाइट डली है जी आदित्य चोपड़ा पे. तो आप जानते हैं सबसे पहले तो ये कि एक एपिसोड विल नेवर बी एबल टू डू जस्टिस टू आदित्य चोपड़ा, द वर्क दैट ही हैज डन एज अ डायरेक्टर, एज अ प्रोड्यूसर, एज अ को डायरेक्टर, इवन एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर जो उन्होंने अपने करियर का आगाज किया, उसके बारे में वो सारी बात करेंगे. लेकिन शायद हमें आदित्य चोपड़ा बॉलीवुड स्पॉटलाइट आदित्य चोपड़ा एपिसोड 1 और एपिसोड 2 दो हफ्ते इनके बारे में बात करनी होगी एवरी ट्यूजडे. तो आज मैं आपके लिए जितने अच्छे अच्छे गाने उनके प्ले कर सकती हूँ कोशिश मेरी पूरी जारी है. आदित्य चोपड़ा 21 May 1971 इज हिज डेट ऑफ बर्थ. इंडियन फिल्म डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, एग्जेक्टिव स्टूडियो एग्जेक्टिव हैं जिन्होंने हिंदी सिनेमा के लिए मेजरली काम किया है. चेयरमैन हैं ऑफ इंडियाज मल्टीनेशनल फिल्म मीडिया एंड एंटरटेनमेंट यानी कि यश राज फिल्म YRF. जो भी आपको जहां पर भी YRF का नाम नजर आता है वो डेफिनेटली यश चोपड़ा के बैनर के अंडर काम करता है. द फिल्म दैट ही हैज प्रोड्यूस्ड कुछ बेहतरीन बॉलीवुड की फिल्में आदित्य चोपड़ा ने प्रोड्यूस की हैं, कुछ बेहतरीन फिल्में डायरेक्ट की हैं जो आज तक हिस्ट्री जिनकी जैसे कहते हैं ना बन जाती है. ये वो हिस्ट्री वाली फिल्में हैं जिनमें पहली फिल्म जो आदित्य चोपड़ा ने डायरेक्ट की थी वो थी जी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जिसका ये गाना आप सुन रहे थे. ना सिर्फ ये कि उन्होंने ये मूवी डायरेक्ट की थी बल्कि ही वॉज ऑल्सो द राइटर ऑफ दिस फिल्म. इससे पहले उनकी जर्नी क्या रही, 4-5 फिल्में उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर किया, वो जर्नी आपके साथ शेयर करती रहूंगी. लेकिन आगे चलते चलते अगली फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के बाद जो अगली फिल्म उन्होंने डायरेक्ट की थी वो थी मोहब्बतें, अनदर कल्ट क्लासिक, एंड दिस वन इज वन ऑफ माय फेवरेट्स.

मोहब्बतें फिल्म से सुन रहे थे आप ये गाना। ना सिर्फ ये कि आदित्य चोपड़ा ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया, लिखा भी, और साथ ही साथ इसके एसोसिएट प्रोड्यूसर भी थे। हमने स्पॉटलाइट डाली है बॉलीवुड स्पॉटलाइट में आज, राइट हियर ऑन सुनहरी किरण। वी आर टॉकिंग अबाउट आदित्य चोपड़ा, सो मेनी थिंग्स दैट ही हैज डन, सच ब्यूटिफुल म्यूजिक दैट ही हैज क्रिएटेड फॉर अस इन हिज मूवीज, एंड मी एंड यू टुगेदर आर गोइंग टू एंजॉय दैट म्यूजिक राइट हियर ऑन सुनहरी किरण। आगे बढ़ते हुए आपको बताऊं जी कि अगर आपका कोई इवेंट आ रहा है, जैसे कि एनिवर्सरी या फिर एंगेजमेंट या फिर कोई वेडिंग सेलिब्रेशन, या आपने कोई गिफ्ट देना है, ज्वेलरी खरीदनी है अपने लव्ड वन के लिए या अपने आप के लिए, जस्ट वांट टू पैम्पर योरसेल्फ, तो मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स इज द प्लेस टू गो। दे आर लोकेटेड ऑन प्रेस्टन रोड इन फ्रिस्को, और आपके लिए स्टनिंग डायमंड ज्वेलरी कलेक्शन यहां पर मौजूद है, टाइमलेस, एलिगेंट एंड एब्सोल्यूटली डायनामिक, ब्यूटिफुल रिंग्स, इयररिंग्स, डाजलिंग नेकलेसेस, कंटेम्पररी डायमंड स्टाइल्स, मतलब आप ये कह लीजिए कि कोई भी आपका इवेंट है वो बेहतरीन उसके लिए एक ज्वेलरी आप यहां से खरीद सकते हैं, पीस एक यहां से खरीद सकते हैं। तो जरूर विजिट कीजिए मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, दे आर लोकेटेड इन फ्रिस्को, एंड एक्सपीरियंस द अनमैच क्राफ्ट्समैनशिप एंड ब्रिलियंस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब उनकी ऐप भी अवेलेबल है जहां पे आप जाके उनका कैटलॉग चेकआउट कर सकते हैं, एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट दे आर ऑफरिंग, एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन देयर वेबसाइट, ऑन देयर ऐप। यू मस्ट डाउनलोड दैट ऐप, अपने अपने ऐप स्टोर्स में जाइए और मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए फॉर द लेटेस्ट कलेक्शंस अपडेट्स एंड डिटेल्स। अच्छा जी, ये तो हुई है बात, और बात कर रहे थे कि आदित्य चोपड़ा ने अपने करियर का आगाज किया एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। 1989 में उन्होंने अपने फादर को असिस्ट किया इन डायरेक्टिंग द मूवी चांदनी, और उसके बाद 1991 में ही वंस अगेन असिस्टेड हिज फादर इन डायरेक्टिंग लम्हे। और आप जानते ही हैं कि चांदनी हो या लम्हे हो, दोनों ही कल्ट क्लासिक्स थी। तो चलिए फिर लम्हे मूवी से सुनते हैं ये गाना।

0: टेकन फ्रॉम द मूवी डर सुन रहे थे आप ये गाना. और इस मूवी को भी आदित्य चोपड़ा ने एसोसिएट डायरेक्टर थे इस मूवी के अलॉन्ग विद यश चोपड़ा जी. तो ये चंद मूवीज जो हैं चांदनी और लम्हे इन्होंने एसोसिएट डायरेक्टर एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया. आईना फिल्म अगर आपको याद हो जूही चावला और जैकी श्रॉफ की उसमें ही वॉज द असिस्टेंट डायरेक्टर इज वेल. डर तक पहुँचते पहुँचते ये एसोसिएट डायरेक्टर बन गए थे. उसके बीच में इन्होंने एक मूवी परंपरा पे एज अ एसोसिएट प्रोड्यूसर और स्क्रीन प्ले राइटर के तौर पे काम किया. और अपनी पहली मूवी व्हेन ही वाज रेडी आफ्टर लॉन्ग काइंड ऑफ आप कह लीजिए 89 से लेके 95 तक, तो अराउंड 5 साल जब तैयार हो गए तो फिर बनाई दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जो आज तक चल रही है थिएटर्स में. आई विल सी यू आफ्टर द ब्रेक.
1: दिस इज द फन एशिया नेटवर्क. यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 FM KZMP 104.9 FM HD1 Pilot Point Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2 Sanger Texas. Official tax and finance partner AG FinTax. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner. The law offices of Omar Khwaja.

0: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy. You need strength. Attorney Omar Khawaja, the official injury partner of Funasia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Omar Khawaja, your legal lifeline.
1: कहते हैं अयोध्या में एक रसोई थी, सीता की रसोई, जहां माँ सीता अन्नपूर्णा के रूप में सिर्फ भोजन नहीं, प्रेम और सेवा परोसती थी। और अब वही पवित्र स्वाद, वही भाव श्री अयोध्या भवन में, ऑपोजिट टू द कार्य सिद्धि हनुमान टेंपल इन फ्रिस्को।
2: फर्स्ट एवर ऑथेंटिक सात्विक फ्लेवर्स विद नो अनियन एंड गार्लिक,
1: वेयर एवरी डिवाइन फूड इज एन ऑफरिंग। ओपन डेली फ्रॉम 7 AM, लोकेटेड एट इंडिपेंडेंस एंड एल्डोराडो। श्री अयोध्या भवन, वेयर टेस्ट मीट्स डिविनिटी।
3: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
4: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है।
3: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
4: वेट, व्हाट?
5: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है।
6: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग।
5: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन।
7: सफर खूबसूरत है मंजिल से भी।
8: अरे भाई, वही तो नहीं होता हर बार हर ट्रिप के इतने झंझट।
9: बिकॉज यू डोंट ट्रैवल विद लॉसिन। चाहे शादी के लिए इंडिया जाना हो, दुबई की लग्जरी शॉपिंग या यूरोप की ड्रीमी वेकेशन फोटोज, एक परफेक्ट ट्रिप के पीछे होता है एक परफेक्ट ट्रैवल पार्टनर, लॉसिन ट्रैवल। फॉर नियरली 30 इयर्स, लॉसिन ट्रैवल हैज बीन हेल्पिंग फैमिलीज प्लान स्ट्रेस फ्री इंटरनेशनल ट्रिप्स विद द बेस्ट एयरफेयर्स, वेकेशन पैकेजेस, क्रूजेस एंड कस्टमाइज्ड ट्रैवल सॉल्यूशंस। लॉसिन ट्रैवल मेक्स एवरी जर्नी स्मूथ, अफोर्डेबल एंड टेंशन फ्री। कॉल नाउ 214-631-2458 or visit lawsontravel.com.
10: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
11: Calculating route. Rerouting.
10: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले grocery store में जाना है।
11: Location upgraded. Now heading to India Bazaar Fort Worth.
10: क्यों?
11: क्योंकि Fort Worth, Keller, Hazlitt और Hearst के smart लोग जानते हैं। Daily groceries हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत। Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
10: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो।
12: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ। स्विच द रूट,
11: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड।
13: ट्यून सुनते ही ब्रांड क्लिक कर गया ना, जस्ट लाइक दैट। When it comes to taxes, only one name pops up, AG FinTax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Granthi Tax Pros, an associate of AG FinTax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna, that's our commitment. So is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com. Granthi Tax Pros, powered by AG FinTax. Plan today, profit tomorrow.
14: Abhe jaldi bol, kal subah Panvel nikalna hai.
15: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फनेशिया रेडियो।
16: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फनेशिया 104.9 FM।

This part of our show is brought to you by AG Fintax, one of the fastest growing tax firms in the US. जी हाँ जी, offer करते हैं innovative financial services with untapped potential. Individual अपने लिए कर रहे हैं आप, personal या फिर business owner हैं आप, हर तरह का आपका solution जो है वो AG Fintax के पास मौजूद है. They are trusted, efficient and they get you ready for your future. So आपके जहन में कोई भी सवाल है तो उस सवाल का जवाब जानना बहुत जरूरी है. उसके लिए कॉल कीजिए AG Fintax को 469-942-9888 is that number, or you can visit their website agfintax.com. And the views and opinions that are expressed in these live announcements as well as the interviews that we do here on our show are paid advertisements and does not necessarily represent the official views of the radio station nor the RJ. ये तो हुई आपके लिए ये बात. और अब हम वापस आते हैं बॉलीवुड स्पॉटलाइट पे, जो आज हमने डाली है एक ऐसे स्टार पे जिन्होंने हमें कुछ बेहतरीन फिल्में दी. एज अ डायरेक्टर, एज अ प्रोड्यूसर, एज अ राइटर ऑल्सो, स्क्रीन प्ले भी किया उन्होंने. दिस इज नन अदर देन आदित्य चोपड़ा. ये जो आप गाना सुन रहे थे, दैट इज टेकन फ्रॉम द मूवी मेरे यार की शादी है, जिसमें उन्होंने एसोसिएट प्रोड्यूसर के तौर पे काम किया. तो चार बड़ी बड़ी फिल्मों में उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर और एक में एसोसिएट डायरेक्टर के तौर पे काम किया. फिर उन्होंने अपनी पहली फिल्म बनाई दिलवाले दुल्हनिया. देन ही वर्कड एज एन एसोसिएट डायरेक्टर वंस अगेन इन दिल तो पागल है. और उसके बाद मोहब्बतें बनाई उन्होंने, जो कि पूरी अपनी एज अ मेन फुल फ्लेज जैसे कह लीजिए डायरेक्टर के तौर पे उन्होंने बनाई. तो उसके बाद जो है मेरे यार की शादी है और फिर मुझसे दोस्ती करोगी. वंस अगेन ही वाज़ द एसोसिएट डायरेक्टर. और उसके बाद एसोसिएट डायरेक्टर का ऑलमोस्ट सिलसिला खत्म हुआ एंड ही बिकेम अ फुल डायरेक्टर एंड मैनी मूवीज दैट ही मेड आफ्टर दैट, जैसे कि हम तुम, वीर जारा, धूम, बंटी और बबली, सलाम नमस्ते, द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन. जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे और इन फिल्मों के मैं गाने लगाऊंगी, वैसे वैसे मैं आपके साथ इन फिल्मों के बारे में जरूर शेयर करूंगी. फिलहाल मैं जो गाना प्ले करना चाहती हूं आपके लिए, दैट इज टेकन फ्रॉम द मूवी दिल तो पागल है, जिसमें ही वाज द डायलॉग राइटर ऑफ द मूवी एज वेल एज एसोसिएट प्रोड्यूसर ऑफ दिल तो पागल है. दिस इज ढोलना.

दिल तो पागल है से सुन रहे थे आप। ये गाना एक बड़े ही अनोखे मोड़ पे आ चुकी थी फिल्म बाय द टाइम ये गाना मूवी में आया, और इसके बाद चीजें एब्सोल्युटली चेंज हो गई मेन लीड्स यानी कि शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित की लाइफ में। अच्छा जी, कुछ ऐसी फिल्में होती हैं जिनके गाने सुनो तो सारी कहानी ऐसा लगता है जैसे कोई स्क्रीन प्ले दिमाग के अंदर चल रहा है, और हर सीन आपको ऐसे उस जमाने में हमें रट्टा हुआ होता था फिल्मों का, क्या करें जी, एक फिल्म कितनी कितनी बार देखा करते थे और इतनी एंजॉयमेंट हुआ करती थी और एक्साइटमेंट और थ्रिल होता था उस मूवी को दोबारा दोबारा देखने का। एनीवेज, वी आर मूविंग ऑन। स्पॉटलाइट डाली है आज हमने आदित्य चोपड़ा पे, कुछ आउटस्टैंडिंग गाने उनकी मूवीज के आपके लिए प्ले कर रही हूँ। उससे पहले आपको बता दी चलूँ, इफ यू आर ऑन एन H1B F1 या फिर L1 वीजा या कोई और नॉन इमिग्रेंट वीजा है आपके पास और आप प्लान कर रहे हैं योर पाथ टू US परमानेंट रेजिडेंसी, देन द लॉ ऑफिसर्स ऑफ सीमा मेहता इज हेयर टू हेल्प यू। अटर्नी सीमा मेहता और इनकी एक्सपीरियंस टीम स्पेशलाइज करती है जी एक्सक्लूसिवली इन इमिग्रेशन लॉ, चाहे EB-5 हो, इन्वेस्टर वीजा, फैमिली या फिर एम्प्लॉयमेंट वीजा।

इज हेयर टू हेल्प यू. अटर्नी सीमा मेहता और इनकी एक्सपीरियंस टीम स्पेशलाइज करती है जी एक्सक्लूसिवली इन इमिग्रेशन लॉ, चाहे EB-5 हो, इन्वेस्टर वीजा, फैमिली या फिर एम्प्लॉयमेंट वीजा, PERM यानी कि परम लेबर सर्टिफिकेशन या फिर US सिटीजनशिप. अगर आपको किसी भी चीज में डिटेल्स मजीद चाहिए, खासतौर पर EB-5 इन्वेस्टर वीजा प्रोग्राम में अगर आप इंटरेस्टेड हैं और एनी अदर इमिग्रेशन वीजा प्रोग्राम, देन ड्रॉप देम इन ईमेल. दैट ईमेल आई डी इज info@seemamehtalawfirm.com. That is info@seemamehta, seemamehtalawfirm.com. This is the law offices of Seema Mehta, helping you take your immigration process conveniently and easily, one step at a time.

जी हाँ, हम तुम फिल्म जो कि 2004 में आई थी जी, इसके प्रोड्यूसर थे ये, और दिस वाज द फर्स्ट फिल्म जिसको आदित्य चोपड़ा ने प्रॉपरली प्रोड्यूस किया था, यानी कि ही वाज द, वो कहते हैं ना, फुल फ्लेज्ड प्रोड्यूसर थे और कोई बीच में शामिल नहीं था इस फिल्म की प्रोडक्शन में. एंड व्हाट अ पॉपुलर मूवी दिस वॉज. सैफ अली खान और रानी मुखर्जी की ये फिल्म जो कि बहुत ज़्यादा हिट हुई थी उस टाइम पे. हमने आज स्पॉटलाइट डाली है आदित्य चोपड़ा पे, आपको ऑन एंड ऑफ उनकी फिल्मों के बनाए हुए, उनकी फिल्मों के ऊपर मैं पिक्चराइज्ड कुछ खूबसूरत गाने सुना रही हूँ. अगला गाना जो मेरे पास लाइंड अप है, दैट इज टेकन फ्रॉम द मूवी धूम. क्या बात है जी, धूम की धूम, फिर धूम वन, वो धूम टू, फिर धूम थ्री, ये वो मूवी थी जिसके सीक्वल्स बने. बट मुझे, मेरी पसंदीदा वैसे धूम धूम टू थी, ऑल दो धूम वन वॉज रियली गुड, बट जब धूम टू आई तो मेरी लिस्ट से धूम वन नीचे चली गई और धूम टू ऊपर चली गई, बिकॉज आई एब्सोल्यूटली लव्ड लव्ड लव्ड द केमिस्ट्री ऑफ बिटवीन ऋतिक रोशन एंड ऐश्वर्या राय. लेकिन फिलहाल बात हो रही है धूम वन की, तो धूम वन के इस गाने से आगे बढ़ेंगे. दिस वॉज पिक्चराइज ऑन यस ईशा देओल.

आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण में बॉलीवुड स्पॉटलाइट में आदित्य चोपड़ा पे स्पॉटलाइट डालने का सिलसिला जारी है। बहुत सारे खूबसूरत गाने उनकी फिल्मों से आपके लिए प्ले कर रही हूँ। आप जानते हैं जी, बॉलीवुड स्पॉटलाइट मैं आपके लिए पिछले कई सालों से लेकर आ रही हूँ। पहले फ्राइडेज को लेकर आती थी, जब आपके लिए फाइव डेज यहाँ पे मौजूद नहीं होती थी, फ्राइडे के फ्राइडे आती थी, और अब जो है ट्यूजडेज को हमने बॉलीवुड स्पॉटलाइट को शिफ्ट किया आपकी पुरजोर फरमाइश पे कि बॉलीवुड स्पॉटलाइट खत्म नहीं करना है आपने। हर हफ्ते एक सितारे पे तो वो कहते हैं ना, रोशनी डालनी है। आज की रोशनी आदित्य चोपड़ा पे डाली है, और क्या गाने हैं जी। ये जो अगला गाना है, ये मेरा नहीं, आपका नहीं, तमाम लोगों का फेवरेट गाना है। एक ऐसी फिल्म जिसने हमें अंदर तक हिला दिया। दिस इज वीर ज़ारा।

0: जी हाँ, वीर ज़ारा से सुन रहे थे आप ये गाना. वंस अगेन वीर ज़ारा प्रोड्यूस की थी आदित्य चोपड़ा ने. और अब जो बहुत सारी फिल्में मैं आपके लिए प्ले करूंगी गाने, वो ऑलमोस्ट प्रोडक्शन के ही हैं, क्योंकि शुरू में डायरेक्ट तो की उन्होंने, लेकिन फिर वो प्रोडक्शन पे चले गए. एंड आदित्य चोपड़ा की बात हो रही है. और फिर उन्होंने बैक टू बैक बहुत सारी फिल्में प्रोड्यूस की. बहुत अरसे बाद उन्होंने एक और फिल्म डायरेक्ट की, विच वॉज रब ने बना दी जोड़ी. और उसके बाद फिर एक सिलसिला चला प्रोडक्शन का. एंड देन आफ्टर लॉन्ग टाइम ही डायरेक्टेड अनदर मूवी विच वॉज बेफिक्रे. और बेफिक्रे वॉज इज लास्ट मूवी एज अ डायरेक्टर. उसके बाद उन्होंने कोई मूवी डायरेक्ट नहीं की. ही हैज ऑलवेज बीन अ प्रोड्यूसर एंड प्रॉबेबली कभी कभी वो स्टोरी भी लिख देते हैं, लेकिन डायरेक्शन में दोबारा नहीं आए. तो ये एक छोटा सा, वो कहते हैं ना, नटशेल में बताया मैंने आपको उनकी जर्नी एज अ प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एसोसिएट प्रोड्यूसर, एसोसिएट असिस्टेंट डायरेक्टर, एसोसिएट डायरेक्टर एंड सो मच मोर दैट ही हैज डन फॉर बॉलीवुड एंड द मीडिया. अच्छा जी, अब जो है वो वक्त आ चला है आपके लिए एक गिव अवे का. लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आपका कुछ मैक्सिकन खाना खाने का दिल है, मैक्सिकन फ्यूजन विथ सम ग्लोबल इन्फ्लुएंस, तो कहाँ जाना है आपने? नियॉन कैक्टस. जी हाँ, नियॉन कैक्टस. यहाँ पे फ्रेश इंग्रेडिएंट्स, ज़बीहा हलाल ऑप्शंस, प्लेंटी ऑफ वेजिटेरियन चॉइसेस एज वेल. और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ऑथेंटिक बोल्ड फ्लेवर्स एंड द वाइब्स आर अनमैचेबल. यंग, कलरफुल, मॉडर्न एज वेल एज फुल ऑफ एनर्जी. यू वांट टू हैव सम, यू नो, परफेक्ट फॉर हैंग आउट आपके लिए. यू हैव अ डेट नाइट, यू हैव टू, यू वांट टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद योर लव्ड वन, या फिर यू जस्ट वांट टू मेक अ चिल प्लान. वो कहते हैं ना, ठीक है, चिल पिल वाला प्लान है, तो वो चिल पिल प्लान के लिए भी नियॉन कैक्टस इज द प्लेस टू गो. और जो सबसे स्पेशल बात है वो ये है कि जी, क्यूरेटेड कॉकटेल्स, रिफ्रेशिंग मॉकटेल्स, हैप्पी आवर्स मंडे टू फ्राइडे एंड स्पेशल डील्स एवरी सिंगल डे. और मैं आपके लिए लेके आई हूँ $20 का डिस्काउंट, जो कि डाइन इन पे आपको अवेलेबल होगा. इफ यू विन दिस, यू विल गो एंड व्हाटएवर यू विल डाइन एट द रेस्टोरेंट, उसमें से आपको $20 का डिस्काउंट मिल जाएगा आपके टोटल बिल में से. तो हमने आज स्पॉटलाइट डाली है आदित्य चोपड़ा पे. तो कॉन्वर्सेशन कॉर्नर लेके आई हूँ आपके लिए विद सुनहरी किरण, ब्रॉट टू यू बाय नियॉन कैक्टस. और आपको मुझे कॉल करके ये बताना है कि आदित्य चोपड़ा की कौन सी फिल्म, चाहे वो एज अ प्रोड्यूसर हो, एज अ डायरेक्टर हो, एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, एसोसिएट डायरेक्टर, डजंट मैटर, आदित्य चोपड़ा ने जिस फिल्म में काम में हाथ डाला या कुछ ना कुछ उनके लिए काम किया, कौन सी आपको फिल्म आदित्य चोपड़ा की सबसे अच्छी लगती है और क्यों? और साथ ये भी बताइए कि आदित्य चोपड़ा के बारे में कुछ यूनिक बात, कुछ उनका फिल्म मेकिंग स्टाइल अगर आपको कुछ डिफरेंट लगता है, क्या चीज़ आपको आदित्य चोपड़ा की यूनिक लगती है फ्रॉम अदर डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स देयर आर आउट देयर. 9722355555 इज द नंबर टू द स्टूडियो. दिस इज कॉन्वर्सेशन कॉर्नर विद सुनहरी किरण, ब्रॉट टू यू बाय नियॉन कैक्टस. फन एशिया रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर. अपना नाम बताइए.
1: आफरीन.
0: जी आफरीन, बताइए.
1: दिलवाले
0: दुल्हनिया
1: ले जाएंगे.
0: दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, बिल्कुल सही. सो टेल मी, व्हाट इज इट दैट यू फाइंड डिफरेंट अबाउट आदित्य चोपड़ा फिल्म मेकिंग स्टाइल?
1: फिल्म मेकिंग स्टाइल, इट्स इंटरेस्टिंग दैट ही फोकसेस ऑन रोमांसेस. एंड वन इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट हिम इज ही हेट्स टेकिंग पिक्चर्स, सो ही स्टेज अवे फ्रॉम द लाइमलाइट.
0: एब्सोल्युटली.
1: Yeah, that's something that intrigues me a lot.
0: All right, Afreen, thank you so much for your call. Sunte rahiye, main abhi winner announce karti hoon right after this. Fun Asia Radio, you're live on air. What is your name?
2: My name is Amrita.
0: Ji, Amrita, bataiye.
2: तो मुझे आदित्य चोपड़ा की जो मूवी सबसे अच्छी लगती है वो है रब ने बना दी जोड़ी. और उसके पीछे एक स्टोरी है, अगर आप मुझे टाइम देंगे तो मैं बता सकती हूँ.
0: हाँ, जल्दी से सुनाइए.
2: तो स्टोरी ये है कि जिस दिन ये मूवी हमने देखी उस दिन मेरी एंगेजमेंट थी. और इसमें जो कैरेक्टर है तानी, वही नाम हमने हमारी शादी के बाद हमारी जो बेटी हुई है उसकी बड़ी बेटी का नाम हमने तानी ही रखा था. तो थोड़ा सा पर्सनल कनेक्शन है वैसे. और अच्छी बात जो मुझे बहुत अच्छी लगती है आदित्य चोपड़ा की, उनके होते हैं लोकेशंस, उनके कॉस्ट्यूम्स, उनके म्यूजिक स्टाइल, वो सब डिफरेंट होता है. तो आप अलग से पहचान सकते हैं कि आदित्य चोपड़ा यानी कि यशराज बैनर की मूवी है. तो ये खासियत लगती है मुझे उनकी फिल्म्स की.
0: एब्सोल्युटली. और आपने जो अपना पर्सनल कनेक्शन डाला उससे तो हो गए, वो कहते हैं ना, चार चांद लग गए आपकी बात को. थैंक यू सो मच अमृता. सुनते रहिए. आई एम गोइंग टू अनाउंस द विनर इन अ बिट. ऑल राइट जी, अभी एक कॉल और लूंगी और उसके बाद हम एक गाना सुनेंगे. और गाने से वापस आकर सुनहरी किरण पे कॉन्वर्सेशन कॉर्नर का सिलसिला जारी रहेगा. फन एशिया रेडियो, यू लाइव इन एयर. व्हाट इज योर नेम?
3: हेलो जी, सभा बात कर रही हूँ.
0: जी सभा, बताइए.
3: जी उनकी चक दे मूवी बहुत अच्छी थी.
0: चक दे, आई लव्ड इट.
3: जी उसमें स्पेशली शाहरुख खान की बहुत अच्छी एक्टिंग थी एंड सारी जो लड़कियां थी
0: जी
3: उनकी बहुत अच्छी थी, नेचुरल एक्टिंग थी.
0: Absolutely. जी बिल्कुल. थैंक यू सो मच सबा, थैंक यू फॉर योर कॉल. सुनते रहिए, आई एम गोइंग टू अनाउंस द विनर इन अ बिट. ऑलराइट जी, विद दैट वी आर हेडिंग ऑन टू अ शॉर्ट सॉन्ग और उसके बाद वापस आकर कॉन्वर्सेशन कॉर्नर. आदित्य चोपड़ा की कौन सी मूवी आपको लगती है सबसे अच्छी?

0: न भुलाए। 1 मार्च को नजर मिलाई, 4 अप्रैल को मैं मिलने आई, 21 मई को तुमने छुआ था, 6 जून मुझे कुछ हुआ था।
1: लड़कों का क्या है, किसी भी मोड़ पे वो मुड़ जाए, अभी किसी के हैं, अभी किसी और से वो जुड़ जाए।
2: तुम्हारे मम्मी डैडी घर पर नहीं है? ग्रेट, मैं आ जाऊँ। तुम्हारी फ्रेंड अकेली घर जा रही है, बेचारी मैं छोड़ आऊँ?

जी हाँ जी, ये तो एक वो कहते हैं ना इनफिनिट बहस है कि लड़कियां लड़कों के दरमियान ये मुकाबला सदा से जारी है, सदा तक जारी रहेगा. एनीवेज श्रीशा, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन विनिंग दिस $20 डिस्काउंट फ्रॉम नियॉन कैक्टस. आप तमाम लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया. फनी जो इस तरह के बहुत सारे गिव अवेज आपके लिए लेकर आता है. और एक और मुझे बड़ा मजे का जवाब आया जो कि कॉन्टेस्ट के बाद आया, बट थैंक यू सो मच चारू फॉर टेलिंग अस योर फेवरेट विच इज धूम ऑफ कोर्स. एंड वेरी इंटरेस्टिंगली चारू आपने ये बताया कि जॉनर चेंज किया इन्होंने, आदित्या चोपड़ा ने, और जरा रोमांटिक फिल्मों से मूव किया उन्होंने एक्शन फिल्मों की तरफ. एंड धूम वन वॉज एन एब्सोल्यूट हिट. एंड ऑफकोर्स जस्ट लाइक मी हर फेवरेट ऑल्सो इज धूम टू. सो लेट्स लिसन टू दिस एंड विद दिस वी आर हेडिंग ऑन टू अ शॉर्ट ब्रेक.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, aur ab ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: Frisco is growing fast and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services, and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
7: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं. लेवल 1, मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत. लेवल 2, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट. लेवल 3, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड. और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस.
8: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी. तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स. क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे.
9: मेरा रिटायरमेंट प्लान रेडी है.
10: प्लान या होप?
9: मतलब?
10: मतलब है प्लान मतलब स्ट्रेटजी, होप मतलब देखते हैं क्या होता है.
9: ओके, तो मेरा वाला होप है.
10: तभी तो लोग वेल्थ टैक्टिक से बात करते हैं.
9: क्यों?
10: बिकॉज रिटायरमेंट को होप पे नहीं, स्ट्रेटजी पे प्लान करना पड़ता है.
8: वेल्थ टैक्टिक, रिटायरमेंट प्लानिंग विद क्लैरिटी एंड स्ट्रेटजी. फॉर फ्री कंसल्टेशन कॉल 469-693-2077 और विजिट देम एट thewealthtactic.com.
11: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
12: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
13: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
14: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं।
13: तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
15: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
14: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
16: Immigration is a serious concern for our community, and when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, perm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
17: So, ruko jara. सबर करो.
18: अगला गाना फुल वाइब बदलने वाला है. स्टे ट्यून टू फन एशिया.
19: कितने आदमी थे?
20: सरकार पूरा का पूरा डेलिस फन एशिया सुनता है.

चले जा रहा है ये सिलसिला आदित्य चोपड़ा की बनाई हुई फिल्मों का, क्योंकि बॉलीवुड स्पॉटलाइट में आज हमने स्पॉटलाइट डाली है राइट हेयर ऑन सुनहरी किरण, योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण, आदित्य चोपड़ा पे. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन एंड कनेक्टिंग विद मी दिस आफ्टरनून. आगे बढ़ते हुए आपको बताऊं जी कि अगर आप स्टोर ओनर हैं तो ये डेफिनेटली आपके लिए इन्फॉर्मेशन है. इवन इफ यू आर अ शॉपर, यू नो रवि इम्पोर्ट्स वेयर हाउस इज डूइंग देयर समर किक ऑफ. जी, तो अपने अपने कैलेंडर्स मार्क कर लीजिए, June 3rd यानी कि टुमारो एंड June 4th यानी कि डे आफ्टर. सो टुमारो एंड डे आफ्टर 9 AM टिल 5 PM लेके आ रहे हैं वो आपके लिए देयर समर किक ऑफ. एंड दिस ईयर इट इज बिगर. The entire warehouse is turning into a tropical experience. तो crazy deals लगी हुई हैं यहाँ पे कल और परसों. New product launches, free gifts all day long. आपको मौका मिलेगा to meet vendors, discover best sellers as well as stock up your like you've never before. तो जरूर visit कीजिए रवि import warehouse where they are bringing their summer kickoff June 3rd and June 4th 9 AM till 5 PM. और address मैं आपको बता देती हूँ रवि imports warehouse का, रवि's import warehouse House, which is 11029 Harry Hines Boulevard, Building A, Dallas, mein located 75229. So, zarur visit kijiye and happy shopping.

सलाम नमस्ते से लिया गया ये गाना, वंस अगेन प्रोड्यूस्ड बाय दी आदित्य चोपड़ा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, एक और बहुत खूबसूरत गाना मेरे पास लाइंड अप है, और उससे पहले अगर आप ग्लासेस या कॉन्टैक्ट लेंसेस पहनते हैं एंड यू थिंकिंग ऑफ सेइंग गुड बाय टू देम, तो यस देयर इज अ वे ऑफ सेइंग गुड बाय टू देम एंड दैट इज विजनरी आई केयर। तो जी, लेसिक इज जस्ट वन ऑफ द सेवरल विजन करेक्शन ऑप्शन जो कि आजकल अवेलेबल है। डॉक्टर शहजाद बाटलीवाला, अ फेलोशिप ट्रेन्ड आई सर्जन एंड फाउंडर ऑफ विजनरी आई इन प्लेनो, एंड ही इज हेयर टू हेल्प यू डील विद ऑल योर आई प्रॉब्लम्स। हिज अप्रोच इज वेरी सिंपल, दे एजुकेट यू फर्स्ट ताकि आप अपने डिसीजंस खुद लें अपनी आंखों के बारे में विद कॉन्फिडेंस। सो टू लर्न मोर अबाउट योर ऑप्शंस एंड टू सी इफ यू आर अ कैंडिडेट फॉर दिस लेसिक सॉल्यूशन, प्लीज गिव विजनरी आई केयर इन प्लेनो अ कॉल। That number is 214-972-2020. 214-972-2020 is that number, or you can visit their website as well. Khud research shuru kijiye and then give them a call. That website is LASIK, LASIK-Plano, PLANO, LASIK-Plano.com. Aur bilkul mat bhuliye, when you check out, use the promo code FUNASIA2020 to receive a free consultation. Check out मतलब जब आप उन्हें call करेंगे तो बताइएगा उन्हें कि FUNASIA के through आ रहे हैं आप, ताकि आपको एक free consultation मिल सके, यानी कि consultation मिल सके बिल्कुल free. Visionary Eye, helping you see your future more clearly. Do not forget to check them out. That is LASIK-Plano.com or 214-972-2020. And do not forget to mention FUNASIA 2020.

15 मिनट और बॉलीवुड स्पॉटलाइट में हम आदित्य चोपड़ा के एक दो गाने और आपके लिए प्ले करूंगी. एंड एज वी स्टार्टेड विद के एक एपिसोड विल नॉट बी इनफ, वी माइट हैव टू डू वन मोर एपिसोड और टू मोर एपिसोड डिपेंडिंग अपॉन द सॉन्ग्स. कोई भी गाना मैं मिस नहीं करना चाहती उनका बेहतरीन. तो कोई बात नहीं, अगले हफ्ते ट्यूजडे को फिर आपके लिए हाजिर कर लेके आएंगे बॉलीवुड स्पॉटलाइट ऑन आदित्य चोपड़ा. लेकिन फिलहाल दो तीन गाने और हैं मेरे पास. उससे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ ट्रैफिक अपडेट. जो है आपका ट्रैफिक आवर शुरू हो चुका है. इफ यू आर हेडिंग होम, यू आर प्लानिंग टू हेड होम, वेयर एवर यू आर गोइंग. सो सबसे पहले तो ये कि दिस ट्रैफिक अपडेट इज ब्रॉट टू यू बाय उमर ख्वाजा. उमर ख्वाजा का एक आपको इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ बिफोर आई गिव यू द ट्रैफिक अपडेट, कि अगर आप अनफॉर्चुनेटली किसी कार या ट्रक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हैं या फिर देर इज अ स्लिप और अ फॉल इंसिडेंट, तो दिस सिचुएशन कैन बी एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल. पेपर वर्क, इंश्योरेंस कंपनीज, लीगैलिटीज, मेडिकल, ये वो, मतलब निटिग्रिटीज इतनी सारी होती हैं और हमें बहुत सारी चीज़ों का तो निटिग्रिटीज का अंदाजा ही नहीं होता. तो आपको एक ऐसे अटर्नी की ज़रूरत है जो आपके लिए आपका केस फाइल करें और ना सिर्फ ये बल्कि आपको कॉम्पनसेशन दिलाएं. और वो अटर्नी है अटर्नी उमर ख्वाजा. ना सिर्फ वो आपका केस फाइल करेंगे, आपको बेस्ट कॉम्पनसेशन दिलाएंगे, आपके सारे पेपर वर्क को हैंडल करेंगे, बल्कि यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग अंटिल यू विन द केस. तो ये आपके लिए इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में एक एब्सोल्युटली विन विन सिचुएशन. वो कहते हैं ना, राहत का सामान है इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में. अगर आप या आपका कोई जानने वाला इस तरह के किसी सिनेरियो से गुजर रहा है तो अटर्नी उमर ख्वाजा इज हेयर टू हेल्प यू. प्लीज गिव हिम अ कॉल 469-300-5046. 469-300-5046 उनका नंबर, या फिर आप उनकी वेबसाइट विजिट करना मत भूलिए, विच इज अटर्नी उमर .com.

लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं. सो प्लीज़ बी केयरफुल व्हेन यू आर रीचिंग देयर. देयर इज़ अ कोलिजन दैट इज़ रिपोर्टेड एट IH-30 टुवर्ड्स हराइजन रोड FM-3097 eastbound, jiski wajah se 2 out of 5 lanes are blocked. The severity of this incident is reported high. The incident was reported about 20 minutes ago, to abhi kafi backup aapko wahan pe dekhne ko milega. There is another construction going on at US 67 towards Shiloh Road northbound, jiski wajah se 2 out of 4 lanes are blocked, including an exit lane. To यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको ट्रैफिक मिल रही है क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो यू नो आप जानते ही हैं वो ऑरेंज वाली वो लाइनें लग जाती हैं और उसके बाद जो है आपको लेन्स चेंज करनी पड़ती हैं. एवरीबडी हैज़ टू मर्ज इनटू वन लेन, सो थिंग्स कैन गेट प्रीटी कॉम्प्लिकेटेड. देयर इज़ अनदर कंस्ट्रक्शन दैट इज़ गोइंग ऑन एट 35 East टूवर्ड्स फॉक्स एवेन्यू नॉर्थ बाउंड, जिसकी वजह से 4 out of 10 लेन्स आर ब्लॉक्ड. द सेवेरिटी ऑफ दिस इंसिडेंट इज काइंड ऑफ रिपोर्टेड हाई बिकॉज यहाँ पे इसकी वजह से काफ़ी सारा बैकअप है. But jo hai, other than that, koi major collision hame roads pe nazar nahi aa raha. So that's pretty much all that I have for you where traffic is concerned right here on Sunehri Kiran.

0: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
1: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
2: Mark Hill is the leader Frisco needs to move forward together. As a former school board president, Mark has a proven record of integrity, fiscal responsibility and bringing people together. He values the vibrant contributions of our Asian and Indian communities, recognizing that our strength lies in our diversity and collaboration. Mark rejects divisive rhetoric, focusing instead on smart growth, public safety, and ensuring every voice is heard. For steady, experienced leadership that unites our city, vote for Mark Hill for Mayor. Let's build a stronger Frisco together.
3: Paid for by Mark Hill for Mayor.
4: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
5: I'll get married, so I'll wear Kareena wala designer lehenga pehen ke karungi.
6: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
7: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
8: इतना सब और प्राइस?
7: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन. समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा.
2: Attention passengers, flight Punjab 001 to Chandigarh Wale Irving is now boarding. Destination, real Punjabi flavor.
9: Arey yaar, Dallas mein Punjab?
10: Bilkul, Chandigarh Wale, jahan butter chicken bhi asli aur naan bhi tandoor se garma garam.
11: From buttery curries and fresh naan to street style Punjabi favorites, every bite takes you straight to Punjab. Shadi ho, party ho, ya corporate event, Chandigarh Wale brings live Punjabi catering straight to your celebration. Proudly awarded Best of Dallas for Indian food by D Magazine. Skip the flight and take the shortcut to Punjab. Chandigarh Wale, Irving, where Dallas meets Punjab.
12: Zindagi ek safar hai suhana, yahan kal kya ho, kisne jana.
7: Life ho ya health, कब क्या हो जाए पता नहीं. 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर. लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य. एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे. लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM टू 8 PM, वॉक इन एनी टाइम. 9191 काइजरवे, स्वीट 205, फ्रिस्को.
13: Achievements deserve unforgettable celebrations. Host your kids' graduation party at the Flavor Lounge in Frisco, where great food meets great memories. And if you want to host the party at your place, no worries. You can also order for catering services only. Fresh Tray Catering, custom menus for small or large gatherings. Everything in perfect style. Call now 469-712-3591 or visit theflavorlounge.com. The Flavor Lounge. You celebrate. Flavor hum sambhal lenge.
14: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
7: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
15: हे मैप्स, टेक मी टू माय देसी ग्रोसरी स्टोर.
16: कैलकुलेटिंग राउट, रीराउटिंग.
15: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है.
16: लोकेशन अपग्रेडेड, नाउ हेडिंग टू इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ.
15: क्यों?
16: क्योंकि फोर्ट वर्थ केलर, हैसलेट और हर्स्ट के स्मार्ट लोग जानते हैं. डेली ग्रोसरीज हो या पूजा एसेंशियल्स, ऑथेंटिक इंडियन प्रोडक्ट्स और घर की हर जरूरत, फाइंड एवरीथिंग देसी एट इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ.
15: अच्छा तो सीधा वही ले चलो.
11: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ. स्विच द रूट,
16: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड.
17: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, फिर सिर्फ फन एशिया ही सुनूंगा.
18: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फोनेशिया 104.9 FM।

0: You're tuned into 104.9 FM Fun Asia Radio. This is your afternoon drive time with Sunehri Kiran, and it is time now to connect you with our URA debt relief segment. हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर अमन, जो हमें बताएंगे कि URA debt relief आपको कैसे help कर सकता है in making the right choices. Let's welcome him on the airwaves of Fun Asia. Good afternoon, Aman ji. How are you doing?
1: गुड आफ्टरनून फाइनेंशियल सुनने वाले सभी लिसनर्स को URA और अमन की तरफ से नमस्कार. सो दोस्तों, ये महीने की शुरुआत हुई है, सो वेलकम टू जून. गर्मी गर्मी का महीना है, लेकिन गर्मी लग नहीं रही है. लेकिन अगर आप परेशान हैं क्रेडिट कार्ड की गर्मी से, जी क्रेडिट कार्ड भी उतरने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो आप URA को कॉल कर सकते हैं. ठंडी ठंडी हवा का झोंका, यानी कि आधे से ज्यादा कर्जा आपका माफ करवाया जा सकता है. बिल्कुल सही सुना आपने, आधे से ज्यादा कर्जा अगर आपने माफ करवाना है क्रेडिट कार्ड का, तो URA को कॉल कीजिए. URA आपके इन सारे क्रेडिट कार्ड, पर्सनल, बिजनेस, स्टोर, इन सारे कार्ड की एक पेमेंट बना देगा. क्योंकि जो आप कर रहे हैं ना कि क्रेडिट कार्ड की मिनिमम पेमेंट हर महीने दर महीने दे रहे हैं, तो वो हाई इंटरेस्ट में ही खुर्द बुर्द हो रही है. सारी खर्चा आपका इंटरेस्ट में, ब्याज में ही जा रहा है, तो इसीलिए क्रेडिट कार्ड पे ऑफ नहीं हो रहे. तो अगर आप चाहते हैं कि क्रेडिट कार्ड उतरे, और साथ साथ अगर कोई पर्सनल लोन है या कोई अपना ऐसा लोन जो बिजनेस का पर्सनल लोन है, जो पर्सनल लोन इन द सेंस कोई SBA लोन नहीं, ऐसे पर्सनल बिजनेस के आपने फंड्स ले रखे हैं, या गाड़ियों के लोन है जो रिपोजेस हो गई हैं, या गाड़ी टोटल हो गई है. क्योंकि जब गाड़ी टोटल होती है, इंश्योरेंस पूरा क्लेम नहीं देती, तो जो बाकी बचा है वो आपको पे करना है. जब गाड़ी रिपोजेस होती है, जैसे ट्रक या कार, तो उसका भी लोन आपको वो पे करना पड़ता है. तो आप उसको नेगोशिएट कर सकते हैं, आधे से ज्यादा कर्जा माफ करवा सकते हैं. सिंपल, मिनिमम पेमेंट इस महीने करने से पहले जरा रुक जाइए. सीरियसली, इस महीने मिनिमम पेमेंट करने से पहले एक बार मुझे कॉल कर लीजिएगा, हमारी कंपनी को कॉल कर लीजिए. हमारा टोल फ्री नंबर है 1-888-888-9914, 1-888-888-9914, या फिर आप मुझसे बात कर सकते हैं CB 916-776-3555, 916-776-3555, अगेन 916-776-3555. मिनिमम पेमेंट करने से पहले कॉल कीजिए, ताकि आपका आधे से ज्यादा कर्जा माफ हो, डेट फ्री हो जाए, जिससे आपका घर का लोन आराम से नया लोन मिल सकता है. सो हमारी वेबसाइट है www.ura.org. तो अगली मिनिमम पेमेंट करने से पहले कॉल जरूर कीजिएगा. नंबर नहीं लिख पाए तो फाइनेंशियल रेडियो से भी ले सकते हैं.
0: Thank you so much, Amanji, for connecting with us this afternoon. We will talk to you next time.
1: Sure.
0: You have a good afternoon.

And it is time now to give you the weather update. June the 2nd, which is Tuesday, 4:43 p.m. in the studio or city of Mikini mein is waqt hai ji 87 degrees. However, it feels like 94 right now. Din raha kuch partly sunny, partly cloudy with a 20% chance of showers and thunderstorm. Aur highs jo hain wo aapke rahe around 85-86 tak. Although jaise maine kaha, it feels like 90 for sure. Aur sham rahegi mostly cloudy in the evening, then becoming partly cloudy. Lows jo hain wo lower 70s tak रहने वाले हैं. मीडियम आज का पोलन आज का 6.3 है, विच इज मीडियम. ग्रास, हिकरी, पीकैन एंड ओक इज व्हाट इज बॉदरिंग अस वेयर पोलन इज कंसर्न्ड. यूवी इंडेक्स इज 10, विच इज ऑफ कोर्स क्वाइट हाई. इफ यू आर प्लानिंग ऑन गोइंग आउट फॉर अ वॉक या फिर कोई इवनिंग एक्टिविटी आपने बाहर करनी है, मेक श्योर यू कीप योर सनस्क्रीन हैंडी एंड कीप योरसेल्फ्स हाइड्रेटेड. सनराइज आज का हुआ 6:18 AM पे, जबकि आज का सनसेट होगा 8:31 PM. और इसी के साथ कल भी जो है वो दिन मोस्टली सनी रहेगा, हाईज इन दी अपर 80s, जबकि शाम रहेगी मोस्टली क्लियर, देन बिकमिंग इन द इवनिंग देन बिकमिंग पार्टली क्लाउडी, और लोज जो है वो अराउंड 70s रहने वाले हैं. सो ऑल इन ऑल इट इज गोइंग टू बी अ गुड डे टुमारो एज वेल.

और इसी के साथ टाइम आ गया है आपको करेंसी अपडेट देने का. यूएस डॉलर कहाँ स्टैंड कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू अदर करेंसीज इन द वर्ल्ड. ट्यूसडे जून द 2nd 4:48 PM इन द स्टूडियो अकॉर्डिंग टू xrates.com. यूरो आज ट्रेड कर रहा है 0.859 पे. ब्रिटिश पाउंड 0.74 पे ट्रेड कर रहा है. इंडियन रुपी 95.50. कैनेडियन डॉलर 1.38 पे स्टैंड कर रहा है, जबकि पाकिस्तानी रुपी 278.28 पाकिस्तानी रुपीज आर ट्रेडिंग फॉर 1 US डॉलर. नेपालीज रुपी 152.88, जबकि बांग्लादेशी टका 122.75 बांग्लादेशी टकाज आर ट्रेडिंग फॉर 1 US डॉलर. और इस गाने पे जो अब हम जा रहे हैं, इससे उस पार मैं आपको बताऊंगी द गोल्ड प्राइस अपडेट कि सोने का भाव आज क्या है.

A very good evening to the listeners of Fun Asia Radio 104.9 FM. This is your host Banda Bindas, Marvin Das. And I'm with you till 7 o'clock this evening. इस सफर का नाम है जी बड़ा ही प्यारा सा सफर है, वो वाला नहीं जो आपको करना पड़ता है कई बारी किसी किसी के साथ इंग्लिश में, ये हिंदी वाला सफर है और ये चलता है जी आपके साथ मंडे टू थर्सडे. द शो नेम इज द बिंदास शो ऑन दिस फ्रीक्वेंसी जिसका नाम है फन एशिया एंड वी आर ऑलवेज ब्रिंगिंग द पीपल एंड द कम्युनिटी टुगेदर. 5:12 स्टूडियो की घड़ी में हो चुके हैं जी, इट्स 5:12 इन द स्टूडियो क्लॉक. बर्थडेज एनिवर्सरीज, कुछ भी खुशी की बात या आज आपको किसी ने मुस्कुराने की कोई वजह दी हो, जैसे कि मैं मतलब उसके अलावा समथिंग हैपेंड इन योर डे दैट पुट अ स्माइल ऑन योर फेस, डू गिव मी अ कॉल, आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ दैट जॉय. एंड ऑफ कोर्स नए गानों को रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूं. एक एडवाइस दूं आज आपको जिंदगी में, वैसे भी गर्मी बहुत हो रही है, पानी पीते रहा करो दोस्तों, क्योंकि खून तो वैसे भी दुनिया ने पीना ही है. स्टूडियो का नंबर 9722355555.

So sweet, so beautiful, just looking like a wow. And this track is also called Wow. Hai Jawani To Ishq Hona Hai is the name of the movie. Varun hai ji saath mein, Brunal and Pooja. This is a movie coming out very soon. Looks like a comedy rom-com, jaise hamesha hoti hai. But kuch na kuch twist har cheez mein ho sakta hai. So be anticipating for that. Hamesha umeed jo hai wo kayam rakhni chahiye bade bhaiya. Aapko ye bata dun ki Sal's Hot Chicken ek bada acha offer leke aaya, which is called the Inferno Spice Challenge. And what is that? Ki Sal's Chicken aapke liye ek deal leke aaya hai. Aapke paas 10 minute hain jisme aapko 3 jumbo extra hot tenders ko khatam karna hai. That is with 1 cup of milk. Ek cup aapko दूध का मिलेगा और 3 जंबो एक्स्ट्रा हॉट टेंडर्स जो उनका स्पाइसीस लेवल है वो मिलेगा. प्राइस क्या होगा अगर आपने खत्म कर लिया? वेल, अगर आपने एक भी टेंडर खत्म कर लिया आपको फ्री सैंडविच मिलेगा एवरी डे फॉर 7 days. 7 दिन के लिए फ्री सैंडविच किसी भी स्पाइस लेवल का, यही नहीं कि वो मिर्ची वाला ही. अगर आपने 2 जंबो टेंडर्स खत्म कर दिए आपको मिलेगा फ्री सैंडविच फॉर 15 days. और अगर आपने 3 इन्फर्नो टेंडर्स खत्म कर दिए तो आपको मिलेगा ग्रैंड प्राइज विच इज फ्री सैंडविच फॉर एवरी डे फॉर 30 days. जी हाँ, 30 दिन तक लंच आपका सेट बाय Sal's Hot Chicken. सो 1 टेंडर यू गेट 1 week फ्री सैंडविच, 2 टेंडर्स यू गेट 2 weeks or 15 days of free sandwich, and if you finish 3 tenders you get 30 days of free tenders. That is going to be on 6th of June, is Saturday ko 4 baje onwards. Sal's Chicken in Richardson, make sure to check them out. Sal's Hot Kitchen Richardson mein located hai, and if you are somebody who can handle spice then I think this is your opportunity. 972-235-5555 is the number to the studio. Ek gaane ka waqt hai, uske baad lunga chota sa commercial break. You don't go anywhere because I'll be right back.

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com. Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
3: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
2: That magic removal हो, love and relationship issues हो, get trusted solutions with 100% privacy.
3: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। Now it's your turn. समस्या का पक्का समाधान, एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। Call now 9455270897 or visit astrologerishwar.com.
4: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Omar Khawaja, the official injury partner of Funasia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Omar Khawaja, your legal lifeline.
5: कहते हैं अयोध्या में एक रसोई थी, सीता की रसोई, जहां माँ सीता अन्नपूर्णा के रूप में सिर्फ भोजन नहीं, प्रेम और सेवा परोसती थी। और अब वही पवित्र स्वाद, वही भाव श्री अयोध्या भवन में, ऑपोजिट टू द कार्य सिद्धि हनुमान टेंपल इन फ्रिस्को।
6: फर्स्ट एवर ऑथेंटिक सात्विक फ्लेवर्स विद नो अनियन एंड गार्लिक,
5: वेयर एवरी डिवाइन फूड इज एन ऑफरिंग। ओपन डेली फ्रॉम 7 AM, लोकेटेड एट इंडिपेंडेंस एंड एल्डोराडो। श्री अयोध्या भवन, वेयर टेस्ट मीट्स डिविनिटी।
7: कंप्यूटर जी का सवाल ये है, बिजनेस ओनर्स को लोन लेना मुश्किल क्यों लगता है? ऑप्शन ए, स्लो प्रोसेस। ऑप्शन बी, ज्यादा पेपर वर्क। ऑप्शन सी, क्रेडिट स्कोर का कंसर्न। या ऑप्शन डी, लोन डिक्लाइन होने का डर।
8: मैं एक्सपर्ट लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा।
7: कंप्यूटर जी, SBA लोन एक्सपर्ट से कनेक्ट किया जाए।
9: SBA लोन एक्सपर्ट्स ने बिजनेस लोन प्रोसेस बहुत ही आसान बना दिया है। नो टैक्स रिटर्न्स नीडेड टू अप्लाई और क्रेडिट पर हार्ड चेक भी नहीं, रिजल्ट्स सिर्फ 10 मिनट में।
2: बिजनेस लोन ऑप्शंस को क्लैरिटी से समझने के लिए कॉल करें 817-786-3338, 817-786-3338, The SBA लोन एक्सपर्ट्स, फैसला क्लैरिटी के साथ।
10: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी, सच बता लॉटरी लगी है क्या?
11: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी, जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे K2 ड्राइव पे लिस्ट कर दी।
10: K2 ड्राइव मतलब?
11: मतलब गाड़ी खुद पैसे कमा रही है, लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लवफील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस सब K2 ड्राइव हैंडल करता है।
10: वाह, मैं भी अपनी पुरानी

0: गाड़ी लीज करा सकता हूँ
1: 100%
2: नई हो या पुरानी लिस्ट योर कार एट केटो ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी विजिट ketodrive.com और कॉल 214-814-0402 केटो ड्राइव डायलिसिस स्मार्टेस्ट फ्लीट पार्टनर
3: सुनीता तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली
4: हाँ बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है
3: सेम टीचर सेम स्कूल फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है
4: डिफरेंस स्कूल का नहीं है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है
5: इंट्रोड्यूसिंग लुमिटी लर्निंग सेंटर फ्रिस्को प्रॉस्पर और मैकिनी ISD अलाइंड करिकुलम दैट डजंट जस्ट मैच इट एक्सीड्स पर्सनलाइज्ड मैथ और इंग्लिश प्लान्स सर्टिफाइड टीचर्स कंटीन्यूअस फीडबैक ऑन डिमांड सपोर्ट और हर बच्चे के लिए कम्पेटिटिव एज ट्राई लुमिटी यू सी द डिफरेंस किड्स एजेस 5 to 13 कॉइट एंड Panther Creek in Frisco. Call 972-666-1181. Mention Fun Asia. Get $100 off your first month.
6: Attention store owners, Ravi's summer kickoff is back. June 3rd and June 4th, 9 a.m. to 5 p.m. And this year, it's different. We are turning the warehouse into a full tropical experience with crazy deals you won't find anywhere. New product launches and free gifts all day. Meet vendors, discover your next best sellers and stock up like never before. Same Ravi's, just big. Bigger, bolder, and way more fun. Ravi's Import Warehouse, 11029 Harry Hines Boulevard, Building A, Dallas, Texas, 75229. Entry requires a valid tax number and tobacco license.

देखो भैया, शेर जो होता है ना, शेर जो होता है वो शेर शेर ही होता है, शादी के पहले भी और शादी के बाद भी। फर्क सिर्फ इतना हो जाता है कि शादी के बाद जो शेर होता है ना, शेर उसके ऊपर दुर्गा सीमा वगैरह बैठ जाती हैं, पर शेर शेर ही होता है। देखो भैया, शेर शेर ही होता है। 5:25 स्टूडियो घड़ी में हो चुके हैं, 5:25 इन द स्टूडियो क्लॉक। शेर शेर होता है और गजल गजल होती है, गाना गाना होता है। हर चीज़ की अपनी अपनी जगह होती है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। और शेर और बैल ना दोनों दारू पी रहे होते हैं, तो 2-3 पैक के बाद बैल कहता है, चल यार बस थोड़ी देर और बैठते हैं। शेर कहता, नहीं नहीं भाई, मुझे घर जाना है। वो कहता, बैल यार तू शेर है, घर क्यों जाना है? कहता बैल, भैया बात ऐसी है कि तुम्हारे घर में तो गाय है, मेरे घर में शेर नहीं है। शेर नहीं बेटा, This part of the show is brought to you by the best in mortgage. Their name is Dream Home Mortgage. Hussain and Sharmeen Punjwani, excellent people to work with. And genuinely बता रहा हूँ, मेरे को खुद जानते हुए 20 साल हो गए उनको, and wonderful people, human beings बहुत अच्छे हैं, and they make sure that you get the best deal. और अगर कहीं आपको अच्छी deal मिल रही होगी तो हुसैन साहब आपको पहले ही बता देंगे यार कि ये deal जो आपको मिल रही है जबरदस्त है. And if you want education, he never shies away from educating you. Any questions you have, send an email info@dreamhomemortgage.com. That's info@dreamhomemortgage.com, or simply give them a call 972-245-5626. Aaj hi ke din, in the year 1903, Robert Morris Page was born, who was a physicist who helped develop and refine radar technology. Aaj ke din mein jo hum use karte hain, uski development aur refining mein bahut kaam kiya tha Robert Morris Page. Today's date, that was June 2nd, the year was 1903. Here we go with the next track that is lined up for you. Aur gaane to humne lagane acche se acche, behtar se behtar. Here we go. ये आने वाली है फिल्म बहुत ही जल्दी. This is शाहिद कपूर, कृति एंड रश्मिका, जब तलक. Hi कृति.

0: मोदी जी बार बार यही कहते रहते हैं, देश का हल भाइयों और बहनों, नया भारत। अरे भैया, आपको सिर्फ देश की पड़ी है, मुसीबतों की पड़ी है, यहाँ पे घर वाली बात नहीं कर रही है, उसका क्या करना है, कोई वो सोल्यूशन तो देता नहीं है। दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय फन पिज्जा किचन। जबरदस्त पिज्जा खिलाते हैं जी आपको, एंड इफ यू हैवंट बीन टू देयर लोकेशन इन कॉलोनी और इन फ्रिस्को, क्या वेट कर रहे हो, जाओ एंजॉय सम लवली पिज्जा। एंड इफ यू क्रेजिंग समथिंग चीजी विद अ देसी ट्विस्ट, देन दे हैव द फ्लेवर वेयर फ्लेवर मीट्स फायर फॉर ऑल वेजी लवर्स। ट्राई द अचारी पनीर पिज्जा पैक्ड विद अ टैंगी अचार पंच एंड सॉफ्ट पनीर, मजा आ जाता है जी, मल्टिंग इन माउथ स्पाइसी मैजिक फ्लेवर्स का जब उठता है, ओए होए। एंड फॉर द मीट लवर्स, तंदूरी चिकन पिज्जा जो मेरा वहां का फेवरेट है, स्मोकी परफेक्शन है जी, स्ट्रेट फ्रॉम द तंदूर टू योर टेस्ट बड्स, वेदर यू लाइक इट बोल्ड और ब्यूटीफुल, देयर इज अ स्लाइस वेटिंग फॉर यू एट फन पिज्जा किचन। फॉर डिटेल्स विजिट द वेबसाइट funpizzakitchen.com एंड यू हैव अ चांस टू विन $10 गिफ्ट कार्ड बाय आंसरिंग अ सिंपल क्वेश्चन। कलेक्ट योर नेम एंड आप मुझे देंगे अपना नाम, इन्फॉर्मेशन। सवाल क्या पूछने वाला हूँ, सवाल ये पूछने वाला हूँ भैया कि जो अगला गाना मैं लगाने वाला हूँ, जो अगला गाना मैं लगाने वाला हूं, व्हाट इज द नेम ऑफ द मूवीज। कॉल्स करेंगे आप स्टूडियो के नंबर्स पे 972-235-5555 और बताएंगे फिल्म का नाम्स, एंड यू गेट $10 गिफ्ट कार्ड बाय आंसरिंग जस्ट द फिल्म का नाम्स। भाइयों और बहनों, बताओ कौन सी फिल्म से लिया गया है ये गाना।
1: आई जारी सर पे मेरे।

0: देखें फनेसिया बहुत सारे कॉन्टेस्ट खिलाता है और अब देखते हैं हमारे साथ कौन है जो दे रहा है जवाब, क्योंकि इनको मिलेगा $10 गिफ्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम फन पिज्जा किचन इन फ्रिस्को वाली लोकेशन है ना, डबल चेक कर लेते हैं इससे पहले कि जूती हमें घुमा रहे। यस, $10 गिफ्ट सर्टिफिकेट है जी आपके लिए और ये फ्रिस्को की लोकेशन आपके लिए वेलकम कर रही है जी। आपको मुझे बताना है ये जो गाना चल रहा है ये कौन सी फिल्म का है। गुड इवनिंग फनेसिया, कौन बोल रहे हैं?
1: हेलो, गुड इवनिंग जी, हाउ आर यू?
0: गुड इवनिंग जी, एच आई
1: ये
0: जे के।
1: गुड इवनिंग का है गाना।
0: गुड इवनिंग जी, एच आई जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी। आपका नाम?
1: बहुत अच्छा।
0: आपका नाम नहीं बताया, आपका नाम नहीं बताया आपने
1: जी। हम हैं श्रीशा रेड्डी।
0: श्रीशा रेड्डी?
1: हाँ
0: श्रीशा रेड्डी जी, फ्रिस्को जा सकती हैं?
1: हाँ जी बिल्कुल।
0: पिज्जा अच्छा लगता है आपको या बच्चों को?
1: हाँ, किसको नहीं लगता जी, अमेरिका है, पिज्जा के तो फैन ही बन गए।
0: मुझे मुझे कभी कभी अच्छा लगता है, मतलब साल में एक दो बार।
1: मुझे छोले भटूरे सबसे ज्यादा पसंद है।
0: बहुत अच्छा करते हो आप। अब ये बताओ कि फिल्म का नाम क्या है?
1: है जवानी तो इश्क होना है।
0: आपको प्रैक्टिकलिटी में ये पता है कि गैसी मारा है?
1: हैं जी,
0: आपने आपको प्रैक्टिकलिटी में भी ये बात पता है कि है जवानी तो इश्क होना है कि फिल्म का नाम ही बता रही
1: हूँ? नहीं, फिल्म का नाम है जी।
0: चलो फिल्म
1: वैसे
0: का नाम।
1: पुराना वर्जन बहुत अच्छा है, ये नया वर्जन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा।
0: बिल्कुल अच्छा नहीं है, मैं बेवकूफी बनाई है इन्होंने। चले, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आप जीत चुकी हैं $10 गिफ्ट सर्टिफिकेट। यू विल होल्ड द लाइन फॉर मी, आई विल टेक योर इन्फॉर्मेशन ऑफ द एयर। फन पिज्जा किचन का अगर खाना खाना है जी आपको, देन मेक श्योर टू हेड आउट इन टू लोकेशंस, कॉलोनी एंड इन फ्रिस्को फॉर यू। 972-235-5555 इज द नंबर टू द स्टूडियो। और एक सवाल है मुझे आप लोगों से डालस, ये बताओ कि आदमी के खराब मूड में और बीवी के खराब मूड में क्या फर्क होता है? इफ यू वर टू एक्सप्लेन फ्रॉम योर साइड, है ना, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वुमन्स बैड मूड एंड अ मैन्स बैड मूड। फिलहाल वेलकम टू द जंगल।

0: आपको देख।
1: हाय हाय मेरे पुराने चावल।
2: भैया वेलकम, तो ऐसा लग रहा है जैसे फुल कॉमेडी धमाल होने वाला है। दिस इज वेलकम टू द जंगल। अक्षय कुमार, दिशा पतानी, शान साथ में इसको आवाज दे रहे थे गाने को, एंड बहुत सारे एक्टर्स हैं। अगर इनकी भी स्टार कास्ट की बात की जाए तो जैसे वो आई थी ना हाउसफुल, इसमें भी हाउसफुल है। कौन कौन है जी? अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, दिशा पतानी। वैसे मुझे भी दिशा नहीं पता है, कोई इनसे मिलवा के मुझे दिशा बता दे तो मुझे अच्छा लगेगा। जैकलीन फर्नांडिस, अरशद वारसी, जैकी श्रॉफ, परेश रावल, रवीना टंडन, लारा दत्ता, फरीदा जलाल, जॉनी लीवर, श्रेयस तलपड़े, तुषार कपूर, राजपाल यादव, कृष्णा अभिषेक, किकू शारदा, दलेर मेहंदी, अफ्ताब श्रीपुरसानी, मुकेश तिवारी, यशपाल शर्मा, किरण कुमार, जाकिर हुसैन, विंदु दारा सिंह और भी बहुत सारे भाई जी, मतलब नाम नहीं खत्म हो रहे। उर्वशी रौतेला भी है जी, हेमंत पांड्या भी है, ब्रिजेश कालरा भी है, फिरोज खान लेट अर्जुन है और लेट पंकज धीर है, पुनीत इसर है, सुदेश बैरी है, जीतू वर्मा है, विरी कोडावरा, आदित्य सिंह, भाग्य भानुशाली, मार्विन दास रह गया, अगली बार बोलूंगा डाल लेंगे, बट दिस इज द स्टार कास्ट। अच्छा, मैंने आपसे पूछा था एक सवाल कि भाई ये जो बीवी का गुस्सा है और आदमी का गुस्सा है इसमें क्या डिफरेंस होता है। हमारे साथ एक ज्ञान बख्श बाबा बैठे हैं। ज्ञानी बाबा नमस्कार, बताइए हमारी जनता को कि ये जो औरत का गुस्सा है और मर्द का गुस्सा है इसमें क्या अंतर है।
3: चौधरी साहब कहते एंटरटेनिंग आदमी हो आप।
2: बस सर बचपन में गिर गया था थोड़ा सा, कभी हरियाणा की तरफ
3: गिर गया। बढ़िया गिरे, जहाँ गिरे वो बहुत बढ़िया गिरे।
2: बता रहे हो, बता तो रहा हूँ बाबा जी। बात तो सुनो कि मैं चंडीगढ़ में रहता था ना, तो चंडीगढ़ है कैपिटल हरियाणा का भी और पंजाब का भी, तो मैं कभी हरियाणा की साइड गिर जाऊँ कभी पंजाब वाली साइड गिर जाऊँ, तो दोनों साइड पे गिर गिर के अपना अलाइनमेंट बिल्कुल सीधी हो गई है। अब
3: कसूता छोरा रेडियो कांडी कांडी पाई है हमारा।
2: अच्छा ये बताओ ताऊ जी, ये तो बताओ कि ये जो औरत का गुस्सा है और आदमी का गुस्सा है इसमें क्या फर्क होता है।
3: भाई औरत का गुस्सा ना जेल में होगा।
2: अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ सर बात क्या होती है। औरत का जो गुस्सा होता है ना वो आदमी से डिफरेंट होता है। आदमी का गुस्सा क्या होता है? आदमी का गुस्सा होता है एक नॉर्मल बुखार की तरह, वायरल की तरह होता है, थोड़े दिन रहता है और उसी को होता है जिसको होता है। जैसे मैं बीमार हूँ तो मेरे को इफेक्ट करेगा, बट जो औरत का गुस्सा होता है वो डेंगू, वो समझ लो कोरोना वगैरह की तरह होता है, उसकी लपट में जो भी उस लेडी के लपट में आएगा गुस्से की उसको भी इफेक्ट हो सकता है।
3: ये होता है गया।
2: बस बचपन मैंने बताया सर, हरियाणा की तरफ से यही सीखा मैंने, हरियाणा वालों ने यही सीखा।
3: बोले भाई मारा भी सवाल है, मारा भी सवाल है, डायलॉग वाली जनता से पूछियो यो गाने का के मतलब है
2: कौन सा?
3: टटीरी
2: टटीरी बादशाह का गाना,
3: बादशाह का गाना लायो।
2: इट्स योर बॉय बादशाह कमिंग अप आफ्टर द ब्रेक। और सवाल ये है कि टटीरी टटीरी कर रहे हैं ये, इसका मतलब क्या होता है? ब्रेक के बाद।
4: Frisco is growing fast and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Wilhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Wilhauer for Frisco Mayor because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
5: सुनीता, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
6: हाँ बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है।
5: सेम टीचर सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है।
6: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है।
7: इंट्रोड्यूसिंग लुमिटी लर्निंग सेंटर, फ्रिस्को प्रॉस्पर और मैकिनी ISD अलाइंड करिकुलम दैट डजंट जस्ट मैच, इट एक्सीड्स। पर्सनलाइज्ड मैथ और इंग्लिश प्लान्स, सर्टिफाइड टीचर्स, कंटीन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट और हर बच्चे के लिए कम्पेटिटिव एज। ट्राई लुमिटी, यू सी द डिफरेंस। किड्स एजेस 5 टू 13, कॉइट एंड पैंथर क्रीक इन फ्रिस्को। कॉल 972-666-1181। मेंशन फन एशिया, गेट $100 ऑफ योर फर्स्ट मंथ।
8: Taxes are not complicated or stressful with CPA Shalini Kodial on your side. You focus on growing your business while she handles the planning to mitigate your tax liability. She's honest, transparent and accountable, ensuring your business stays fully IRS compliant. Unlike many other CPAs who meet just once a year, Shalini meets with you every quarter. Call 281-760-5573 today or visit the website www.skodialcpa.com.
0: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
9: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
10: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
11: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
10: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
12: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया, ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस।
13: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
12: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
13: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
12: ये क्या होता है?
13: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
14: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
15: अरे भाई, वही तो नहीं होता हर बार हर ट्रिप के इतने झंझट।
16: बिकॉज यू डोंट ट्रैवल विद लॉसिन। चाहे शादी के लिए इंडिया जाना हो, दुबई की लग्जरी शॉपिंग या यूरोप की ड्रीमी वेकेशन फोटोज, एक परफेक्ट ट्रिप के पीछे होता है एक परफेक्ट ट्रैवल पार्टनर, लॉसिन ट्रैवल। फॉर नियरली 30 इयर्स, लॉसिन ट्रैवल हैज बीन हेल्पिंग फैमिलीज प्लान स्ट्रेस फ्री इंटरनेशनल ट्रिप्स विद द बेस्ट एयरफेयर्स, वेकेशन पैकेजेस, क्रूजेस एंड कस्टमाइज्ड ट्रैवल सॉल्यूशंस। लॉसिन ट्रैवल मेक्स एवरी जर्नी स्मूथ, अफोर्डेबल एंड टेंशन फ्री। कॉल नाउ 214-631-2458 और विजिट lawsontravel.com।
17: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
18: हाँ।
17: घर रिलोकेट करनी है?
18: हाँ।
17: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
18: हाँ भाई हाँ।
17: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
19: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज। SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन। विजिट sflworldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
20: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand up, play an instrument or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at desigottalentus.com. Grand finale in Dallas, because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA, your talent, your spotlight.
2: हमारे पिछले कॉलर थे जी, एक हरियाणवी भाई, और कह रहे थे कि इस गाने में जो बार बार बादशाह जी कह रहे हैं टिटीरी टिटीरी, इसका मतलब क्या होता है? अगर आपको मालूम है जरूर कॉल कीजिएगा 9722355555। वेलकम आफ्टर द ब्रेक, इट्स फन एशिया रेडियो 104.9 FM।

0: ऑलराइट, दैट वाज बादशाह विद द ट्रैक टिटीरी। और हमने पूछा था जी, क्योंकि हमारे क्यूरियस हरियाणवी पूछ रहे थे कि भाई टिटीरी का मतलब क्या होता है। हमारे साथ कोई है? गुड इवनिंग टू यू फनेजिया, हु इज दिस?
1: या हाय, आई एम राजेश।
0: हाय राजेश, हाउ आर यू?
1: आई एम डूइंग गुड, हाउ आर यू?
0: वेरी गुड, वेरी गुड ब्रदर। आपको मालूम है टिटीरी क्या होती है?
1: टिटीरी आई थिंक दे आर रेफरिंग टू अ बर्ड।
0: यस, टिटीरी इज अ बर्ड बड़े भैया, ये नॉर्थ इंडिया में ज्यादा पाई जाती है, और शाम को जब बरसाते हो स्पेशली तो टिटीरी ऐसे करके बात करती है जनाब वो, एंड इट इज कॉल्ड टिटीरी इंडीड। दैट वाज द रेफरेंस ऑफ द ट्रैक दैट वी जस्ट हर्ड फ्रॉम बैड बॉय बादशाह। बट इसके अलावा जिंदगी में और भी नॉइज होती है, और वो नॉइज ना कभी कभी नजर नहीं आती है। वो नॉइज होती है अनप्लान टैक्सेस की, जब आप रात को सो रहे होते हो और फिर परेशान होते हो कि यार मेरे सीपीए ने ठीक से टैक्स फाइल किया होगा, इतनी टैक्स लायबिलिटी मेरी बनती है। ये जो टेंशनें हैं ना, ये टिटीरी या किसी भी चिड़िया या किसी भी नॉइज से बढ़ के होती हैं। इस नॉइज को शांत करने के लिए आपको चाहिए होता है एक अच्छा सीपीए, एंड फॉर दैट आई हैव द एक्सपर्ट इन दैट फील्ड। उनका नाम है शालिनी कोडियाल, सीपीए LLC, और शालिनी कोडियाल सीपीए अगर आप टाइप करेंगे गूगल में, यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट हर प्रैक्टिस। I am going to call her on the airwaves of Phanasia and talk to her to give you some thoda sa gyan, kehte hain light dalni chahiye, especially us taraf jahan se koi na koi fayda ho. Good evening to you, Shalini. How are you?
2: Good evening, Marvin. I'm good. How are you?
0: God is great. Life is beautiful. Mujhe ye bataiye ki, you know, a lot of people, jaise maine kaha ki, sote sote aksar raaton ko neende ud jati hain jab tax liability ka bill samne aata hai. Especially if you are a high income ya high revenue generator in your business or in your income also, I think you need somebody jo aapki raaton ki neend ka jo chain hai wo aapko barabar de. And that is where Shalini comes in. Shalini, pehle to why don't you introduce yourself as to how long have you been doing this CPA practice, what are some of your clients, and how can you help our Desi community to have peaceful sleep?
2: Right. So thank you so much, Marvin, for the opportunity. Well, I'm a CPA out of Great Point, Texas, and I help individuals and business owners with strategies, with legal tax strategies. And I think most of us think retroactive when it comes to taxes. I wire my clients to think proactive about taxes. So my clients meet me throughout the year, not just during tax season. And I help clients with identifying all the credits, deductions, and tax advantage strategies.
0: यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, क्योंकि आपने कहा कि your clients meet you multiple times in a year. क्योंकि usually जो मैंने देखा है CPAs और उन जो clients हैं, वो तो जब tax time आता है तभी याद आता है, hello भैया extension file कर दो या मेरे taxes file कर दो.
2: Yeah.
0: Why yeah. More times a year? Why do you do that? And you know, how do you do that? थोड़ा सा clarify करो.
2: Right. So So I do it because of multiple reasons. Main reason is about proactive tax planning, and clients also save a lot of penalties and interest if they don't make their estimated tax payments on timely basis. And then if they're proactive, then they can take the steps. Like I can give you an example of a client who is selling a property. Like what if he came to me after he sold the property? I couldn't have done much. But since he told me in advance that, Shalini, I'm going to sell my property next month, now I can see, okay, how much tax liability or tax savings he's going to have. So proactive approach is very important because I can tell him to hold off to that property for another year because it's not a good time to sell it and have a higher tax liability.
0: All right.
2: So all
0: sense.
2: Those timing projections really make a huge difference.
0: Absolutely. And Dallas ke listeners, agar aapka CPA aapko saal mein ek baar milta hai ya wo bhi phone pe hi baat karta hai, then you know it's time to change because you need somebody who is more ahead of you in making sure that you get all the knowledge, all the advice that you can to save your taxes. And if you plan it right with Shalini Kodiyal, things will change. Let me give you her number once again. It's 281-760-5573. आजकल नंबर लिखने का टाइम नहीं है, चिंता मत करो. जस्ट गो ऑन टू गूगल, टाइप इन शालिनी कोडियाल सीपीए, दैट्स SHALINIKODIAL. यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन. शालिनी, टू मोर थिंग्स दैट यू डू डिफरेंटली देन अदर्स बिफोर आई लेट यू गो.
2: आई प्रोवाइड एडवाइजरी सर्विसेज. इट्स अ फुल एडवाइजरी फर्म. We don't do bookkeeping or tax preparation only. We help our clients save tax, get better understanding of their financial structure, and help them with acquisitions, mergers, and help them with audits, and also make sure that they're on the right path of wealth creation.
0: Perfect. Once again, your phone number and how can people find you?
2: Well, anyone can reach out to me at my number, which is 281-760-5573, and they can also look me up on Google. And my office is in Grape Point, Texas, and I meet my clients virtually or in person
0: ऑल
2: as
0: राइट,
2: well.
0: वर्चुअली और इन पर्सन गिव अर अ कॉल. अभी भी बता रहा हूँ, कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, जहाँ जागो वहीं सवेरा. सो आज तो शाम है, आपको जागने की भी जरूरत नहीं है. ऑल यू हैव टू डू इज गिव अ कॉल टू शालिनी एट 281-760-5573 और जस्ट गूगल द नेम शालिनी खोडियाल CPA, एंड आई एम टेलिंग यू, यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड.

दिलजीत दोसांझ विद दैट ट्रैक, व्हाट अ वंडरफुल आर्टिस्ट ही इज, नो डाउट. मतलब जहां भी जा रहे हैं कमाल ही कर रहे हैं. जस्ट कूडोस टू हिम, ब्लेसिंग्स टू हिम, एंड ऐसी छाते रहो पाजी, एंड टेक द पंजाब नेम वेयर एवर यू गो. पंजाबी आ गए. ओए नाल नाल आपको ये बता दूं, दो अंधे ना आपस में लड़ाई कर रहे थे, टू ब्लाइंड मैन वर फाइटिंग. तभी एक अकलमंद आदमी मेरे जैसा चिल्लाकर बोला, जिसके पास चाकू है वो ही जीतेगा. लड़ाई खत्म. अच्छा जी, एक गिव अवे है मेरे पास, वो तो दे दूं आपको. क्या है मेरे पास? मेरे पास है जी फ्रॉम फ्लेवर लाउंज, एंड ये दे रहे हैं आपको दाल मखनी या इनका देसी स्टाइल चिकन. सवाल ये है कि आज बर्थडे है इस एक्ट्रेस का जिनका मैं लगाने लगा हूँ गाना. आपको मुझे ये बताना है कि इस एक्ट्रेस की सेकेंड फिल्म कौन सी थी. ठीक है जी, फीमेल एक्ट्रेस हैं, और गाना लगाते ही आपको पता लग जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ. आप मुझे बताएंगे कि इन एक्ट्रेस का जिसका मैंने गाना लगाया है, इसका सेकंड फिल्म कौन सी थी. सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी सा आंसर अगर आप मुझे दे देंगे तो आपको मिल जाएगा जी क्या, वही फ्लेवर लाउंज की तरफ से देसी स्टाइल दाल मखनी या ढाबा स्टाइल चिकन. आई एम आस्किंग यू दिस लेडीज बर्थडे दैट वी आर सेलिब्रेटिंग टुडे, जो इस गाने में है, उनकी सेकंड फिल्म कौन सी थी लाइफ की, बताइए. स्टूडियो का नंबर 9722355555.

0: गंदी बात गंदी बात गंदी बात, सर्फ एक्सेल से धो लो, बात को साफ कर लो। गुड इवनिंग फनीशिया, कौन बोल रहा है?
1: हाय, मेरा नाम आशीष है।
0: आशीष भैया कैसे हो आप?
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो?
0: मैं बचपन में गिर गया था, थोड़ी हेड की अलाइनमेंट आउट है, बाकी सब ठीक ठाक है। ये बताओ कि इस एक्ट्रेस का नाम और आपको पता है इनकी सेकंड फिल्म कौन सी थी? सोनाक्षी सिन्हा। ठीक हो गया, नंबर वन टिक। सेकंड फिल्म ऑफ हर लाइफ।
1: सेकंड फिल्म ऑफ हर लाइफ, एक्चुअली दबंग तो फर्स्ट मूवी था, बट आई डोंट रिमेम्बर सेकंड।
0: बस गए भैया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। कौन है हमारे साथ और देखते हैं? गुड इवनिंग फनीशिया रेडियो, कौन बोल रहा है?
2: हेलो जी, माय नेम इज शिखा।
0: शिखा जी, कैसे?
2: टॉकिंग अबाउट, मैं ठीक हूँ, आप बताइए कैसे हैं? मार्विन सर,
0: मैं सर कह दिया आपने, एवं ना करो, मैं कौन सा नंबर देने आपको, पर कोई बात नहीं। ये बताओ आप कि आपने कहा क्या नाम है एक्ट्रेस का?
2: सोनाक्षी सिन्हा।
0: सोनाक्षी सिन्हा, इनकी सेकंड फिल्म मालूम है आपको?
2: हाँ जी, राउडी राठौर थी इनकी सेकंड फिल्म दबंग के बाद।
0: अरे वाह, और कुछ पता है आपको इनके बारे में?
2: इनकी शादी हुई है अभी एक दो साल पहले।
0: अच्छा, और कुछ?
2: क्या, और अभी नहीं आ रही है मूवीज में इतनी ज्यादा, बट हाँ टीवी सीरीज में आ रही है काफी सारी।
0: और कुछ
2: क्या पता है मुझे? अरे
0: शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी है यार, कमाल कर गई यार। आप साक्षी,
2: वो तो जग जाहिर है, वो तो सभी को पता है।
0: यही तो बात होती है, जो सभी को पता होता है वही गुमनाम हो जाता है और वही गुम जाता है, जैसे मैं। कोई बात नहीं, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस। यस, इट इज द राइट आंसर, सोनाक्षी सिन्हा। सेकंड फिल्म वाज इनडीड द वन यू सेड, जिसका नाम था जी राउडी राठौर, उसी का गाना आप सुन रहे थे। अब ये बताइए कि आपने फ्लेवर लाउंज का खाना पहले तो नहीं जीता ना?
2: नहीं।
0: तो मुबारक हो, खिलाता हूँ आपको जबरदस्त खाना। होल्ड द लाइन फॉर मी। यस, इट इज सोनाक्षी सिन्हा। सेकंड मूवी वाज इंडीड राउडी राठौर। आज के दिन होता है जी इनका जन्मदिन, 2nd of June, बॉर्न इन पटना, बिहार से हैं। आज 38 साल की हो गई हैं, बस कहीं हमारा मिलना नहीं हुआ, नहीं तो आपको पता है लाइफ चेंज मतलब कुछ नहीं होता। मिलना होता तो मैं कहता हेलो सोनाक्षी जी, वो कहती हेलो मार्विन जी, वो अपने घर, हम अपने घर। हर बारी ना गलत मत सोचा करो। छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेके वापस आया, डोंट गो एनीवेयर, दिस इज फन एशिया रेडियो।
3: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Official tax and finance partner, AG FinTax. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
4: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
5: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, aur ab ye $1 million property bhi.
6: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
7: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
8: Mark Hill is the leader Frisco needs to move forward together. As a former school board president, Mark has a proven record of integrity, fiscal responsibility and bringing people together. He values the vibrant contributions of our Asian and Indian communities, recognizing that our strength lies in our diversity and collaboration. Mark rejects divisive rhetoric, focusing instead on smart growth, public safety, and ensuring every voice is heard. For steady, experienced leadership that unites our city, vote for Mark Hill for Mayor. Let's build a stronger Frisco together.
9: Paid for by Mark Hill for Mayor.
10: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी, सच बता लॉटरी लगी है क्या?
11: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी। जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे K2 ड्राइव पे लिस्ट कर दी।
10: K2 ड्राइव मतलब
11: गाड़ी खुद पैसे कमा रही है, लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लवफील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस सब K2 ड्राइव हैंडल करता है।
10: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
11: 100%
12: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट K2 ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी। विजिट K2Drive.com और कॉल 214-814-0402 Kato Drive, Dallas's smartest fleet partner.
13: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
14: Calculating route, rerouting.
13: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है।
14: Location. Destination upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
15: क्यों?
14: क्योंकि Fort Worth, Keller, Haslett और Hurst के स्मार्ट लोग जानते हैं. Daily groceries हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत. Find everything desi at India Bazaar in Fort Worth.
15: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो.
16: India Bazaar at 5152 Quadrant Way, Fort Worth. Switch the route.
14: Your new destination has arrived.
17: Attention store owners, Ravi's summer kickoff is back. June 3rd and June 4th, 9 a.m. to 5 p.m. And this year, it's different. We are turning the warehouse into a full tropical experience with crazy deals you won't find anywhere. New product launches and free gifts all day. Meet vendors, discover your next best sellers and stock up like never before. Same Ravi's, just bigger, bolder and way more fun. Ravi's Import Warehouse, 11029 Harry Hines Boulevard, Building A, Dallas, Texas 75229. Entry requires a valid tax number and tobacco license.
18: Ritesh, kabhi socha hai? Kal agar tum nahi rahe, to mera kya hoga?
19: Arre relax, sab tumhara hi to hai.
18: Sach? Ya phir code decide karega?
19: Wait, what?
20: Yes, agar proper estate plan nahi hai, to aapki family ke decisions कोर्ट लेता है.
21: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ. मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग.
20: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए. कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन.
22: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
23: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
24: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
25: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
26: Dude, life mein kuch aisa karna hai jisme main front page pe rahu.
27: Front page ka to pata nahi, but tera page 3 mein hona meri guarantee hai.
26: Kaise?
27: Page 3 eatery?
26: No, not another restaurant again.
27: Dude, it's page 3. Start with the bar, signature cocktails, classic pours and the food crafted to suit every craving, every appetite.
26: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं
25: पेज 3 ईटरी, ईट सिप गॉसिप रिपीट.

Absolutely, Bindaas Bolo Ji. Naam Marvindaas Bolo. Welcome back after a short commercial break. This is your evening drive time show, the one and only The Bindaas Show on 104.9 FM, Fun Asia Radio, bringing the community together. आज हो चुकी है जी जून की 2 तारीख, ट्यूसडे की शाम है और मंगलवार है. मंगलवार को पता है ना, मन की बात बीवी से नहीं करना, नहीं तो लड़ाई हो सकती है. लड़ाई होने का मतलब होता है वॉर. इसलिए मंगलवार, डोंट टॉक अबाउट योर मन्स डिजायर टू योर वाइफ. कल है जी बुधवार और बुध को काम होता है शुद्ध, इसलिए कोई अच्छा काम करना चाहते हो तो बुध को कर लें शुरू, वो अपने आप हो जाएगा शुद्ध. बुध के बाद आता है जी वीरवार. हाँ, वीरवार में क्या होता है, वीरवार में होता है जी के वीरवार में ब्रदर्स है ना, ब्रदर्स इनको ज्यादा खटपट नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वीरों में लड़ाई हो जाती है. शुक्रवार आपको पता है, शुक्र करे वो सुपर वालेगा के फ्राइडे आ गया. शनिवार, सनी होता है, सैटरडे शनिवार है. एतवार, इस दिन एतवार का दिन होता है. आपकी बीवी को पूरा एतवार होता है कि आप उनको घुमाने लेके जाएंगे, इसलिए उसको एतवार कहा जाता है. अब बाकी की कहानी फिर बताऊंगा यार, सारी चीज़ें मैं करूंगा तो आप लोग क्या करेंगे. रेडियो पे बैठे हैं, कुछ गाने सुनाता हूं जी आपको, साथ साथ ही बता दूं दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय आर ड्राइव टाइम स्पॉन्सर, जिनका नाम है अटर्नी ओमर ख्वाजा. इफ यू आर एवर इन्वॉल्व इन अ कार एक्सीडेंट, स्लिप और फॉल, वैसे तो उम्मीद ये है कि जिंदगी में कभी ये मुसीबत आपको ना सताए, बट इफ यू एवर आर इन्वॉल्व, ट्रस्ट मी, आपको एक अच्छा अटर्नी आपके साथ चाहिए, बिकॉज दे नो देयर लिंगो. जैसे एक डॉक्टर को डॉक्टर का काम जानता है, आप अगर किसी चीज में एक्सपर्ट हैं तो आप अपना काम जानते हैं, इसी तरह एक्सीडेंट अटर्नीज जो हैं वो अपना काम बखूबी जानते हैं. एंड दे विल मेक श्योर दैट यू गेट द मोस्ट कॉम्पनसेशन फॉर ऑल ऑफ योर लॉस्ट टाइम, चाहे लॉस्ट वेजेस हो, चाहे गाड़ी का नुकसान हो या आपकी फिजिकल इंजरी हो, दे विल मेक श्योर यू गेट कॉम्पनसेटेड. एंड फॉर दैट ऑल यू हैव टू डू इज विजिट द वेबसाइट attorneyomar.com. वी वर सेलिब्रेटिंग सोनाक्षी सिन्हाज बर्थडे टुडे, हु हैपेंस टू टर्न 38, बॉर्न ऑन टुडेज डेट 2nd ऑफ जून 1987. हियर इज विशिंग हर अ वेरी हैप्पी बर्थडे फ्रॉम द टीम ऑफ फन एशिया and from Banda Bindaas.

वेरी हैप्पी बर्थडे वंस अगेन सोनाक्षी सिन्हा जी. टुडे इज ऑल्सो द 2nd of June, विच हैपन्स टू बी अ बर्थ डेट फॉर मेनी ऑफ द आर्टिस्ट इंक्लूडिंग रूथ एटकिंसन, हु इज एक्चुअली कॉल्ड रूथ एटकिंसन फोर्ड, और उनका बर्थ नेम रूथ एटकिंसन फोर्ड था. आज ही के दिन 2nd of June 1980 शी वॉज 18 शी वॉज बॉर्न. अमेरिकन कार्टूनिस्ट थी एंड पायनियरिंग फीमेल कॉमिक बुक राइटर, जिन्होंने बहुत सारी कॉमिक्स बनाई जैसे कि मार्वल कॉमिक्स कैरेक्टर मिली द मॉडल एंड को क्रिएटेड पैट्सी वॉकर एज वेल. ऑफकोर्स उसके बाद मार्वल के जितने कैरेक्टर्स हैं वो भी इन्होंने ही इंस्पायर करवाए. And her name is none other than Ruth Atkinson, celebrating her birthday today. Long gone, but definitely given us some wonderful movies and characters in the form of Marvel. You are listening to the Evening Drive Time Show. ये भी बताता चलूँ कि आपका जुलाई जो है जी होने वाला है special, because on 12th of July, we have those hip-hop fakers, Vishal and Shekhar, coming to Dallas. This is for all you Bollywood fans. Your playlist is about to come alive. आप सब ने विशाल और शेखर के गाने अपनी playlist में जरूर save किए हैं. The duo behind some of Bollywood's biggest super hits are bringing the super hit tour to Dallas. Sunday, July 12th ko hoga ye event. Curtis Colville Center Garland mein, which is a venue that you all know about, and mark your calendars. Once again, dobara bata raha hun, Sunday, July 12th ka din hai, Curtis Colville Center Garland mein hai. Tickets are on sale at cashpatelproductions.com. That's Cash Patel Productions, K-A-S-H patelproductions.com. And here's something really exciting. Vishal Dadlani himself will be joining us live on Fun Asia Radio next Monday on 8th of June at 5:05 p.m. yani ki mere show mein aapke sath judenge Vishal Dadlani. Don't miss the interview and don't miss the concert. Vishal and Shekhar live in Dallas, 12th of July, Curtis Colville Center.

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। Luxury, brilliance, celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
1: Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai. Profits hai, but no cash liquidity. Har saal tax bills ke saath tax season ka anxiety. Diagnosis clear hai. Aapke business ko chahiye smart tax planning, clean bookkeeping aur ek strong financial strategy. AG Fintax, founded by Forbes Council member Anil Granthi. From taxes to CFO advisory. Business owners ke har challenge ka ek hi solution. Call 425-395-4318 or visit agfintax.com. Plan today. Optimize your cash flows with AG Fintax's advisory services.
0: Desi cravings simple nahi hoti. Unke levels hote hai. Level 1, mixed veg pakora. Light, crispy, perfect shuruaat. Level 2, masala omelette aur dahi bhalla. Thora nostalgia, thora comfort. Level 3, Amritsari kulcha platter ya pindi chana. फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड, और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस।
1: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी। तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
2: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
3: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
2: Kya matlab?
3: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
2: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
3: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
2: Ab to karna hi padega, madam.
4: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
5: It's true. Hum apni sadbuddhi se bahut si problems solve kar sakte hain. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwarji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwarji, 945-527-0897, or visit astrologerishwar.com.
6: With over 25 years of lived experience, certified and accredited relationship coach Aarti Vedula helps individuals, couples, parents and hundreds of happy clients break unconscious cycles using NLP, EFT, hypnosis and mindset reprogramming. Book your free clarity call today at 269-281-1099 or visit thrivewitharti.com. Mention Phanisha and get 50% off on your package. Thrive with Aarti. Helping you thrive from within.
7: एक्सीडेंट के बाद इंश्योरेंस कंपनी से डील करना बहुत मुश्किल हो गया था. ना वो हेल्प कर रहे थे, ना मुझे समझ आ रहा था कि क्या करूं. आई फेल्ट कम्प्लीटली स्टक. फिर मैंने ओमर ख्वाजा टीम को कॉल किया और सब कुछ चेंज हो गया. उन्होंने सारे कॉल्स हैंडल किए, मेरी तरफ से बात की और इंश्योर किया कि मुझे फेयर ट्रीटमेंट मिले. हर स्टेप पे मुझे अपडेट

मुझे ना चाणक्य की ना रफ कॉपी मिली। चाणक्य साहब पता ना, चाणक्य, हाँ जी, टीवी शो आता था ना चाणक्य, उनकी रफ कॉपी मिली। उनकी रफ कॉपी में लिखा था कि जुबान में एक भी हड्डी नहीं होती, जुबान में, टंग में एक भी हड्डी नहीं होती, फिर भी ये इंसान की सारी हड्डियां तोड़वाने की ताकत रखती है। छह बज के 25 मिनट हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में। इट्स 6:25 इन द स्टूडियो क्लॉक। टुडे इज ट्यूजडे की शाम, जून की 2 तारीख, और मैं रहूंगा आपके साथ ऑल द वे टिल 7 o'clock। दिस इज योर इवनिंग ड्राइव टाइम शो, द बिंदास शो ऑन 104.9 FM। अच्छा, अगर आपको मेरी बातें वगैरह पसंद नहीं ना आती, आपको किसी प्रकार की कमी लगती है मेरी बातों में, तो आप ना फ्राइडे के दिन मुझे अपने घर पे डिनर पर बुला के ये सारी बातें बता सकते हो, क्या क्या कमी लगती है, नो प्रॉब्लम। याद रखिएगा फ्राइडे की रात को, क्योंकि फ्राइडे को मेरा यहाँ शो नहीं ना होता, मंडे टू थर्सडे होता है, तो मैं 7 बजे 5:30 6 बजे जल्दी भी डिनर कर सकते हैं हम, एंड देयर यू कैन टेल मी मेरे में क्या क्या खामियां हैं, व्हाटएवर व्हाटएवर वगैरह वगैरह वगैरह। ओके,

दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट यू बाय माय टाइम एक्विटी. ये गाना नहीं लगाने वाला था मैं, तो प्रिपेयर कर रहा था आपको, मूड चेंज करूंगा आपका भी देखना. पर माय टाइम एक्विटी आपका मूड ही नहीं, आपकी लाइफ चेंज कर सकती है. इफ यू लुकिंग टू सेव योर फ्यूचर, सिक्योर योर फ्यूचर, हैव अ रिटायरमेंट प्लान, देन माय टाइम एक्विटी विल डेफिनेटली बी देयर फॉर यू. ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज लेके आते हैं आपके लिए, एंड इट इज लेड बाय प्रिंसिपल सुधीर पाए, हु इज नोन टू बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर. दिस इज योर अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड स्मार्टर फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज थ्रू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट विच इज डन बाय माई टाइम एक्विटी. रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटीज, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स, दे डू इट ऑल. वेदर यू प्लानिंग लॉन्ग टर्म वेल्थ, रिटायरमेंट और ग्रोइंग योर इन्वेस्टमेंट्स, माई टाइम एक्विटी कैन हेल्प यू आउट देयर. गिव देम अ कॉल 469-702-1272, 469-702-1272, या सिंपली विजिट द वेबसाइट mytimeequity.com. एक बड़े ही प्यारे से गाने की रिक्वेस्ट आई है मेरे पास, एंड आई एम एक्चुअली वर्किंग ऑन अ रीमेक ऑफ दिस ट्रैक. बट बारिश का टाइम है जी कई जगह डैलस में, स्पेशली टुवर्ड्स हैरी हाइंस एंड डैलस एरिया. देयर इज सम रेन दैट इज पॉपिंग अराउंड. सो अगर बारिश हो और पुराने गाने, मतलब मैं यूजुअली अपने शो में एक पुराना गाना जरूर फिट करता हूँ, एंड व्हेन इट इज सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग आई कांट मिस इट. हियर वी गो.

बारिश का सीन है जी इस गाने में, एंड राज कपूर साहब अलोंग विद नरगिस यानी कि मदर ऑफ संजय दत्त वाज इन दिस मूवी। एंड बारिश की बात कर रहा हूँ तो डैलस फोर्ट वर्थ में जब बारिश होती है भैया, यहाँ पे एक चीज उसको कंपनी करती है, दैट इज हेल। एंड इफ हेल हिट्स योर होम देन योर रूफ डेफिनेटली गेट्स कॉम्प्रोमाइज्ड। हेल टू नेल आपके लिए वो सोल्यूशन लेके आए हैं जिसको आप ढूंढ रहे हैं। DFW होम ओनर्स, बिजनेस ओनर्स, अगर आपकी रूफ इस नेक्स्ट स्टॉर्म के लिए रेडी नहीं है, देन गेट विद द एक्सपर्ट्स एट हेल टू नेल कॉन्ट्रैक्टिंग फॉर प्रोफेशनल रूफ रिप्लेसमेंट एंड रिपेयर्स। शिंगल्स हो, TPO मेटल रूफिंग हो, दे हैंडल बोथ कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स विद क्वालिटी एंड केयर। एंड यही नहीं, दे ऑल्सो ऑफर जनरल रीमॉडलिंग ऑफ योर होम। पेंटिंग करवानी है, कोई रिपेयर है, कोई कॉन्क्रीट वर्क है, कोई बैकयार्ड बनवाना है, वट एवर यू नीड टू डू, दे विल गेट ऑल ऑफ द रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट्स डन एट द बेस्ट प्राइसेस। फ्री इंस्पेक्शन सर्विस देते हैं एंड क्लेम के लिए असिस्टेंस भी देते हैं विद योर इंश्योरेंस कंपनी। उनकी रेटिंग 5 स्टार है इन गूगल रिव्यूज, मेक श्योर टू चेक दम आउट। निसार अहमद उनका नाम है, एंड यू कैन गिव हिम अ कॉल पर्सनली 6825619795। ये नंबर आप कभी भी हमारे स्टूडियो से ले सकते हैं, और यू कैन सिंपली गूगल हेल टू नेल कॉन्ट्रैक्टिंग, हेल द नंबर टू नेल कॉन्ट्रैक्टिंग। सो इफ यू एवर स्टक इन दैट हेल सिचुएशन, द रेस्क्यू इज हेल टू नेल। टुडे मार्क्स द बर्थडे ऑफ वन मोर जीनियस, उनका नाम था मणि रत्नम, म्यूजिक डायरेक्टर, मूवी डायरेक्टर एंड अ स्टोरी राइटर हु हैज डन मेनी मेनी मेनी मूवीज। इनका बर्थ नेम एक्चुअली मणि रत्नम बिल्कुल भी नहीं है, बट इनका नाम है गोपाल रत्नम सुब्रमण्यम। आज ही के दिन 2 June 1956 में इनका जन्म हुआ था इन मदुराई विच इज मेड्रास। आज 70 ईयर्स के हो चुके हैं। द ईयर वॉज 1956 व्हेन ही वॉज बॉर्न। बहुत सारी फिल्में बनाई, हिंदी, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ा, बट कुछ अवार्ड्स की अगर बात की जाए, 7 National Film Awards, 4 Filmfare Awards, 7 Filmfare Awards South एंड numerous awards at the various film festivals across the world. 2002 mein government of india honored him with the padma shri as well. Unki hi filmon ke do gaane laga raha hu back to back because I think this man jo inhone film mein banayi hain, jo inhone likhi aur direct ki hain, those are some wonderful wonderful films. Happy birthday Mani Ratnam sahab from the team here at Fun Asia and from your fan forever Banda Bandas Marvin Das.

0: ब्यूटीफुल ट्रैक इन सेलिब्रेशन ऑफ मनी रत्नम बर्थडे, वेरी हैप्पी बर्थडे टू मिस्टर मनी रत्नम। और साथ साथ आपको ये बता दूं कि वर्ल्ड म्यूजिक डे इज कमिंग अप ऑन June 21st, एंड आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट विद फनेशिया, आपको जाना है जी funeasia.net पे, एंड यू विल फाइंड अ गूगल फॉर्म दैट विल प्रॉम्प्ट यू टू फिल इन योर फेवरेट सॉन्ग्स। और ये कॉन्टेस्ट ओपन है टिल द 15th of June। आपको सिर्फ अपना फेवरेट म्यूजिक लिस्ट करना है, देर आर 7 डिफरेंट जॉनर्स जो वहाँ पे लिस्टेड हैं, और उसमें आपको अपने अपने पसंद के गाने डालने हैं। जो भी गाने चूज किए जाएंगे और अगर वो आपका गाना होगा, यू विल गेट अ रिवॉर्ड। रिमेंबर, इट्स ऑन funeasia.net फॉर वर्ल्ड म्यूजिक डे। गो अहेड एंड पुट योर सिलेक्शन देयर।
1: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
2: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
3: Did you know LASIK is just one of 6 ways to get rid of glasses and contacts? I'm Dr. Shahzad Batliwala. Yes, your eye surgeon is Desi. I'm a fellowship-trained surgeon and founder of Visionary Eye in Plano. My philosophy is simple. Educate first. Once you understand your options, the decision becomes easy.
4: Call 214-972-2020 or visit LASIK-Plano.com. Mention FunAsia 2020 for a free consultation.
3: Visionary Eye. See clearly. Live boldly.
5: Chicken. Banana. चिकन बनाना
6: ब्रो, बनाना नहीं, बनाना मतलब मेक द चिकन राइट।
4: That's exactly what happens at Sal's Nashville Hot Chicken. They don't just make it, they make it unforgettable. Fresh ingredients, bold flavors, jumbo chicken tenders. Nashville sandwiches that actually hit. Located in Plano and Richardson, Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry.
7: Mamu, dekho kya ho gaya?
8: Oh, kya ho gaya?
7: Nayi gaddi li thi, itne mein dam tod diya. Aur aapki itni purani Mercedes, abhi bhi nayi jaisi kaisi chal rahi hai?
8: Oye, German ka kamaal hai.
7: Meri गड्डी भी तो जर्मन है।
8: ओ नहीं ओए, जर्मन मोटरवर्क्स रिचर्डसन, मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, वीडब्ल्यू और सारी गाड़ियों का काम वही करते हैं और A1 करते हैं यार। तू नंबर लिख मुन्नी, 972-690-6623 कॉल कर दे और बोल गिरधारी लाल ने भेजा है यार।
9: जर्मन मोटर्स, कीप योर ड्राइव फ्लॉलेस।
10: कहते हैं अयोध्या में एक रसोई थी, सीता की रसोई, जहाँ माँ सीता अन्नपूर्णा के रूप में सिर्फ भोजन नहीं, प्रेम और सेवा परोसती थी। और अब वही पवित्र स्वाद, वही भाव श्री अयोध्या भवन में, ऑपोजिट टू द कार्य सिद्धि हनुमान टेम्पल इन फ्रिस्को।
11: फर्स्ट एवर ऑथेंटिक सात्विक फ्लेवर्स विद नो अनियन एंड गार्लिक,
10: वेयर एवरी डिवाइन फूड इज एन ऑफरिंग। ओपन डेली फ्रॉम 7 AM, लोकेटेड एट इंडिपेंडेंस एंड एल्डोराडो। श्री अयोध्या भवन, वेयर टेस्ट मीट्स डिविनिटी।
12: कंप्यूटर जी का सवाल ये है, बिजनेस ओनर्स को लोन लेना मुश्किल क्यों लगता है? ऑप्शन ए, स्लो प्रोसेस। ऑप्शन बी, ज्यादा पेपर वर्क। ऑप्शन सी, क्रेडिट स्कोर का कंसर्न। या ऑप्शन डी, लोन डिक्लाइन होने का डर।
13: मैं एक्सपर्ट लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा।
12: कंप्यूटर जी, SBA लोन एक्सपर्ट से कनेक्ट किया जाए।
14: SBA लोन एक्सपर्ट्स ने बिजनेस लोन प्रोसेस बहुत ही आसान बना दिया है। नो टैक्स रिटर्न्स नीडेड टू अप्लाई और क्रेडिट पर हार्ड चेक भी नहीं, रिजल्ट्स सिर्फ 10 मिनट में।
15: बिजनेस लोन ऑप्शंस को क्लैरिटी से समझने के लिए कॉल करें 817-786-3338, 817-786-3338, द SBA लोन एक्सपर्ट्स, फैसला क्लैरिटी के साथ।
16: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में, कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का।
17: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
15: विजिट psychicramnath.com, कॉल 4693474401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
18: big achievements deserve unforgettable celebrations. Host your kids' graduation party at the Flavor Lounge in Frisco, where great food meets great memories. And if you want to host the party at your place, no worries. You can also order for catering services only. Fresh Tray Catering, custom menus for small or large gatherings. Everything in perfect style. Call now, 469-712-3591. Or visit theflavorlounge.com. The Flavor Lounge. You celebrate. Flavor hum sambhal lenge.
19: Immigration is a serious concern for our community. And when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, firm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
20: Kaun hai ye log? Kahan se aate hai ye?
21: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

मणिरत्नम साहब वॉज बॉर्न ऑन 2 June 1956 इन अ तमिल अय्यर फैमिली इन मदुराई, और उसके बाद बहुत सारी डिफरेंट पाथ था इनका, फिल्मों की तरफ तो देखा ही नहीं था, बट नंदलेस जो फिल्मों के कोई रिलेशन ज़रूर था, बिकॉज को प्रोड्यूसर ऑफ सम टाइम थे इनके वेंकटेश्वरम साहब जो कि इनके यंगर ब्रदर थे, एंड मनी साहब ग्रू अप इन मद्रास, और इन्होंने एक्चुअली जो अपनी स्टडीज़ की है वो मैनेजमेंट स्टडीज़ की है मुंबई से, विच इज़ फ्रॉम जमानलाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ इन मुंबई। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद 1977 में ही वॉज एम्प्लॉयड इन अ फर्म इन मद्रास एज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट, और वहाँ काफ़ी साल काम भी किया, बट किसको मालूम था कि अच्छी फिल्में लिखेंगे भी और डायरेक्ट भी करेंगे, एंड सो मेनी ऑफ देम जिनका म्यूज़िक भी बहुत बहुत फैंटास्टिक था। सम ऑफ द मूवीज़ दैट आई रियली एंजॉयड ऑफ कोर्स बॉम्बे दिल से एंड रोजा, आई थिंक वन ऑफ दोज फिल्म्स दैट आई कैन नेवर फॉरगेट फ्रॉम मणिरत्नम साहब। यू लिसनिंग टू इवनिंग ड्राइव टाइम शो, इट्स ऑलमोस्ट टाइम फॉर मी टू से बाय बाय, बट पहले आपको ये बता दूँ, अगर अभी तक भी आपने अपने टैक्सेस नहीं किए हैं एंड यू फाइल्ड एक्सटेंशन, तब भी आपको एक अच्छा सीपीए आपके साथ चाहिए। द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स फर्म इन द यूएस इज कॉल्ड एजी फिनटेक्स। इट इज ऑन फाइनेंशियल रेडियो एंड दे आर पार्ट ऑफ आर स्पॉन्सर्स हियर। मेक श्योर टू गेट विद देम इफ यू हैव एनी टैक्स रिलेटेड क्वेरी। दे ऑफर इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज विद अनटैप्ड पोटेंशियल फॉर बोथ इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस। चाहे आपका बिजनेस है या आप हाई इनकम अर्नर हैं फ्रॉम योर एम्प्लॉयमेंट, दे आर ट्रस्टेड एफिशिएंट एंड गेट यू रेडी फॉर योर फ्यूचर। ऑल यू हैव टू डू इज विजिट द वेबसाइट agfintax.com. That's agfintax.com. मेरा वक्त हो रहा है जी आज के लिए आपसे इजाजत लेने का, बट आई ऑलवेज से कि आई विल सी यू टुमारो इफ लाइफ अलाउज, और अगर आपको भी कल सुबह का दिन देखने को मिले तो सुपरवारे परवरदिगार जिसको भी आप विश्वास करते हैं, जिसमें भी आप बिलीव करते हैं, उसको एक थैंक यू जरूर बोलिए, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल माइट नॉट गेट टुमारो, इफ यू गेट इट मेक श्योर यू डू जस्टिस टू इट बाई गिविंग योर 100%, क्योंकि कहते हैं कि जब आपको एक नया दिन मिलता है तो वो ऊपर वाले का एक तरीका है आपको ये कहने का कि जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी, एंड ऑफ कोर्स इफ यू वांट टू अचीव समथिंग हियर्स अनदर अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू डू दैट। गो मेक अ डिफरेंस इन समबडीज लाइफ, गो मेक अ डिफरेंस इन योर लाइफ, गो मेक समबडी एल्स हैप्पी, और गो मेक योर सेल्फ हैप्पी, दैट इज वाई यू गेट लाइफ। एंड आई थिंक इस लाइफ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पता है कौन है? आप खुद। हम अपने फैमिली को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कवर करने में खुद को भूल जाते हैं, अक्सर उसी की वजह से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। वी हैव टू मेक श्योर दैट वी एज द इंडिविजुअल, द मैन और द वुमन इन द मिरर इज हैप्पी, एंड इट इज़ योर जॉब टू कीप देम हैप्पी, इट इज़ योर जॉब टू कीप देम न्यूट्रिशन, गिव देम न्यूट्रिशन द राइट न्यूट्रिशन, एंड टू टेक केयर ऑफ द पर्सन हु यू सी इन द मिरर। तो एक ड्यूटी, एक प्रॉमिस अपने आप से करें कि आप अपने आप का ख्याल जरूर रखेंगे, बिकॉज इफ यू आर हैप्पी, यू आर हेल्दी, यू कैन डेफिनेटली गिव दैट सपोर्ट टू समबडी एल्स। कहते हैं जी कि इंग्लिश जितने लोग कहते हैं कि बड़ी हार्ड इंग्लिश होती है, अ लॉट ऑफ पीपल से इंग्लिश इज वेरी हार्ड, बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा पानी ज्यादा डालना पड़ता है। विद दैट थॉट आई एम लीविंग एंड आई विल सी टुमारो बिटवीन 5 and 7। तो अगली बार अगर इंग्लिश हार्ड लगे तो थोड़ा पानी और डाल लीजिएगा या कोक मिक्स कर लें। अडियोस, गुड नाइट।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Frisco is growing fast, and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure, and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services, and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
3: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
4: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर।
5: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
6: अब करेगा, because Indian Attire Frisco summer sale is on. Stunning lehengas, elegant sarees, bridal jewelry, men's and kids wear.
7: Wait, इतना सब और price?
6: Up to 25% off on lehengas and bridal collection. Summer sale through the end of August. Only at Indian Attire Frisco. Traditional ho ya fusion, ab har outfit bolega.
8: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी, सच बता लॉटरी लगी है क्या?
9: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी। जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे K2 ड्राइव पे लिस्ट कर दी।
8: K2 ड्राइव मतलब
9: गाड़ी खुद पैसे कमा रही है, लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लवफील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस सब K2 ड्राइव हैंडल करता है।
8: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
9: 100%
10: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट K2 ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी। विजिट K2Drive.com और कॉल 214-814-0402. Kato Drive, Dallas's smartest fleet partner.
11: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
12: Excuse me. It's called being loyal.
11: It's called being predictable.
12: Okay then, let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
11: And what's so special at Neon Cactus?
12: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
11: Not bad.
12: Happy hours Monday to Friday, and amazing food and drink deals every day.
11: Okay, this I didn't expect from you.
12: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview. Mexican cuisine with global influences.
13: एक बात बता, retirement में सबसे scary क्या होता है?
14: क्या?
13: सैलरी बंद हो जाती है
14: और बिल्स बंद नहीं होते।
13: एग्जैक्टली, इसलिए स्मार्ट लोग वेल टैक्टिक्स से स्ट्रेटजी बनाते हैं।
14: मतलब
13: ऐसी स्ट्रेटजी जहां इनकम रुकने के बाद भी पैसे का फ्लो बंद नहीं होता।
0: द वेल्थ टैक्टिक स्मार्ट।